FM के 101.7 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि नाव, तदनुसार 30 जून ईस्वी सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:59 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल

0: प्रतिष्ठित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code UCC in the state. Chief Minister Suvendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on Thursday. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. In a statement, External Affairs Ministry said this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The army said that such reports are incorrect and without any basis. Ahead of the 57-day annual Amarnath Yatra beginning on Friday, security agencies have intensified preparations across the pilgrimage route from Punjab to Jammu and Kashmir, conducting mock drills, activating surveillance systems and strengthening inter-agency coordination to ensure the safe movement of thousands of pilgrims. The first batches of pilgrims have started arriving in Jammu and Kashmir, while security forces remain on high alert with elaborate arrangements in place along the Jammu-Srinagar National Highway, transit camps and the twin routes leading to the holy cave shrine nestled in the Himalayas. Meanwhile, Special Operation Group SOG of the Jammu and Kashmir Police and National Security Guard NSG conducted a joint counter-terror mock drill at the historic Raghunath Mandir in Jammu yesterday ahead of the Amarnath Yatra. The exercise simulated a high-risk terrorist attack scenario, testing the response capabilities of security agencies through rapid intervention, area domination, hostage rescue, casualty evacuation, and coordinated operations. And that is the end of this news bulletin.
3: FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

गुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं हरिओम शरण एवं साथियों के स्वर में।

इस भक्ति गीत के साथ ही समर्पण का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे सतीश कुमार शर्मा। सुबह 7 समय होगा कार्यक्रम जोहार चैबासा का। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

8:40 पर लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार होंगे कैलाश चंद्र महतो एवं साथी। 9:00 विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:10 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम पुनः आप सुन सकेंगे 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3:00 से पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4:00 मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 5:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

शाम 5:02 पर आकाशवाणी चाईबासा केंद्र से शेष कार्यक्रमों की प्रसारण की जानकारी दी जाएगी। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे एक ही संगीतकार के संगीतबद्ध किए गए चंद फिल्मी नगमे। शाम 5:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर।

6:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल लंदन में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच का सीधा प्रसारण सुन सकेंगे। 7 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर पुनः हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओवल लंदन में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर पुनः हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच का प्रसारण सुन सकेंगे। रात्रि 11 बजे

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे सतीश कुमार शर्मा। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चयबासा।

जोहर चाईबासा कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रात और दिन, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर के स्वर में।

0: सच्चा झूठा, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ा धरा रे आम बोले रुड़ा तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलो राय को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ बना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो ही नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रनबला देवी।

0: कहाँ बारे हतो कहाँ तो घर आई ने हमरे घरे बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
1: नितम लो बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरुपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना न्या यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
2: अन्या नितम लो बुंबई कोड़ा पटन नितम गुमरे कोड़ा अन्या हम लो कोदमरी कोड़ा लो पटन पटन नितम कितमाई कोड़ा मुनिमिल उड़ीन बागिया से आरती को पुलिस को लड़ाई चलावतम दुर्गम गई जय तेरे काको
3: अली मुनि सुरन पे अपीले मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते सेसन का है हुआ गए बेटा हुरा इनका
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
5: जोहर चैबासा कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं पिया का घर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में।

इस गीत के साथ ही जोहार चयबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा

0: 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू

0: कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow,

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3,245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से हो रहा है शुरू। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना। तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हर साल 30 जून को आदिवासी क्रांति के नायकों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू के बलिदान को याद करने के लिए हुल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में आज हर वर्ष की तरह हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था, जिसे जनजातीय इतिहास के कई अध्येता भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस आंदोलन में करीब 20,000 लोगों की सभा के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें संथालों के साथ कई अन्य स्थानीय समुदायों ने भी भागीदारी निभाई। तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से लैस क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में कल झारखंड में 3,245 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। श्री गडकरी ने टिकाव और कुशल राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए रखरखाव कार्यों के समय पर निष्पादन, उच्चतम गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन और आधुनिक निर्माण तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे और उनका सत्यापन करेंगे। यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इधर रामगढ़ जिले के उपायुक्त ऋतुराज ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी।
1: झारखंड के
2: रामगढ़ जिला में जो हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 की प्रक्रिया है, इसमें हाउस टू हाउस विजिट BLOs के द्वारा किया जाएगा। हाउस टू हाउस विजिट जो होगी 30 जून 2026 से लेकर के 29 जुलाई 2026 तक, अर्थात एक माह तक किया जाएगा। इसमें हमारे BLOs के द्वारा गणना पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन सभी वोटर्स को किया जाएगा और उसके बारे में वोटर्स को जागरूक किया जाएगा।
0: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने VBG रामजी योजना में केंद्र और राज्य के बीच 60% और 40% की हिस्सेदारी के निर्णय पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन कहा कि इससे झारखंड पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मंत्री ने केंद्र से महात्मा गांधी के नाम से एक नई जनहित की योजना शुरू करने की भी मांग की। कल्याण विभाग की ओर से कल रांची के 10 विद्यालयों के 693 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी गई। मौके पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि हर छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा के महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और राजद का राजनीतिक इतिहास घपले घोटालों से भरा है।
3: जमकर मुद्रा मोचन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो ज्ञान की डींगे हाँक रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। सीजीएल का पेपर लीक होता है, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। उस पर कोई जांच न किसी प्रकार की कार्रवाई, उल्टे उस पर लिपा पोती उसको बचाने का काम, और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से रांची में एम्स अस्पताल की स्थापना करने की मांग की। नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की बैठक में उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार रिम्स 2 की स्थापना की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र से 2000 करोड़ रूपये का सहयोग मांगा। उन्होंने चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा और साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
0: झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। बारिश के कारण तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित +2 उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षा के शिक्षक अमित कुमार का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर-18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड वॉलीबॉल संघ, झारखंड शिक्षा परियोजना और विभिन्न संगठनों ने उन्हें बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य के 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने आज से झारखंड में SIR शुरू होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राज्य के सभी जिलों में भूमि सर्वे पूरा करने की समय सीमा तय किए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर ने राज्य के नए सूचना आयुक्तों का कल लोक भवन में शपथ ग्रहण होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार किए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस पर क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और संथाल विद्रोह के अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्यभर में आज कई जगह होंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड की 3245 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 4 दिनों तक मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का जताया अनुमान। गरज चमक और वज्रपात की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट। और चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम के असिस्टेंट कोच के रूप में दुमका के अमित कुमार का किया गया चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आज आपके साथ है आपकी दोस्त कंचन।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग में लोकगीत। आज हम लोकगीत कार्यक्रम सुनेंगे उरांव भाषा में। हमारी आज की कलाकार होंगी मीरा कुमारी और साथी।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं कैलाश चंद्र महतो एवं साथी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे कुरमाली लोकगीत, कलाकार थे कैलाश चंद्र महतो एवं साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद समझ जाओगे कि जो जिंदगी में पीछे गलत हुआ वो होना कितना जरूरी था।

कार्यक्रम विविधा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। श्रोताओं, आज 30 जून है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को झारखंड और देश भर में हुल दिवस मनाया जाता है। हुल दिवस यानी संथाल हुल या संथाल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। संथाली भाषा में हुल का अर्थ क्रांति या विद्रोह होता है। यह दिन 1855 में अंग्रेजी हुकूमत जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों द्वारा किए गए ऐतिहासिक और पहले संगठित जन आंदोलन को समर्पित है। 30 जून 1855 को झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासी एकत्र हुए थे। इस महाक्रांति की कमान सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू नामक दो भाइयों ने संभाली थी। उनके अन्य भाई चांद, भैरव और बहनें फूलो व झानो ने भी

इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। इस आंदोलन का मुख्य नारा रहा है, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, और अब हम लगान नहीं देंगे जैसे सशक्त नारे दिए। मैं बता दूं कि यह क्रांति शोषण के खिलाफ थी। अंग्रेजी शासक, जमींदारों और बाहरी लोगों द्वारा किए जा रहे आर्थिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ यह एक निर्णायक जंग थी। इस सशस्त्र क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20,000 आदिवासी वीर शहीद हो गए थे। आंदोलन को कुचलने के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए। वहीं अंग्रेजों ने धोखे से सीधो और कानू को गिरफ्तार कर लिया और 26 जुलाई 1855 को उन्हें एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। आज के दिन झारखंड के भोगनाडी सहित पूरे राज्य में इस महान जननायकों को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके बलिदान को याद किया जाता है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर मौजूद हैं। आज हम बातें करेंगे बाल विवाह पर। इस विषय पर जानकारी लेने के लिए हम हैं झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग झारखंड सरकार के सदस्य विकास दोजराज का। तो सबसे पहले तो नमस्कार।
2: नमस्कार रमेश जी।
1: पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बाल विवाह है क्या।
2: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि दो नाबालिग आपस में शादी करते हों तो बाल विवाह कहलाता है। जैसा कि आपको पता है, लड़कियों की उम्र 18 साल से कम और लड़कों की उम्र 21 साल से कम हो तो बाल विवाह की श्रेणी में आएंगे। बाल विवाह न सिर्फ एक सामाजिक अपराध है बल्कि कानूनी रूप से भी अपराध की श्रेणी में आता है। और जहां कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलती है, हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बाल विवाह को रोकें।
1: अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि ये जो बाल विवाह है ये सामाजिक अपराध है, ये तो हम कहते हैं, लेकिन फिर भी ये उस हद तक नहीं रुक पाया है जितना रुकना चाहिए या खत्म होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी चीज़ें जो समाज में व्याप्त है किसी भी रूप में, वो एक परंपरावादी कारण से भी चलती रहती है। बाल विवाह इसी का एक रूप माना जा सकता है। संभवतः लोगों में जैसे जैसे चेतना आएगी, लोग शिक्षित होते जाएंगे, सामाजिक चीज़ों में विकास होता जाएगा, वैसे वैसे इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे। और इसको रोकने के लिए कई जन जागरूकता वाले कार्यक्रम निरंतर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसको लेकर के कानून भी बनाए गए हैं। चूँकि बाल विवाह होने पर बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण हमारा विकास भी रुकता है। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होने का अवसर है उससे बच्चे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को किसी भी हद तक बाल विवाह से बच्चों को बचाकर उन्हें उनके कैरियर बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। अभिभावकों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस बारे में बहुत सजग हों और बाल विवाह को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करें।
1: अच्छा, ये भी तो है कि सरकार की ओर से बाल विवाह पर कई कानून बने हैं, ये क्या है?
2: बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 हमारे यहाँ लागू है, हमारे देश में, और ये सभी राज्यों में लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बताती है कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो बाल विवाह कराने के प्रयोजन में किसी भी रूप में सम्मिलित होगा वो भी दोषी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह एक बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसको कराने के लिए एक अनुष्ठानकर्ता की जरूरत पड़ती है। किसी भी धर्म का मामला हो, जिसे आप पुरोहित कहते हैं, उसके अलावा एक बाल विवाह जब होता है तो उसके लिए मिठाइयाँ बनने के लिए हलवाई की भी जरूरत होती है, टेंट हाउस भी जरूरत होता है, और वो स्थान भी जरूरत होता है जहाँ पर वो प्रक्रिया पूरी हो सके। और उस बाल विवाह में सम्मिलित होने के लिए कई मेहमान भी आते हैं। विवाह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, विवाह होने के पहले कई तरह की बातचीत और उसकी तैयारियाँ चलती हैं। तो उसकी सूचना भी अड़ोस पड़ोस को भी हो जाती है कि भाई विवाह होने वाला है। किसी न किसी माध्यम से बात समाज में फैलती है। तो कोई भी वैसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह की जानकारी होने पर भी बाल विवाह रोकने का प्रयास नहीं करता, उसकी सूचना अधिकारियों तक, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी तक पहुंचाने में नाकाम रहता है या कोशिश नहीं करता है, तो भी किसी न किसी तरह से इस दंड का भागी बनता है और दोषी साबित होगा। तो मेरा आग्रह है आम लोगों से भी कि यदि आपको यह जानकारी मिले कि पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, किसी समाज में किसी परिवार ने बाल विवाह करने की कोई योजना बनाई है, तो वो बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी कौन हो सकता है? तो आपके प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं या पंचायत सचिव होते हैं, महिला पर्यवेक्षिका होती हैं, आप किन्हीं को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा वैसा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो समाज में जागरूक है, जनहित के काम में है, सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा हो, सामाजिक सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति, आप उनको इसकी जानकारी दें या पुलिस के 100 नंबर पर डायल करें या 112 में डायल करें और उनको इसकी सूचना दें। जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई भी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति भी ऐसे कार्यों को रोकने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। और उसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भी सूचनाएँ दी जा सकती है, जहाँ पर पारा लीगल वॉलेंटियर्स गाँव में, प्रखंड में सामाजिक गतिविधियों में कार्यरत है। और एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला बाल संरक्षण इकाई, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी बनी हुई है हर एक गांव में, तो उसके कार्यकर्ताओं को भी सूचना दी जा सकती है। यदि आपको इनमें से किसी तक भी पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो गांव के जो विद्यालय के शिक्षक को भी अगर आप बताएंगे तो शिक्षकों को ये पता है, फिर वो उसको एक उचित माध्यम से उसकी सूचना पदाधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं, जहां पर शादी रोकी जा सकती है होने से पहले। बाल विवाह को होने के पहले ही यदि बातचीत करके रोका जा सके तो इससे बहुत सारा नुकसान होने से बचता है, क्योंकि एक सामाजिक नुकसान तो होता ही है परिवार का, उसके अलावा कई तरह के खर्च बच जाएंगे उनके। जिस दिन हम लोग इंतजार नहीं करना है कि जिस दिन शादी होगी उसी दिन जाके हम शादी रोकेंगे, बल्कि अगर आपको सूचना मिलती है तो आप पहले ही उसको सूचना दें ताकि शादी होने से पहले ही उसे रोका जा सके, ताकि कई तरह की उनके प्रतिष्ठा में भी कोई आँच नहीं आएगा और बातचीत के आधार पर उसको टाला जा सकेगा और उनका खर्च भी बचेगा और सामाजिक नुकसान होने से भी बचेगा।
1: श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि बाल विवाह जो है ये अपराध है। अंत में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे।
2: श्रोताओं, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को विकास का भरपूर अवसर मिलना चाहिए। हमारे देश में बच्चों को लेकर, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर और भी कई कानून बने हुए हैं, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम भी है। बच्चों को खेलकूद का, पढ़ने का और उसमें एक स्वाभाविक विकास का वातावरण देना हम सबका प्राथमिक कर्तव्य है। उन्हें शिक्षा से भी हम वंचित नहीं कर सकते। मैं आप सभी को आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को सर्वांगीण विकास का अवसर दें और विवाह के बारे में तब सोचें जब वो बालिग हों, शादी की उम्र प्राप्त कर चुके हों और अपने पाँव पर खड़े होकर अपने स्वाभिमान का और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाने में वो सक्षम हो जाए। उसके पहले शादी की बात से बचने का प्रयास करें।
1: सचमुच विकास जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद रमेश जी।
3: हिंसा से सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहा कि आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: मोर नाम मंगलोरा है को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ मैंने आए वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम्हें ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए है
8: नितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
9: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने में उड़ीने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुलम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको नहीं मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लेंगे जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगन हुरा ते ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜ ᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱩᱨᱮᱱ ᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱞᱮ ᱟᱯᱤᱞ ᱠᱟᱱᱟ
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चयवासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं 9:30 हो रहे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साथी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और जोली मुखर्जी की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेरे यार की शादी है, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और सुदर्श भोसले के स्वरों में।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं आरजू फिल्म का ये गाना, आवाज़ें हैं उदित नारायण, कुमार शानू और अलका याग्निक की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, इस सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ
2: जी।
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा

0: जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि एक खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी।
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता

0: पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे पर खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए, यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे
6: पशु पक्षी। आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।

0: यह बात हाँ। अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
1: क्या
2: क्या
1: क्या?
0: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
1: नीचा
0: सब तक सब सुनाए। सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
3: यही करो तुम दोनों।
1: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
2: हईशा।
4: दम लगा के कू।
2: हईशा।
0: काम काम काम। शाबाश शाबाश। सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा पड़ा आराम। चलू उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपी है ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
2: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
2: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब। अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा। छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का।
5: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: dabai. Papihana piye tu jabai.
1: Kaun, kaun, kaun. Hai, isne to bas rat hi pakad li.
2: Bau, bau, bau. Are, ye kauwe ka mazak uda raha hai.
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा भाव भाव, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव, शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना, अभी तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: यही दंड हो। अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना।
6: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
6: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
5: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
5: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
6: हाँ, मैं भी हैरान हूँ, कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी, चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी।

0: बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।
3: अरे

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM के 101.7 MHz पर। यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

दोस्तों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, तो आज एक अच्छी बातों के साथ, तो आज हम बातें कर रहे हैं कि जीवन परिवर्तनशील है और सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आती, कोई परेशानियां नहीं आती। तो हमें इनसे डट कर भागने की बजाय हमें डट कर सामना करना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और अपने भविष्य में अपने लाइफ को लेकर हमेशा सकारात्मक सोचे और आगे बढ़े।

सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अपनी दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज के दिवस पे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब हूल दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, संथाल हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है और यह दिवस 1855 में अंग्रेजों के दमनकारी शासन, स्थानीय जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ हुए ऐतिहासिक संथाल विद्रोह की स्मृति में ये दिन को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बताया कि यह विद्रोह 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिले में भोगनाडी स्थित गांव में शुरू हुआ था और संथाली भाषा में हुल की बात करें तो हुल का अर्थ होता है क्रांति या विद्रोह। दोस्तों, इस विद्रोह का नेतृत्व हमारी संथाली भाइयों सिद्धू कान्हू और चांद भैरव और उनकी दो बहनों ने, फूलो और छानो ने किया था। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है आदिवासियों ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा और दिक्वों यानी कि बाहरी लोगों के अत्याचारों से मुक्ति के लिए ये संघर्ष छोड़ा था। और इस विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजों, हमारी धरती छोड़ो का नारा दिया था इस विद्रोह के दौरान। दोस्तों, इस लड़ाई में हमारे कई हजारों आदिवासी पुरुष और महिलाएं शहीद हो गईं। दोस्तों, आज हम उन्हीं सबको याद करते हैं और आज का ये दिन हम मनाते हैं हूल दिवस पे। दोस्तों, हम उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं और उन्हें याद करते हैं।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

अपनी दोस्त कंचन के साथ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं आज की मौसम की। दोस्तों, अभी जिस तरह से आप मौसम में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उसके अनुसार आज के मौसम में बताया जा रहा है कि

तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसा मौसम देखने को मिलेगा और मौसम विभाग के अनुसार वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है और इसे देखते हुए येलो अलर्ट की चेतावनी 5 जुलाई तक के लिए जारी की गई है। तो आप इस मौसम में अपना खास ख्याल रखें और जब भी घर से बाहर निकले आप तो देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मौसम का मिजाज अभी चल रहा है, अचानक से बहुत बारिश होने से पहले जो बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, गर्जन होती है ना, उससे आज वज्रपात होती है, उससे हम आज आए दिन कई लोगों की क्षति हमें देखने को मिलती है। तो इसे सावधान रहे और जब भी घर से बाहर निकले अपने साथ छतरी और जो जरूरत की चीजें हैं उसे लेकर चले।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अपने दोस्त कंचन के साथ। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मौसम के बाद अब बातें इतिहास की। जी हाँ, आज इतिहास में हम आज के दिन के बारे में बातें करेंगे। आज इतिहास में क्या कुछ खास है, तो आज 1914 में दादा भाई नौरोजी का निधन आज के दिन ही हुआ था। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी का निधन आज ही के दिन हुआ था और हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के दिन 1934 में महान वैज्ञानिक आज महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी पत्रिका एनालेन डेर फिजिक्स में अपने विशेष सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला शोध पत्र प्रकाशित किया था आज ही के दिन 1905 में। और 1908 की बात करें तो आज साइबेरिया यानी रूस के जंगलों में एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के फटने से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नष्ट हो गया था आज ही के दिन। और बताया जाता है कि यह इतिहास की सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह टक्करों में से एक है। और आज के दिन 1936 में मार्गरेट मिसेल का प्रसिद्ध उपन्यास गॉन विद द विंड प्रकाशित हुआ था, जिसे बाद में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आज 1938 में बच्चों का सबसे पसंदीदा सुपर हीरो सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था आज ही के दिन।

दोस्तों, इतिहास में हम बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में, और अब इतिहास में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं उन हस्तियों की जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज 1969 में आज ही के दिन भूपेंद्र यादव भारतीय राजनीतिज्ञ और राज्यसभा के सांसद रहे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1911 में भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1921 की बातें करें तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक थे रघुवंश, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1934 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1956 में भारतीय पत्रकार और राजनेता हरिवंश नारायण जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1903 में मुकुट बिहारी लाल भार्गव, भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। तो चलिए, इनको हम जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, बातें हो रही थी उन हस्तियों की जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, और आइए अब बातें करते हैं उन हस्तियों का जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। आज के दिन 1985 में KH आरा, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। और 1970 की बात करें तो आशा देवी आर्या नायकम एक समर्पित महिला थी, जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की थी। उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और माफ कीजिएगा, उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। और 2007 में साहिब सिंह वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व 13वीं लोकसभा के सांसद थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। आज दोस्तों, आज हम हुल दिवस तो मना ही रहे हैं, लेकिन आज उसके साथ साथ आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस भी मना रहे हैं। आज हर साल 30 जून को ये दिन मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में घोषित किया गया था, और जिसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों के संभावित खतरों और उनसे पृथ्वी की सुरक्षा के उपायों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना इस दिन का उद्देश्य है। और इनके कई महत्व भी हैं। आम जनता को क्षुद्र ग्रहों से होने वाले नुकसान और वैज्ञानिक महत्व और ग्रह सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है। और खोज के बारे में बात करें तो क्षुद्र ग्रहों के टकराने कि विश्वसनीय खतरे की स्थिति में त्वरित संचार और वैश्विक स्तर पर की जाने वाली आपातकालीन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है, और क्षुद्र ग्रहों को केवल विनाश का कारण नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के इतिहास और निर्माण को समझने के

के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। और यह दिवस 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र में हुए तुंगस्का घटना की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। और यह पृथ्वी पर दर्ज इतिहास में क्षुद्र ग्रह के प्रभाव की सबसे बड़ी घटना थी। और इसी घटना को याद करते हुए क्षुद्र ग्रहों से बचाव के लिए ये एक वैश्विक विज्ञान जागरूकता अभियान के रूप में इस दिन की शुरुआत की गई थी और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसके अलावा आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, जो कि हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और लोगों के प्रति संसदों की जवाबदेही तय करना और विश्व स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली को सम्मानित करना। और इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इन्हें मई 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिवस की शुरुआत की थी। और ऐतिहासिक महत्व 30 जून 1889 को अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद में इस दिन को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब कार्यक्रम के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि रोज की भागदौड़ से परे कुछ देर प्राकृतिक में माहौल बिताए, और जंगलों में टहलना हो, नदी के किनारे शांत बैठना, या फिर पहाड़ों की सैर पर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके कई सवालों के जवाब प्रकृति की सहज लय से पहले ही मौजूद होती है, और आपके हर सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से उपलब्ध हो जाती है। तो आप अपने को खुश रखने के लिए थोड़ी आप भाग दौड़ जिंदगी से हटकर थोड़े प्राकृतिक में बिताए और अपने आप को खुश रखे और हमेशा आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त कंचन को दीजिए विदा। नमस्कार, जोहार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम आपके गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: आपकी पसंद प्रोग्राम के सभी सुनने वालों को ओली मेंस का नमस्कार. प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं बेमिसाल फिल्म के गाने के साथ. इस गाने को किशोर कुमार, सुरेश पाटकर और लता मंगेशकर ने गाया है. गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है आदि बर्मन ने. गाने को पसंद किया है आप सबने. बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केशरी, राजकुमार केशरी, श्यामदेव नायक और देवेन जी. चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर के हैं कोमल बेसरा, बनमाली बेसरा, बासंती अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा. और यह नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी. गोला घाट बक्सर के हैं विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी और शंभू केशरी.

फिल्मी गानों का हमारा ये सिलसिला जारी है। संग रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। संगीतकार हैं मंसूर खां। फरमाइश आप सबकी है, खरसावा झारखंड से हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक और जलेश्वर नायक, साथ में मुकेश नायक। मेहरनगर उमरखंड महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर और प्रिंस एकांश गवहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश गवहाणकर, वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी।

0: Infallible Setting Mist by L'Oreal Paris.
1: पापा कहते हैं, इस फिल्म का गाना आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा यह गाना है, तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने। पसंद आप सब की है। सरगुजा मैन पार्ट से है सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी के हैं परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा के हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। भटिंडा रोड डबवाली के हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: रिफ्यूजी फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का आपकी पसंद प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।
1: चार गुना हिट प्रोटेक्शन।
2: मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार बहनों, हम फिर से हाजिर है आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी को लेकर। मैं महजबीन और आज हमारे साथ एक और प्यारी सी सखी हैं,
1: सुभाषिनी। तो नमस्कार बहनों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगी। जिस तरह आपको इंतजार रहता है हमारे कार्यक्रम का, तो हमें भी वैसे ही इंतजार रहता है। तो आइए आपको बता दें कि आज जो हम जानकारी आपसे जो बातचीत करने वाले हैं, जानकारी साझा करने वाले हैं, वो सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे बढ़ता स्क्रीन टाइम और बच्चों का स्वास्थ्य पर।
0: बहनों, आज हर अभिभावक की यही भी शिकायत रहती है कि बच्चा मोबाइल का आदी होता जा रहा है। बहनों, यही तो कहना है ना कि हम सबसे पहले अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। इसके लिए तो हमें अपनी भी तो गलती सुधारनी है ना। क्यों बच्चों के सामने मोबाइल का उपयोग हमें भी, यानी हमें अभिभावक को भी नहीं करनी है।
1: बिल्कुल। तो बहनों, आज के डिजिटल युग में देखें तो स्क्रीन हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसकी लत में जकड़े हुए हैं और बच्चे भी अछूते नहीं हैं। और ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो बच्चे पर इसी पर, स्क्रीन पर ही ज्यादा समय बिता रहे होते हैं।
0: अगर हम डिजिटल के फायदे की बात करें ना बहना, तो काफी है वो काम जिसमें हम समय ज्यादा लगता था, जिसमें कि यानी कि जो हम काम बहुत ज्यादा समय के साथ करते थे, उसे आसान किया है डिजिटल ने। तो नामुमकिन को तो मुमकिन किया है, ये अच्छी बात है। पर हर प्रकार से हम इससे ज्यादा फायदा उठाते भी हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि हमारा काम का जो काम करने का तरीका है वो भी बदला है। मगर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो यहाँ भी वही है। नुकसान तो है, यानी कि ज्यादा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं नुकसान की, यानी कि बच्चों पर जो स्क्रीन टाइम को लेकर है, उसकी बातें हम करेंगे और चर्चा करेंगे।
1: तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की कि बच्चों पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, शारीरिक विकास में बाधा आ रही है लंबे समय तक स्क्रीन टाइम की वजह से, अक्सर गतिहीन जीवन शैली हो गई है, जिससे कि बच्चों की जो शारीरिक गतिविधि है उस पर बहुत असर पड़ रहा है।
0: सही कहा सुभाषनी। और ये भी ना है कि बच्चे जो जिस तरह से मोबाइल का यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके से बच्चों में जिस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, यानी कि जो परेशानी है वो हो रही है, उसे हम देख रहे हैं। लंबे समय तक स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय और बचपन दोनों के बीच बच्चों में जो मोटापा देखा गया, यानी कि बच्चों में जो बदन फैल रहे हैं, इससे में भी हो रही है। और इससे कैलोरी भी कमी आ रही है और आहार का विकल्प भी खराब हो रहा है। और ये भी देखते हैं कि बच्चे अक्सर बिना मोबाइल का खाना नहीं खाते हैं। और हाँ, हमने ये भी देखा है कि नींद में खलल भी आ गई है, यानी कि नींद सही वक्त पर जो होनी चाहिए, आनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। नींद भी पूरी नहीं हो रही है।
1: तो बहनों, स्क्रीन से जो आपको बता दे कि एक नीली रोशनी निकलती है जो नींद ना आने का कारण होती है, क्योंकि जो वो रोशनी होती है ना, वो हानिकारक होती है। बच्चों में अपर्याप्त नींद शारीरिक विकास में बाधा डाल सकती है, जिससे कि आंखों में भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करने से तनाव, चिड़चिड़ापन और निकट दृष्टि दोष भी हो रहे हैं, साथ ही साथ सर दर्द, बेचैनी भी हो सकती है। तो बहनों, अपने बच्चों को इस स्क्रीन टाइम से दूर रखें और इसके कुछ उपाय भी करें।
0: उपाय तो बहुत सारे हैं, यानी कि अगर हम देखा जाए ना कि बहुत ही उपाय बहुत ज्यादा नहीं है या बहुत मेहनत वाली नहीं है। आप इसमें बस इतना कर सकती हैं कि पहले उनकी रूटीन को बनाएं, स्क्रीन टाइम की भी, यानी कि जो आप पढ़ाई की रूटीन बना रही, खेल कूद की रूटीन बना रही हैं, और वो जिस तरह से जो भी एक्टिविटी करते हैं उनकी रूटीन बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि खेल कूद से उन्हें जोड़े, चाहे आउटडोर है या इनडोर, और नई नई आइडियाज की नई नई बातों को उनको सिखाएं, कुछ नए बुक्स पढ़वाएं, और कुछ बच्चों को अलग करने की कोशिश करें, ताकि उन्हें दिखाएं कि आप स्क्रीन टाइम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: समय समय पर जैसे कि आप उन्हें पार्क पर ले जा सकती हैं, छुट्टी के दिनों में पिकनिक पर ले जा सकती हैं, प्रकृति से जितना हो सके उनके नजदीक ले जाएं, और आप खुद देखेंगे कि बच्चों का कुछ उनमें कुछ बदलाव हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं नहीं कहीं उनको ये एहसास होगा कि बच्चों को कि जो प्रकृति है वो हमारे लिए अच्छी है।
0: हाँ, और सुभाषिनी यहाँ एक बात और है ना कि उन्हें कुछ नया करने की इच्छा भी होगी, तो बहने जो हमारी जो बहनें हैं या हम भी अपने बच्चों के साथ ये भी कर सकते हैं कि उनको समय दें और उनके स्क्रीन टाइम को कम करके और अच्छी अच्छी बातों से उनको जो भी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं, तो ये सारी यहाँ बातें जो हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनों, ये तो हो गई हमने बच्चों की जो स्क्रीन टाइमिंग है उसके बारे में बातें की, और अब वक्त है बहनों आपसे मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनने का।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में और समय है अब भेंट वार्ता का। हम आपको आज सुनवा रहे हैं बच्चों के लिए खेल और अनुशासन। हमारे आज के मेहमान हैं आशीष तिग्गा और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी।
1: हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है। यह व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करती है। खेल कूद के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है, क्योंकि बिना अनुशासन के खेल की सफलता संभव नहीं होती है। खेल और अनुशासन का सही मेल ही जीवन में संतुलन, सफलता और स्वस्थ रहन सहन सुनिश्चित करता है। इसलिए खास करके बच्चों के लिए खेल का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे हम खेल के माध्यम से बच्चों के जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बच्चों के लिए खेल और अनुशासन क्या मायने रखते हैं, इन्हीं तमाम बातों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं आशीष तिग्गा, जो एक गेम इंस्ट्रक्टर हैं। आशीष जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं अपने गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: सबको मेरा नमस्कार
1: जी। आशीष जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अनुशासन से आपका क्या तात्पर्य है?
2: अनुशासन का मतलब है नियम और अलग अलग तरह का जो विधि है उसका पालन करना। और अनुशासन का मेन मोटिव है बिना किसी के प्रेशर में या बिना किसी के डर से खुद से और एकदम सहज रूप से जो भी नियम है, जो

0: बनाए गए हैं उसका पालन करना। अनुशासन से समाज या देश या कहे कि परिवार अनुशासित होता है तो सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। और जो अनुशासन है उससे अपने आचरण में हम बदलाव कर सकते हैं, आचरण के व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं और उसी में ढल कर आदमी एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता है। वो आत्म संयम रखना सीख जाता है और ये समझता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या कहे तो अनुशासन एक प्रकार का भाव है, भाव कह सकते हैं, जो जो सबका सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए कुछ विशेष चाहता है।
1: जी। खेल में अनुशासन की अगर हम बात करें तो इसके क्या मायने बदल जाते हैं?
0: खेल में अनुशासन का मतलब है जब जैसे कि कहे कि आपके दोस्त कुछ खाने के लिए आपको ले जा रहे हैं बाहर, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे घर का खाना चाहिए, मैं खाना बना कर खा लूंगा। यानी कि मतलब कहने का मेरा मतलब है कि बाहर घूमने फिरने मौज मस्ती के मौके को छोड़ना ही अनुशासन है, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब है कभी कभी टीनेज के दिनों में 20 की उम्र में जीना,
1: जी जी
0: 20 की उम्र में जीना, क्योंकि ट्रेनिंग में ही लगे रहने के कारण आपको बेफिक्री का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अंधेरे में नल हो या ठंडी हवा हो या गर्मी हो या हवा बारिश बर्फ हो कुछ भी हो, उस आपको उसमें भी उठने की प्रेरणा ढूंढना, ट्रेनिंग के कपड़े पहनना, अपने दिन की सही शुरुआत करने के लिए तैयार रहना। जब आपका मन रुकने करे मन, तब भी आप नहीं रुके और आगे बढ़ना ही अनुशासन कहलाता है।
1: तो बात अगर हम बच्चों की करें तो उनके लिए खेलना कितना जरूरी है? आजकल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे सेल फोन, लैपटॉप, इनमें ज्यादा बिजी रहते हैं। अभिभावकों की भी यही शिकायतें रहती है, पढ़ाई से लेकर खेल तक यही उनका संसार है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
0: बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए खेल उतना ही जरूरी है जितना कि उनके लिए पढ़ाई जरूरी है और हेल्दी डाइट जितना जरूरी है। खेलने से बच्चों की हड्डियां और मांसपेशी मजबूत होती है, ये बच्चों को एक्टिव रहता है, उनका स्टेमिना बढ़ता है। आजकल बच्चों में मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियां देखने को मिलती है, आम है ये बीमारियां, इसका खतरा बहुत रहता है। पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो इस तरह से अगर खेल उनके इस चीज में मदद करता है, बीमारी से बचाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगाने में मदद करता है, टीम वर्क होता है खेल में, तो इससे बच्चे अनुशासन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, तो मेरे हिसाब से पढ़ाई से सिर्फ उनका बौद्धिक विकास होता है, जबकि खेल से ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी उनकी अच्छी बनती है, उनका उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है।
1: जी बिल्कुल, आपने कहा कि खेल से उनकी पूरी पर्सनैलिटी बनती है, उनका सर्वांगीण विकास होता है, तो वो अनुशासन उनके लिए क्या मायने रखता है?
0: जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के लिए खेल और अनुशासन उनके ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, उसकी मजबूत नींव बनाता है, जो उन्हें जीवन की जितनी भी चुनौतियां आती हैं उनको लड़ने के लिए तैयार करता है। जहाँ खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, वहीं अनुशासन में सही दिशा में आगे से बढ़ना सिखाता है। खेल कूद से बच्चे की मांसपेशियां, हड्डियां तो मजबूत होती ही है, शरीर में स्फूर्ति आती है, उनका जो आलस है वो दूर होता है। खेल के दौरान कई तरह की रणनीतियां बनती हैं, तो ऐसे में बच्चों को सोचने समझने की क्षमता और उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। टीम में खेलने से बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, दूसरों की मदद करना और मिलकर काम करना सीखते हैं। अनुशासित रहने से बच्चे दबाव की स्थिति में भी शांत रहना और अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जीत हार को स्वीकार करना है, जीत भी है खेल में, जीत भी है हार भी है, तो उससे कैसे टैकल करना है ये बच्चे सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अनुशासन बच्चों को सिखाता है कि हारने पर निराश होने के बजाय अपनी गलती से सीखे और अगली बार एक बेहतर प्रयास करें। बच्चे सीखते हैं कि सफलता अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ अनुशासित होकर और नियम का पालन करने से मिलती है। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चे सही समय पर सोते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, आत्म अनुशासन खुद विकसित करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद से दूर रखना उनके विकास में बाधा बन सकता है, क्योंकि एक अनुशासित खिलाड़ी ही जीवन के मैदान में भी सफल इंसान बनता है। इसलिए बच्चे के लिए खेल, खेल के जरिए अनुशासन, ये एक कड़ी है जो जोड़ती है जीवन की सफलता को। और इसलिए
1: जी
0: खेल बच्चों
1: बिल्कुल
0: के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीज जरूरी है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है और अनुशासन से हमारी पूरी जिंदगी का जो देखने का नजरिया है वो बदल जाता है। और बचपन से ही बच्चे को अगर खेलने के लिए प्रेरित करें, खेल के प्रति उनका रुझान जितना अगर है तो उन्हें प्रेरित करें, जीवन में उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। खेल में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, और यही अनुशासन बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। आशीष जी, आपने बच्चों के लिए खेल और अनुशासन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बहनों, अभी आप सुन रही थी ये भेंट वार्ता, जिसका विषय था बच्चों के लिए खेल और अनुशासन। और हमारे आज के मेहमान थे आशीष तिग्गा, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी सुभाषिनी।
1: बिल्कुल। और बहनों, अब इस भेंट वार्ता के बाद अब फिर वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम का दूसरा गीत सुनने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ बहनों अब हम आते हैं अपनी जो जानकारी आपसे साझा करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो महजबीन, आज कौन सी जानकारी लाई हो बहनों के लिए?
1: हम आज अपनी बहनों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण क्यों जरूरी है इसकी पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि पोषण सबसे ज्यादा हमारे सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। आपको क्या खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, अभी के दौर में बहुत जानना जरूरी है। बहनों, स्वास्थ्य जीवन शैली का एक अच्छी जीवन शैली की नींव है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग अक्सर पौष्टिक जीवन जो भोजन होते हैं ना, उसको खाने के बताते थे कि आपको समय समय पर किस तरह से खाना है, किस तरह से सोना है, सुबह के सवेरे उठना है, इसकी सलाह देते थे। और आज इन सब बातों को हम छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल जो चेंज होती जा रही है।
0: चेंज हो गई है, बिल्कुल सही कह रही हो। और बहनों, स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ आहार का पालन करना बेहद जरूरी होता है, और साथ ही सुबह जल्दी उठने की आदत भी होनी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य और दिनचर्या अच्छी तरह से हो। खान पान में हरी सब्जियों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है, भोजन एक ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति को उसमें पौष्टिक आहार मिलता है, ऊर्जा मिलती है, दिन भर काम करने की ताकत मिलती है। तो आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सारी जो जैसे हरी सब्जियां हो गई, फिर दालें हो गए, और फिर दूध हो गए, इन सब का जो शाकाहारी हैं उनके लिए, और जो मांसाहारी हैं वो मीट मछली भी अपने आहार में शामिल करें, है ना। और बहनों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हम ये वादा करते हैं कि फिर आपसे मिलेंगे। और आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। अब आपके सखी सुभाषिनी
1: और महजबीन को दे इजाजत, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे चंद फिल्मी नगमे।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: தலைமை கட்டுப்படை பாரதிய சேனா.
1: पहला गाना सुननी अंदाज फिल्म का नाम है, आवाज किशोर कुमार की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

अगला गाना भी किशोर कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम है इम्तहान। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार के गाए इस गाने के बाद आपको सुनवा रहे हैं धर्म कर्म फिल्म का गाना मुकेश और साथियों की आवाजों में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत आर डी बर्मन का है।

किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ ही फिल्मी गानों का हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपने सुनने वालों को याद दिला दें, दोपहर 1:20 पर आप सुनेंगे अनुरंजनी कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनवाएंगे सिद्धेश्वरी देवी से कजरी और राग झिंझोटी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 3:00। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का पुनः प्रसारण किया जाएगा 4:02 से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में SIR शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर BLO और BLA2 के साथ SIR की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ताश्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में आज हुल दिवस के मौके पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के शहीद महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हुल क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हुल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर पुरखों का संघर्ष ही हमारी पहचान है और उनका बलिदान हमारी शक्ति है।
1: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
0: इधर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हुल दिवस पर संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके संघर्ष को जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। झारखंड में SIR आज से शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी तोरपा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित BLO और BLA2 की बैठक का निरीक्षण कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने सरायकेला में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कार्य योजनाओं की समीक्षा की।
2: आज जो है ये सारे चीज कार्यक्रम की विवरणी आपको उपस्थित होकर बताया जा रहा है, जिसमें नए वोटर को जोड़ने की आहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2026 है। BLO द्वारा घर घर का दौरा किया जाएगा जो आज से शुरू हो रहा है 29 जुलाई तक, जिसमें कि इन्यूमरेशन फॉर्म प्रत्येक मतदाता को 2-2 इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा।
0: उधर हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि जिले में लगभग 81% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। वहीं जिनका मैपिंग नहीं हुआ है उन्हें प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
3: 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक सभी लोग अपना गणना प्रपत्र भर करके BLO को वापस कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस समय उपलब्ध नहीं है अपने मतदान केंद्र में, अपने घर में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका कोई नातेदार वो PDF बना करके उनको मोबाइल पर भेज दें, वो प्रिंट आउट निकाल करके उसको भर करके सिग्नेचर करके पुनः PDF वापस कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसको कंसिडर करेंगे और वो गणना प्रपत्र मान्य होगा और उनका मतदाता सूची में जो ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाना है 5 अगस्त को, उस ड्राफ्ट प्रकाशन में उसका नाम आ जाएगा।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

0: ने अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 जुलाई को झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से होगी। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने और नीतिगत मामलों पर चर्चा होने की संभावना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिले में सहकारी सप्ताह समारोह शुरू हुआ। जिला सहकारिता पदाधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता के आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना, समितियों को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक और सामाजिक विकास को गति देना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी से कल 4थी मौत दर्ज की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली।
2: वही देखने हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ ब्रेन मलेरिया वाले पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, खास करके बच्चे हैं। तो ज्यादातर की स्थिति ठीक है, यहाँ पे कई लोग तो रिकवर कर गए हैं। एक दो बच्चे हैं जो भी सीरियस हैं, तो उनको जो बेस्ट दिया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब लोग सब प्रयास कर रहे हैं। उनको दवाई ववाई सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ अवेलेबल है।
0: वहीं जिले के चिकित्सा पदाधिकारी साहिर पॉल ने बताया कि प्रभावित गाँव में जाँच के बाद 43 लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई। वहां निगरानी, जांच और उपचार अभियान चलाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। आईटी, मेटल और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयर कमजोर बने हुए हैं। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और हजारीबाग में बादल गर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया है। जमशेदपुर की टाटा आर्चरी अकादमी के 3 तीरंदाजों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हुआ है। गोल्डी मिश्रा और आदित्य वाधवा एशिया कप स्टेज 2, स्टेज 3 और एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में ईरान, चीन और दुबई में खेलेंगे। वहीं के युक्ताश्री का चयन एशिया कप स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हुल दिवस पर संथाल विद्रोह के शहीद क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा, संथाल से हमारे पुरखों ने शोषण और अन्याय को दी चुनौती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का आज से पालन कराने का दिया निर्देश। झारखंड में SIR शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी के विभिन्न मतदान केंद्रों पर BLO और BLA2 के साथ SIR की समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया से अब तक 4 लोगों की मौत, 43 संक्रमित लोगों का इलाज जारी। और जमशेदपुर की टाटा आर्च

0: मिस्त्री अकादमी के 3 तीरंदाजों गोल्डी मिश्रा, आदित्य वाधवा और के युक्ता श्री का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची क्षेत्र से बोल रहे हैं। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज हम सुनेंगे, कलाकार होंगी सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में। आज की कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं चंद गजलें। पहली गजल गुलाम अली की आवाज में।

0: मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडएसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
5: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: चार पाँच मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जय भारती। कार्यक्रम जय भारती में पहला नगमा फिल्म नाम से पंकज उधास की आवाज है और इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में अगला गीत फिल्म जानवर से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलंद ने।

0: कार्यक्रम जय भारती जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: संदेश के बाद कार्यक्रम जय भारती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत आरडी बर्मन के संगीत में फिल्म कारवां से है। इस गीत को अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: फिल्म दिल ही तो है से इस गीत को आपने सुना। इस गीत के साथ कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी जिले के तुरपा प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने कई मतदान केंद्रों पर BLO और बूथ लेवल एजेंटों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा जिले में इस अभियान का जायजा लेने आज खुद जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बंगला रोड स्थित आयशा कच्छी उर्दू बालिका विद्यालय के विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO को गणना प्रपत्रों का जल्द वितरण करने और समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से भी अपील की कि वे आम जनता को इस अभियान के प्रति जागरूक करें।
2: 7 अक्टूबर को फाइनल जो वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है, तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी हम लोग जो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई हमारे सारे BLO जो है एनुमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे, और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता हैं वो हस्ताक्षर करके वापस करेंगे, और जिनका एनुमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान 11 अक्टूबर को पटना में जयप्रकाश नारायण जयंती मनाने का आह्वान किया। उन्होंने झारखंड सरकार पर विकास कार्य रोकने का आरोप लगाया और कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बताया।

0: अब यहाँ का पहाड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का गिट्टी और यहाँ के लोगों को 300 उसके अलावा जीएसटी वाले बालू का टेंडर नहीं हो रहा। ये विकास अवरुद्ध है, सड़कें टूटी फूटी, बीच में थोड़े बहुत रिपेयरिंग हुए हैं, नहीं तो कोई अच्छी सड़क नहीं। आज विकास के लिए पैसे नहीं है, अब आप कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो और यहाँ घोषणा कर दिया कि हम इतना रुपया। ये जो जनता को खरीदने की बात जहाँ जहाँ भी होती है, राजनीति इस रूप में नहीं होनी चाहिए।
1: राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों का शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह 11:30 बजे लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चारों नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह में राज्य के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज हुल दिवस शौर्य और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। संताल विद्रोह के अमर शहीदों को नमन करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकभवन में हुल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सहित तमाम वीर शहीदों को नमन किया। उधर उपराजधानी दुमका में संताल हुल दिवस के अवसर पर पोखरा चौक स्थित सिद्धो कान्हू और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने इस अवसर पर सरकार की विकास नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि विधायक बसंत सोरेन ने जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया।
2: मैं इतना ही कहूंगा कि आज के दिन को लोग जरूर याद करें, जरूर मनाएं और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए, उन अनुसरण करते हुए अपने जीवन को प्रेरणा के तौर पर एक उनके द्वारा कार्य जो उन्होंने किए हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें।
1: रांची के गड़खंडा में खेत बचाओ अभियान के तहत एक किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से वैज्ञानिक और जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 500 से अधिक जनजातीय किसानों के बीच उन्नत बीज और कृषि किट बांटे गए। जामताड़ा के दुलाडीह स्थित प्रखंड रिसोर्स सेंटर में आज विशेष विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की इस पहल पर सचिव पवन कुमार ने कहा कि सभी दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कर उन्हें जरूरी उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। शिविर में विकलांगता प्रमाण पत्र भी बांटे गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक है एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम

0: बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला
0: विमलेश जी? वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ
1: जी।
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
1: जी।
0: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं
0: जी। तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है
0: जी। हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है
0: जी। ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए
1: जी।
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
1: जी।
0: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800-4400-559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें।

0: तुमने, तो यही करो, यही करो।
1: पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
2: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन? कू कू।
3: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
4: मेरा भी कुछ यही हाल है।
1: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
2: क्या क्या
4: क्या, क्या?
1: जहाँ सब तक कोयल गाए,
2: नीचा
1: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
3: जो आज्ञा महाराज।
2: दम लगा के कू।
4: हईशा
1: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलू उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम। क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काँ, काँ, काँ।
4: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
1: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
4: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
1: का, का, का।
3: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काम काम शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
1: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
3: जानवर यही आ रहे हैं, भयानक गर्मी है ना
4: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
0: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
4: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
3: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
0: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
3: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
4: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
0: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा।

0: पता।
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
0: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
0: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम रांची मेलोडीज सुनने वालों को मेघना का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज प्यासा सावन फिल्म से करते हैं। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा आईडी बर्मन के संगीत में गुलजार का लिखा फिल्म गोलमाल से। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने।

दोस्तों, खुश मन और खुश चेहरा यही जीवन की संपत्ति है। इसीलिए हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। इस गीत के साथ कार्यक्रम

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट टीडीएस मेगा आउटरोल्स इनकम टैक्स। प्रस्तुति सहायक है बसंत कुमार।
1: नमस्कार, मैं हूं बसंत कुमार और एक बार फिर से उपस्थित हैं हम आज एक नए विशेष कार्यक्रम को लेकर। टीडीएस मेगा आउटरीच प्रोग्राम 2026 जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार झारखंड के द्वारा सीसीएल ऑडिटोरियम दरभंगा हाउस में 29 तारीख को आयोजित किया गया था, जिसमें नए टैक्स प्रावधानों, नए नियमों को लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके उपरांत सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और फिर दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर डी सुधाकर राव, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार झारखंड उपस्थित थे। श्री नीलेंदु कुमार सिंह, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, वाइस चांसलर बीआईटी मिश्रा और चीफ स्पीकर के रूप में श्री गणेश मोहन डॉस, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड, मौके पर उपस्थित थे। और श्री के एल कनक, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस बिहार झारखंड, मौके पर उपस्थित थे। वेलकम एड्रेस में डॉक्टर डी सुधाकर राव ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए नए टैक्स प्रावधानों और नियमों में हुए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए
2: ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एस्टीमेड टैक्स पेयर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, टैक्स डिडक्टर्स, टैक्स बार एसोसिएशन, मेंबर्स ऑफ मीडिया एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू आवर नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर and economic progress. To further support you, the department has undergone a technology-driven transformation, introducing faceless assessment, simplified procedures, and online services to make compliance easier and make transparent. Today, we are here to discuss a historical milestone in this transformation, the introduction of the Income Tax Act 2025, which officially came into force from 1st April 2026. Over the past 6 decades, the old 1961 Act had expanded to more than 800 sections, heavily cluttered with complex legal jargon. To align with the global best practices and foster a trust-based tax environment, the government recognized the need for a modern, accessible law. The new Income Tax Act 2025 is very concise, lucid, and easy to understand by a common graduate. Though today's outreach program is predominantly a nationwide campaign on tax deducted at source, I would like to take you through the salient features of new Income Tax Act, which fundamentally enhance the ease of doing business in India. There is a massive reduction in volume and complexity. As I told you, around 819 sections have been decluttered into around 536 sections. Likewise, rules reduced from 511 to 333. Similarly, the number of forms have reduced from 399 to 190. And the entire word count reduced from 5 lakhs to 2.5 lakhs. Around 1,200 provisos and 900 explanations have been removed and seamlessly integrated into clear, logically structured subsections. The next introduction of the new concept tax year. In fact, earlier there was a confusion, the previous year and assessment year. Now it has become only one nomenclature by tax year, in which the income is earned will be assessed in the same year. So this is to align the Indian tax system with international norms. Therefore, we have brought tax year concept.

0: design to increase the bracket so that more number of people will come and they will file the return. इस तरीके के संदर्भ हैं टैक्स के जो कर जो व्यवस्था थी काफी सुदृढ़ मानी जाती थी एंड दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कर व्यवस्था थी बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस द टैक्स सिस्टम विच यूज टू बी इन एंशियंट टाइम एंड द टैक्स सिस्टम वी हैव टूडे अर्लियर टाइम द टैक्स सिस्टम वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द व्हीकल टू रेज द रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज यूज टू बी raised by the king and the king had the power how to use these resources but today the taxation has become a kind of social contract between citizen and the government
1: अभी हमारे साथ में हैं डॉक्टर डी सुधाकर राव जो कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं बिहार एवं झारखंड के और आज हम इनसे मिले हैं इस टीडीएस आउटरीच प्रोग्राम में तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हुआ है रांची झारखंड में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे क्या मकसद है इसके बारे में भी जानेंगे साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जो आम पब्लिक है जो आम जनता है जो टैक्स पेयर है उनको क्या बेनिफिट होने वाला है इसके बारे में तो लेकिन सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर
2: थैंक यू सो मच
1: सर सबसे पहले तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारत में टैक्स पेयर जो टैक्स भरते हैं उनकी जो संख्या है वो काफी कम है बाकी कंट्री से तो हमारे देश में जो टैक्स भरने वाले लोग हैं जो टैक्स सच में भरते हैं और आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया उसको लेकर के जो बेनिफिट लोगों को होगा हम उसके बारे में भी जानेंगे लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे आपका क्या मकसद है क्या उद्देश्य है इसके बारे में सबसे पहले बताएं
2: हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत लीगल जर्गन एंड लैंग्वेज बहुत कठिन था ये उनके लिए पब्लिक और टैक्स पेयर्स एंड ग्रेजुएट्स कॉमन ग्रेजुएट्स अंडरस्टैंड करने के थोड़ा मुश्किल हो गया इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड दिस प्रॉब्लम एंड वांटेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू इनकम टैक्स एक्ट विदाउट डिफिकल्ट लैंग्वेज वेरी कंसाइज लूसिड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाई एनी कॉमन ग्रेजुएट ऐसा बनाने का कोशिश किया
1: जी
2: इसलिए हमारा 1961 एक्ट को थोड़ा रिप्लेस करके 2025 एक्ट को लाया है उसका बहुत लोग और डिलिबरेशंस के बाद एंड स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया एंड ये हमारा इजी होता है कम से कम 5 लाख वर्ड्स को 2.5 लाख को कम किया ऐसा है टोटल सेक्शंस इन द ओल्ड एक्ट 800 एंड ऑड को ओनली 500 को रिड्यूस किया ऐसा प्रोविजोस एंड नॉट विद स्टैंडिंग ऑल सच डिफिकल्ट वर्ड्स को सीमलेसली डिलीट किया रिमूव किया
1: तो सर अभी जो वर्तमान में जो नियम चल रहा था उसमें और अभी जो

0: अब उनको आसानी होगा, उनको फायदा होगा। लेकिन सर आप लोगों ने अभी जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है और इससे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अभी तक में आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस मिले हैं और क्या क्या बेनिफिट हुए हैं?
1: आउटरीच प्रोग्राम का मतलब क्या है? सबको टैक्स पेयर्स के उनका प्लेस जाके हम इनकम टैक्स ऑफिसर्स एक्सप्लेन करके अवेयरनेस लाने के लिए बहुत जरूरत है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड कोलाबोरेटिव रिलेशनशिप टैक्स पेयर्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस एंड प्रोवाइडिंग टाइमली गाइडेंस। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिमेन्स कमिटेड टू फोस्टरिंग ए टैक्स पेयर फ्रेंडली एनवायरमेंट through continuous engagement with stakeholders. Such outreach programs help bridge the information gap, promote a culture of voluntary compliance, and strengthen the partnership between the department and taxpayers. Yes. This is the aim of today's outreach program.
0: तो अभी ये तो रांची में हो रहा है और आप लोगों का आगे का भी प्लान होगा कि अलग अलग सिटीज में करेंगे अलग अलग, तो उसके लिए आप लोगों ने मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगहों को चुन रखा है?
1: हाँ जी अभी पहले लास्ट मंथ में पटना में हुआ, अभी रांची में हो गया
0: जी,
1: नेक्स्ट धनबाद में होने का कोशिश कर रहा है, एंड इवन जमशेदपुर में भी ऐसा छोटा सा आउटरीच प्रोग्राम बनाने का कोशिश कर रहा है।
0: क्योंकि सभी लोग इनकम टैक्स अभी फाइल नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग फाइल कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बीच में काफी बड़ा गैप है। तो जो लोग फाइल नहीं करते हैं या फिर जो जानबूझकर बचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकम टैक्स फाइल करना क्यों जरूरी है और इसको फाइल करने से क्या उनको बेनिफिट होगा और कंट्री को क्या फायदा होगा, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: आजकल सब में डिजिटल ट्रांजेक्शन आ गया, सबका ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड हो रहा है
0: जी।
1: सब लोगों को मालूम होना पड़ेगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जरूरत है। इसलिए हम कुछ भी हो टैक्स पे करो, टैक्स पे करेगा तो आपको लोन्स का, बैंक से लोन्स का अवसर है तो वो भी दे देगा। ऐसा छोटा छोटा MSMEs एंड स्मॉल प्रोप्रेटरी कंसर्न, दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इफ नॉट एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए वो अच्छा है, इसलिए हमको सभी को मैं मैसेज दे रहा हूँ, सब छोटा छोटा इनकम टैक्स पे करके आप इनकम टैक्स फाइल हमेशा एवरी ईयर फाइल करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।
0: तो अभी हमने डॉक्टर डी सुधाकर राव सर से बात किया जो कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं बिहार एवं झारखंड के, और इन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर जो भी बातें बताई हैं वो आम लोगों को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई बात है और इनकम टैक्स जो कि हम सभी भरते हैं और हमारे देश की बढ़ोतरी, हमारे देश के विकास में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम सभी को इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए। सर आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो हमने आज आपसे ढेर सारी जानकारी साझा कर दी TDS मेगा आउटरीच प्रोग्राम 2026 जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार झारखंड के द्वारा CCL ऑडिटोरियम दरभंगा हाउस में आयोजित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी और तथ्यों को लेकर। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है

0: खुल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: अभी आपने सुना रेडियो रिपोर्ट टीडीएस मेगा आउटरील इनकम टैक्स प्रोग्राम, प्रस्तुति सहायक थी बसंत कुमार की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। हुल दिवस पर संथाल हुल की ऐतिहासिक धरती भोगनाटी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आरोप लगाया है कि भोगनाटी को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोगों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। धनबाद में आज हुल दिवस पर वीर सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि दी गई। बरमसिया पुल चौक पर विधायक राज सिन्हा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों का अदम्य साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। सिमडेगा में भी आज हुल दिवस पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को याद किया गया। आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को नमन किया। दुमका के शिकारीपाड़ा से विधायक आलोक कुमार सोरेन ने आज क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वीर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हुल दिवस के मौके पर उन्होंने पांच पहाड़ी, जीवनपुर चौक और जगदीशपुर सहित कई जगहों पर शहीदों को नमन किया। पलामू के पोखराहा और जोड़ में ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। पांके विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे का काम पूरा होने तक जोरकट टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली रोकने की भी मांग की। रामगढ़ के पतरातू में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल की युवा संवाद चौपाल यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजद की नीतियों और लालू प्रसाद की विचारधारा को पूरे देश में फैलाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम क्रीड़ा जगत, रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर होगी अमित अखौरे की, प्रस्तुति एवं संयोजन होगा प्रभु शरण का।

टेढ़ा गढ़ा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। चर्चा में आज हम सबसे पहले बातचीत करेंगे भारत और आयरलैंड के बीच संपन्न T20 सीरीज की, जिसमें आयरलैंड ने इतिहास रच डाला और भारत को 2-0 से पराजित किया। राजस्थान के टोंक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जय मुंदड़ा ने आईपीएल सितारों से भरे भारत के बल्लेबाजी क्रम की नींव हिला दी और आयरलैंड ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए T20 विश्व चैंपियन भारत रविवार को दूसरे वनडे में 1 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया और इतिहास रच डाला। वनडे विश्व कप 2011 में इंग्लैंड पर मिली जीत के बाद आयरलैंड के क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा पल है और इस हार के साथ ही भारत का T20 क्रिकेट में लगातार 16 सीरीज जीतने के अभियान पर एक तरह से विराम लग गया। भारत 2023 के मध्य से T20 सीरीज नहीं हारा है। इससे पहले टॉस हारकर आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। टीम की ओर से हैरी टैक्टर ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। भारत की ओर से डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सके। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। आयरलैंड के लिए जय मुंदड़ा ने 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच। भारतीय पासपोर्ट धारक मुंदड़ा ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को खाता भी नहीं खोलने दिया और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का विकेट भी चटकाया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस मैच में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला और इससे पहले वनडे की अगर हम दोस्तों चर्चा करें तो आयरलैंड ने पहले T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम को 34 रनों से पहले T20 मैच में हराकर इतिहास रचा और यह आयरिश टीम की भारत के खिलाफ 12 मैचों में पहली जीत रही और इससे पहले दोनों टीमों के बीच हुए 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते थे। मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को 183 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था, लेकिन टक्कर ने 50 रन बनाए और तीसरे मुकाबले में 50 जड़े। नए कप्तान श्रेयस की अगुवाई में चेज करने उतरी भारतीय टीम 148 रन पर ऑल आउट हो गई। अभिषेक शर्मा ने 49 रन बनाए 20 गेंद में। उनको छोड़कर अन्य कोई भी भारतीय बैटर बड़ी पारी नहीं खेल सका। प्लेयर ऑफ द मैच मैथ्यू होलार्ड ने 3 विकेट लिए 28 रन देकर और जय मुंदड़ा ने भी 25 रन देकर 2 विकेट लिए। ये उनका डेब्यू मैच था और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का 2024 से चला आ रहा 12 सीरीज जीत का सिलसिला भी टूट गया। 23 रन खर्चे प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने चौथे ओवर में और यह किसी भारतीय का आयरलैंड के खिलाफ सबसे महंगा ओवर था। प्रसिद्ध कृष्णा का ओवर बहुत ही महंगा रहा और इस तरह से दोस्तों आयरलैंड ने भारत को 2 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 से पराजित करके इतिहास रच डाला। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड सिर्फ गोल जीत या हार के ही नहीं बन रहे, इस बार चर्चा मैदान के बाहर बनने वाले रिकॉर्ड की भी हो रही है। यानी गोल कितने बन रहे हैं, जीत कितने हो रही है, इससे संबंधित रिकॉर्ड तो अलग है लेकिन मैदान के बाहर भी कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टिकटों की कीमत के रिकॉर्ड बन रहे हैं, होटल का जो किराया है उसके रिकॉर्ड बन रहे हैं, स्टेडियम तक पहुंचने का खर्च, खाने पीने की कीमतें और भीषण गर्मी में इन सब ने इस विश्व कप को अलग पहचान दी है। विश्व कप खेल के साथ साथ खर्च और चुनौतियों के लिए भी ये याद किया जाएगा। फीफा की होने वाली रिकॉर्ड कमाई की भी खूब चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा टिकटों के रीसेल नियम को लेकर हो रहे हैं, इसकी कुछ आलोचना भी हुई है और पूर्व के खिलाड़ी इसे अमीरों का विश्व कप कह रहे हैं। टिकटों की बात करें तो टिकट की रीसेल वैल्यू 3,225 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। ये इतना पैसा है जिसमें आप 303 आईपीएल मैच। फीफा विश्व कप में पहली बार टिकटों का रीसेल नियम लागू किए गए और इससे मांग बढ़ने पर टिकटों के दाम कई गुना तक बढ़ जा रहे हैं। अभी से ही पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच होने वाले राउंड ऑफ 32 मुकाबले का सबसे कम कीमत वाले टिकट की रीसेल वैल्यू 3,225 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, जो एक तरह से एक रिकॉर्ड है। और कहा जा रहा है कि इतने में तो आप 1,000 रुपए वाले टिकट लेकर 303 आईपीएल मैच देख सकते हैं। कई प्रीमियम हॉस्पिटलिटी पैकेज 40 लाख
डॉलर में भी बिके हैं। फीफा के अनुसार इस बार टिकट बिक्री का नया रिकॉर्ड बन गया है। पहली बार 104 मैच खेले जाने की वजह से अब तक करीब 4 मिलियन से अधिक टिकटों की बिक्री हो चुकी है। अधिक मैच से अधिक संख्या में टिकटों के बिकने, प्रायोजक और मीडिया राइट से इस बार फीफा को रिकॉर्ड कमाई होने वाली है। तमाम रिपोर्ट को अगर हम ध्यान रखें तो विश्व कप 2026 से करीब 11 से 13 अरब डॉलर तक फीफा को आय हो सकती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में मैच देखने

आने वाले प्रशंसकों के लिए 12 किलोमीटर राउंड ट्रिप ट्रेन टिकट पहली बार $150 में मिल रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह किराया मात्र $12.9 था। प्रशंसकों को सबसे अधिक परेशानी खाने पीने के सामानों को लेकर हो रही है। विश्व कप के दौरान स्टेडियमों में मिलने वाले खाने पीने के सामान की कीमतें भी चर्चा के विषय बनी हुई है। स्टेडियमों में आधा लीटर पानी $6 से $8 तक में बिक रहा है। और अब पर्सनालिटी में अब हम बात करने जा रहे हैं रोनाल्डो। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ह्यूस्टन में इतिहास रच डाला। वे 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। 41 साल के रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ ग्रुप के मुकाबले में यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने मैच के 6th और 39th मिनट में गोल किए। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही 5 बार के बेलन डियोर विजेता रोनाल्डो ने अपने 10 मैचों के गोल के सूखे को भी खत्म कर दिया। उन्होंने किसी बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में नवंबर 2022 के बाद से कोई गोल नहीं किया था। रोनाल्डो ने 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 वर्ल्ड कप गोल दागे हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ही 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि मेसी 2010 वर्ल्ड कप में गोल नहीं कर पाए। 41 साल 138 दिन की उम्र में रोनाल्डो वर्ल्ड कप के इतिहास के दूसरे सबसे उम्र दराज गोल स्कोरर भी बन गए हैं। फिलहाल यह रिकॉर्ड कैमरून के रोजर मिला के नाम है। पिछले मैच में कांगो से 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो और पुर्तगाल की काफी आलोचना हो रही थी, लेकिन पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो को टीम का रोल मॉडल बताकर उनका बचाव किया था। रोनाल्डो के नाम अब 10 वर्ल्ड कप गोल हैं और यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। अब पर्सनालिटी में थोड़ी चर्चा हम मेसी की कर लें। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास रचा। ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेले गए मैच में मेसी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का 17वां गोल दागा और इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मेसी ने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड तोड़ा। क्लोजे के नाम वर्ल्ड कप में 16 गोल दर्ज। मेसी ने यह कमाल अपने 40वें जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले किया। मैच के 38वें मिनट में गोल करके मेसी ने अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि इससे करीब आधे घंटे पहले उनके पास रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था, लेकिन वे पेनल्टी में चूक गए थे। मेसी ने अपने बाएं पैर से किक मारी, लेकिन बॉल राइट गोल पोस्ट के बगल से बाहर चली गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने 95वें मिनट में मैच में भी गेंद को नेट में पहुंचाया और टूर्नामेंट में अपने गोल की संख्या 18 तक पहुंचा दी। अर्जेंटीना ने अंततः यह मैच 2-0 से जीता और नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। मेसी ने ग्रुप जे के पहले मैच में अल्जीरिया के खिलाफ 3-0 की जीत में हैट्रिक लगाई थी और क्लोजे की बराबरी की थी। मेसी अपना 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और यह टूर्नामेंट में उनका 28वां मैच था, जो कि अपने आप में फीफा का एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो मेसी 39 साल के हो गए और उनके जन्मदिन पर फैंस ने एक बहुत बड़ा तोहफा उनको दिया। अर्जेंटीना के पेटागोनिया शहर में मेसी की 85 फीट यानी 26 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई गई है। यह उनके सम्मान में बनी अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है और इस मूर्ति में 70,000 किलो स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने वाले 61 साल के आर्टिस्ट एल्डो बोरोइसा को यह काम पूरा करने में 18 महीने लगे। इसमें मेसी को 2022 वर्ल्ड कप जीतने के बाद घुटनों के बल बैठे और आसमान की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया है। इस नई मूर्ति ने भारत के कोलकाता में बनी 70 फीट यानी 21.3 मीटर ऊंची मूर्ति को पीछे छोड़ दिया और वह मूर्ति सिर्फ 27 दिन में तैयार हुई। हालांकि हवा से हिलने की वजह से उसे असुरक्षित मानकर इसी महीने हटा दिया गया। अब उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाने की योजना है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में मेसी की 18 फीट ऊंची एक शानदार पेंटिंग भी दीवार पर बनाई गई है। इस पर मेसी के 1,300 फैंस के नाम लिखे हैं। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस बार मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ एक खास स्मार्ट बॉल का भी जलवा दिख रहा है। फीफा और एक कंपनी ने मिलकर इस टूर्नामेंट के लिए ट्रायोंडा नाम की एक कनेक्टेड बॉल
पेश की है यह कोई साधारण फुटबॉल नहीं है दोस्तों, बल्कि तकनीक का एक ऐसा शानदार नमूना है जो वीडियो असिस्टेंस रेफरी VAR पलक झपकते ही एकदम सटीक जानकारी सटीक डेटा देती है। हालांकि इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन की तरह इस बॉल को भी बकायदा चार्ज करना पड़ता है। इस स्मार्ट गेंद का सबसे बड़ा फायदा ऑफ साइड के फैसलों में हो रहा है और अक्सर ऑफ साइड के फैसलों में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि खिलाड़ी का पैर गेंद से ठीक किस मिली सेकेंड में टकराया यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। दरअसल मैदान पर लगे कैमरे वीडियो को एक सेकेंड में 50 फ्रेम यानी 50 FPS की स्पीड से रिकॉर्ड करते हैं। इतने कम फ्रेम में सटीक किक पॉइंट को खोजना वीडियो रेफरी के लिए काफी कठिन काम होता है और इसी समस्या को दूर करने के लिए ट्रायोंडा बॉल के अंदर एक ऐसा छोटा इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट लगाया गया है। यह एडवांस सेंसर एक सेकेंड में 500 बार गेंद की स्पीड, दिशा और 3D मूवमेंट का बारीकी से डेटा कैप्चर करता है। यह डेटा सीधे वीडियो ऑपरेशन रूम में जाता है। इससे रेफरी को तुरंत पता चल जाता है कि गेंद को कब और किसने छुआ है। यह तकनीक ऑफसाइड के अलावा विवादित हैंडबॉल के मुश्किल फैसलों में भी बेहद मददगार साबित हो रही है। जैसे कि स्वीडन और ट्यूनिशिया के एक मैच में एक गोल को शुरुआत में ऑफसाइड मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन गेंद से मिले तुरंत डेटा से पता चला कि स्वीडन के एक और खिलाड़ी का गेंद पर बहुत हल्का सा टच लगा था जिसने स्कोरर को ऑनसाइड कर दिया। नतीजतन रेफरी ने गोल को सही करार दिया। कतर वर्ल्ड कप 2022 की गेंद भी कोई ऐसा सटीक डेटा नहीं दे सकती। इस कनेक्टेड बॉल तकनीक को मैदान पर उतारने से पहले 2020 से 2022 के बीच कई कड़े टेस्ट किए गए। फीफा की इनोवेशन टीम हर टूर्नामेंट से पहले इसकी बारीकी से जांच करती है। कतर वर्ल्ड कप 2022 की तुलना में इस बार की तकनीक और भी उन्नत है। पिछली बार चीप गेंद के बिल्कुल बीच में थी, लेकिन नई ट्रायोंडा बॉल में इसे साइड पैनल में फिट किया गया। लैब में 300 से ज्यादा टेस्ट किए गए ताकि चीप के साइड में होने के बावजूद गेंद का वजन, बैलेंस, रोटेशन और हवा में तैरने की क्षमता बिल्कुल सटीक रहे, कहीं कोई परेशानी न हो। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और मैच की गेंदों में कंफ्यूजन न हो, इसलिए ट्रेनिंग वाली गेंदों और मैच वाली गेंदों में हवा भरने वाले बल्ब का रंग अलग अलग रखा गया। कुल मिलाकर तकनीक से लैस या स्मार्ट बॉल खेल को और भी अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बना रहा है। इस गेंद के अंदर एक हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी है दोस्तों, इसलिए इसे पावर की जरूरत होती है। मैच के बीच में बैटरी खत्म न हो, इसके लिए एक कर्मचारी लगातार सभी गेंदों की बैटरी पर नजर रखता है। हर मैच के लिए करीब एक दर्जन गेंदों को वायरलेस डॉकिंग स्टेशन में पहले से चार्ज करके रखा जाता है। बिल्कुल खाली बैटरी वाली गेंद को फुल चार्ज होने में करीब 2.5 घंटे लगते हैं और एक बार चार्ज होने पर गेंद 6 घंटे तक चलती है। पावर बचाने के लिए जब गेंद मैदान से बाहर साइडलाइन पर होती है तो यह अपने आप हाइबरनेशन मोड में चली जाती है। तो दोस्तों देखिए तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब पहले से ज्यादा बारीकियां देखने को इसमें मिल रही है। और खास खास में एक और बात है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार ये हो रहा है कि जर्सी पर बैज जो लगा है वो फुटबॉलरों की लेगेसी को बता रही है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जा रहे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर लगा एक छोटा सा बैज इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि खिलाड़ियों की विश्व कप की यात्रा, उनके अनुभव और उपलब्धियों की पहचान भी पेश कर रही है। फीफा और उसके तकनीकी साझेदारों इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों की जर्सी स्लिप पर विशेष किट बैच लगाए हैं, जिनके जरिए दर्शक मैदान पर ही जान जाते हैं कि खिलाड़ी का विश्व कप का इतिहास क्या रहा है, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। इन बैचों का उद्देश्य खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देना और प्रशंसकों को उनको करियर से जोड़ना है। जैसे मेसी के लेगेसी बैच की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी की जर्सी पर लगा विरासत बैच उनके शानदार विश्व कप करियर की कहानी कर रहा है। मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। 2022 में अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने के बाद उनका नाम महानतम खिलाड़ियों में शुमार हो चुका है। रोनाल्डो की लेगेसी बैच की बात करें तो पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पर भी विरासत बैच लगा है। रोनाल्डो रिकॉर्ड 6 विश्व कप में खेल रहे हैं, विश्व कप के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और रोनाल्डो का यह बैच उनकी लंबी कहानी और यादगार यात्रा का सम्मान है। जिन देशों ने पहले विश्व कप जीता है उनकी जर्सी पर सामान्य विश्व कप लोगों की जगह सुनहरे रंग का विश्व कप बैज भी लगाया गया है, जो अलग से उनको सम्मान प्रदान कर रहा है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक
टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक महाकुंभ है जो पेरिस ओलंपिक से करीब 4 गुना बड़ा है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी करीब 600 करोड़ लोग इस आयोजन से जुड़ गए हैं। 39 दिन तक चलने वाले इतने बड़े आयोजन को लेकर दुनिया भर के ब्रांड्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां इस वर्ल्ड कप में विज्ञापनों पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। यह वर्ल्ड कप वैश्विक इकोनॉमी में करीब 3,86,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा और दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा, जहां सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में ही करीब 41,000 करोड़ रुपए की बंपर कमाई होगी, जबकि कुल फायदा 1,62,00,000 करोड़ तक होगा। विज्ञापनों की कीमत आसमान छू रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपना विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनियों को लगभग 236 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शुरुआती विज्ञापनों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का न्यूनतम पैकेज भी रखा गया है। फीफा को ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से करीब 84,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है, जो 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप डील बिक चुकी हैं। और एक बात और है दोस्तों कि ये प्रवासी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है, जिसमें 292 प्लेयर्स अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की नागरिकता और माइग्रेशन के दिलचस्प आंकड़ों के लिए भी चर्चा में है। 48 टीमों के 1,248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ। टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें कोई विदेशी मूल का खिलाड़ी शामिल नहीं है। माइग्रेशन, पुराने औपनिवेशिक संबंधों और फीफा के बदले नियमों ने वर्ल्ड कप की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आंकड़ों के लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है और इस वर्ल्ड कप में फ्रांस में जन्मे 98 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनमें से 76 खिलाड़ी फ्रांस की जगह किसी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटबॉल में यह स्थिति बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों। 1930 के पहले वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जन्मे खिलाड़ी शामिल थे। समय के साथ फीफा ने दोहरी नागरिकता वाले नियमों में कई बदलाव किए। पहले यूथ लेवल पर एक देश के लिए खेलने के बाद टीम नहीं बदल सकते थे, लेकिन 2004 और 2009 में अल्जीरिया की मांग पर नियमों में ढील दी गई। नए नियम के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी ने 21 साल से पहले अधिकतम 3 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं तो आखिरी मैच के 3 साल बाद वह अपनी राष्ट्रीय टीम बदल सकता है। इसके अलावा जन्म, माता पिता या दादा दादी के जन्म स्थान या संबंधित देश में लगातार 5 साल रहने के आधार पर भी टीमों को चुना जा सकता है। जमाल मुसियाला, फोलारेन बालोगन और डेक्लान राइस जैसे खिलाड़ी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। डिएगो कोस्टा ने भी ब्राजील के लिए फ्रेंडली मैच खेलने के बाद स्पेन को चुना था। हालांकि 2004 में ब्राजील के स्ट्राइकर एल्टन को बिना किसी पारिवारिक संबंध के भारी भरकम रकम देकर कतर की नागरिकता देने की बात भी सामने आई थी। इन नियमों के चलते अब फुटबॉल फेडरेशन सही खिलाड़ियों की तलाश के लिए बेहद आधुनिक और अप्रत्याशित तरीके अपना रहा। अल्जीरिया की टीम में 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं। अपनी टीम में सबसे ज्यादा विदेशी मूल के खिलाड़ी शामिल करने में अल्जीरिया शीर्ष पे है, जिसमें 13 खिलाड़ी हैं, जबकि हैती में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं। पहली बार खेल रही कुराकाओ की टीम में 1 को छोड़कर सभी खिलाड़ी डच मूल के हैं। कतर की टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग देशों में जन्मे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं मोरक्को ने ब्राजील के खिलाफ मैच के दूसरे हाफ में ऐसे सभी 11 खिलाड़ी उतारे जिनका जन्म मोरक्को से बाहर हुआ है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का बन गया। इससे पहले 2006 में श्रीलंका के कौशल्य वीरागने ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ
जब वैभव खेल रहे थे तब भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 935 था, हालांकि टीम इंडिया ए 377 रनों तक पहुंच गए। टेस्ट, टी20 और वनडे के फॉर्मेट तो बदले लेकिन वैभव का अंदाज नहीं बदला। वैभव का 2024 में अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है।

किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है। रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम था। 2025 में 35 गेंद में आईपीएल में शतक बनाया। इसमें रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 36 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर वैभव रहे। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। भारत ने ए टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रन बनाए। सीरीज में पहली बार 350 का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 14 जुलाई से 3 मैच की सीरीज होगी। बुमराह 3 साल बाद इस फॉर्मेट में खेलेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है और सबसे चौंकाने वाला फैसला युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना है। उन्होंने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 110 नाबाद रन बनाए थे और यह उनके 6 मैच के वनडे करियर का दूसरा शतक था। दरअसल टीम इंडिया 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे मजबूत टीम उतार रही है। इसी रणनीति के तहत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वनडे स्क्वाड की वापसी हुई है। अंतिम पारियों में शतक जड़ चुके 3 बैटर भी इस टीम में शामिल नहीं है। भारतीय टीम में इस समय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और अपनी अंतिम वनडे पारी में शतक जमा चुके 3 बल्लेबाज टीम का हिस्सा इस बार इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। यशस्वी के अलावा ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन ने भी अपनी पिछली वनडे पारियों में शतक जड़े थे, लेकिन वे टीम में जगह नहीं बना सके। कोहली को मैदान पर उतारने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोहली का फिटनेस असेसमेंट होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे। वहीं पिछली 3 घरेलू सीरीज से बाहर रहे अक्षर की वापसी हुई है। बुमराह ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की जगह ली, जबकि अक्षर ने स्पिनर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया। ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में महज 209 रन पर सिमट गई। पांचवे दिन 182 पे 5 विकेट से आगे खेल रहे इंग्लैंड ने मात्र 1 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए। जीत के हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 11 विकेट चटकाए। कार्यवाहक कप्तान जो रूट का संघर्ष भी नाकाफी रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 362 रन बनाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 291 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की हार इतनी जल्दी हुई कि सरे काउंटी ने दर्शकों को टिकट का 50% रिफंड करने का ऐलान किया। महिला नेशंस का फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत के लिए नवनीत कौर ने 4th और सुनेलिता टोप्पो ने 15वें मिनट में गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने वाली भारतीय टीम का यह दूसरा नेशंस कप खिताब है। दीपिका 6 गोल के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही। इस शानदार सफलता हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की नाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उतरती ही वे 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। महिला क्रिकेट में हरमन के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेले हैं, जबकि पुरुषों में सर्वाधिक T20 आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने खेले हैं 162 मैच। हरमन इस बार अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। साल 2009 में जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई, तब महिला क्रिकेट की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय महिला खिलाड़ियों के पास न तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और न ही उनके सभी मैचों का टीवी पर प्रसारण होता था। सुविधाएं भी न के बराबर थी, लेकिन अपनी जिद और मेहनत के दम पर हरमनप्रीत ने हर चुनौती को पार किया। शुरुआत से ही हरमनप्रीत को गेंद को जोर से हिट करना और बाउंड्री के पार भेजना पसंद था। उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग थे और

0: उनकी आक्रामकता हरमनप्रीत के खेल में साफ नजर आती। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की नाबाद तूफानी पारी ने भारतीय महिला क्रिकेट की दिशा ही बदल दी और इस पारी ने उन्हें रातों रात पूरे देश की रोल मॉडल बना दिया। 37 साल की हरमनप्रीत विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। भारत में वीमेंस प्रीमियर लीग में भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 4 सीजन में 2 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले उनके संन्यास के बारे में पूछा गया था तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 2016 में कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे साहसिक फैसलों में एक लिया गया, मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर करना। बॉलिंग कोच आविष्कार सालवी के मुताबिक युवा खिलाड़ियों को निखारने में हरमन का कोई जवाब नहीं है। हरमन के नेतृत्व में टीम को निडर क्रिकेट खेलना सिखाया गया। कई बार उनका गुस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन हरमन कह चुकी हैं कि आक्रामकता उनके स्वभाव का हिस्सा है। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: साथियों, आप सुन रहे थे क्रीड़ा जगत, संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी और प्रस्तुति संयोजन प्रभु शरण की थी। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

4:35 से आप सुनेंगे सांझ सरगम। साथियों, ये कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित होता है। शाम 5 बजे प्रादेशिक समाचार।

5:02 से आप सुनेंगे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। इसमें आप चर्चा सुनेंगे इतिहास में आज का दिन, अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया, समसामयिक की। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है गौरव कुमार पांडे ने। 5:30 हमारे श्रमिक भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा श्रमिक लोक, चर्चा नशापान से बचें और बचाएं, स्वरोजगार आर्थिक उन्नति का आधार, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। और शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

6:02 किसान वाणी कार्यक्रम चर्चा खेत बचाओ अभियान नई उम्र की नई फसल प्रस्तुति की है संजीव कुमार लाल ने।

और श्रोताओं, 6:32 से हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र, जहां से आप आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में पहले अंतर्राष्ट्रीय सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण सुनेंगे। और साथियों, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:15 से जिले में आजकल, तत्पश्चात आपको हम फिर क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण अपने दिल्ली केंद्र से सुनवाएंगे।

श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम एप के 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम बैंड के 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 4:35 और 15 सेकंड कार्यक्रम सांझ सरगम में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मौसम ने करबट ली और भीनी भीनी फुहार में उम्मीद है हमारे तमाम श्रोता बहुत ही खुशगवार होंगे। रितेश करता है आपको नमस्कार।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होते हैं। जैसे हमारे आपके बीच ये रिश्ता है, हम आपके लिए चले आते हैं और सिर्फ आपको ही ध्यान में रखकर कुछ नगमे बजाते हैं जिसे आप समझ सकें, मैं समझ सकूं। ये हमारे जज्बात हैं।

आपको हमारी जज्बात तो ऐसे लगते होंगे, आपको एहसास तो होता होगा जैसे हमें एहसास होता है आप हमें किस कदर हमें याद करते हैं। ये जो बेकरारी होती है श्रोताओं, आपसे मिलने के लिए हम आ जाते हैं अच्छे अच्छे नगमे लेकर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। रितेश आपको करता है नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 5 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। राज्य में आज से SIR अभियान शुरू हो गया है। गढ़वा में इसके तहत घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्र ने बताया कि इस अभियान में BLO मतदाताओं की मैपिंग साल 2003 की मतदाता सूची से सुनिश्चित करेंगे। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयरहाउस का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और मशीनों के रख रखाव का जायजा लिया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए वेयरहाउस की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र के बालसगरा गांव में भूमि विवाद को लेकर गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल का की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई है। मांडू के विधायक निर्मल महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि शहर में अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन पूरी तरह विफल है। सरायकेला खरसावां में आज हूल दिवस पर ग्रामीण एकता मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। खरकई नदी के माजना घाट से शुरू होकर यह यात्रा पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य अंतरों के साथ सिद्धू कान्हू पार्क पहुंची। यहां ग्रामीणों ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का आंखों देखा हाल रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7 बजे और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर आप पुनः सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आंखों देखा हाल ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट नाइट प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर पुनः आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज का आंखों देखा हाल रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी, क्षमा कीजिएगा, मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म है त्रिदेव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाकार का ये गीत, आवाज़ साधना सरगम की, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इससे पहले आपने सुना फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, बोल इंदिवर के। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं ये संदेश। इन संदेशों के पहले आइए सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म सफर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मणि गोप और
1: सुनीता हांसदा का
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। सुनीता जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद आशा जी।
0: सुनीता जी, प्रतिदिन की तरह आज हम कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियों के साथ हमारे किसान भाई बहनों के बीच उपस्थित हुए हैं। इन दिनों हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हमारे किसान भाई बहन खेती के कार्यों में भी लगे हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम खाद की बात करें तो हमारी जो फसलों में खाद का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद के बिना हम कृषि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राचीन समय से ही हमारे ग्रामीण इलाकों में खाद का निर्माण होता आया है और अभी भी चल ही रहा है।
1: बिल्कुल।

0: सुनीता जी, अगर हम रासायनिक खाद की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे किसान भाई बहन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है। इससे जो फल साग सब्जी जो हमारे किसान भाई बहन लगाते हैं वो जल्दी तैयार तो हो जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है। इसका भंडारण जो है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। और इसके साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग से जो भू जल है वो भी प्रदूषित होता है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसके साथ ही जो मृदा में उपस्थित जीव हैं, केचुए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और आशा जी, अगर हम मृदा की बात करें तो जब हम रासायनिक खाद उसमें डालते हैं तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती है हमें कर लेनी चाहिए, जैसे हमारी मिट्टी की जांच होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम खाद डालते हैं तो उससे पहले हमें हमेशा हमारे मृदा का जो है परीक्षण करवाना चाहिए, ताकि पोषक तत्वों की सही मात्रा का हमें जो है पता चले और उस मात्रा में हम हमारे पोषक तत्व या जो भी रासायनिक खाद होते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही मात्रा सही समय पर और सही विधि से ना डाला जाए तो हमारे मिट्टी में जिस तत्व की कमी नहीं है वो भी भरपूर मात्रा में आ जाती है, और कभी कभी इससे क्या होता है फसल जो है हमारे वो भी सड़ने लगते हैं। और सही गहराई ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाद डाल रहे हैं जैसे DAP डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, उनको हमेशा ज़मीन में 3 से 6 इंच की गहराई पर देना चाहिए, ताकि वे सीधे जड़ों तक पहुंच सके। और इससे क्या होता है तो हमारे जो फसल है उसमें भी सही तरह से हमारा खाद पहुंच जाता है और मिट्टी में भी हमारी पोषक तत्व बनी रहती है। सिंचाई और नमी की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि खाद डालने के बाद खेत में पर्याप्त नमी या सिंचाई होना चाहिए ताकि मिट्टी में वो अच्छी तरह से घुल सके। और बारिश का समय अगर है तो बरसात के मौसम में खाद का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी से खाद बहकर जो है बर्बाद हो जाती है और जल प्रदूषण का भी कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल सुनीता जी, और इसके साथ ही हमारे किसान भाई बहन अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, इससे उन्हें सही जानकारी मिलेगी कि उनके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है।
1: बिल्कुल।
0: और रासायनिक खाद के प्रयोग ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही वो जैविक खाद जिसमें गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद है, हरी खाद, इन खादों का प्रयोग करें तो वो फसलों के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही इससे जो फसलों का उत्पादन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहती है।
1: जी बिल्कुल। और हमारा जो मृदा संरक्षण है वो भी हम कर पाते हैं। अगर हम इसको स्वास्थ्य के तौर पर ले, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के इसके बात अगर हम करें तो सुरक्षा उपकरण जब हम की बात कर सकते हैं कि खाद का पैकेट जब हम खोलते हैं तो खोलते समय और खेत में डालते समय हमेशा दस्ताने का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ताकि पूरे शरीर को जो ढकने वाले कपड़े हैं उस तरह का जो है वस्त्र हमें पहनना चाहिए। और खान पान, खाद के इस्तेमाल के दौरान जो हमारे किसान भाई है बहन हैं उनको कुछ भी खाने पीने से वो बचना चाहिए, क्योंकि तुरंत जब हम खाद डालते हैं तो हमारे हाथों में, हमारी जो त्वचा होती है हाथ के त्वचा में खाद का मात्रा लग जाता है, और इनको अच्छी तरह से साफ किए बगैर हम खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो सीधे तौर पर रासायनिक खाद भी हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और इससे हमारे स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसको बहुत ध्यान से आँखों और त्वचा से जो है बचा के रखना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी शरीर का जो हिस्सा है सीधा अगर खाद के संपर्क में आता है तो उसमें किसी तरह का जो बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर किसी तरह का शरीर पर जो है किसी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
0: सुनीता जी, इस चर्चा के बाद अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।
2: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी

0: जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
2: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
1: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
3: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
1: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
4: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मीलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
1: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
5: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना, ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
1: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
6: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
1: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
7: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
1: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
8: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं हो लोकगीत का बाबूराम सोए व साथियों के स्वर में।

0: किसान भाइयों बहनों, अभी आप आनंद ले रहे थे बाबूराम सोय और साथियों के स्वर में हो लोकगीत।
1: किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं हिमांशु राज।

सकती है उस तालाब का जीर्णोद्धार और गहरीकरण करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान बंधु अपने स्थानीय माननीय विधायक से अनुशंसा प्राप्त कर हमारे कार्यालय में आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसान बंधु को 90% सब्सिडी पे उनका तालाब जीर्णोद्धार हो जाएगा और उन्हें तालाब जीर्णोद्धार होने के बाद पानी की कमी जो खेती के समय या कम वर्षा के समय उठानी पड़ती है वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे वो अच्छे से खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, समय पे मछली पालन कर सकते हैं और बतख पालन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे कार्यालय द्वारा चलाई जा रही और योजनाएं हैं, जैसे जल निधि योजनाओं के तहत परकुलेशन टैंक एवं डीप बोरिंग की योजना। परकुलेशन टैंक का मेन मकसद होता है हम किसान बंधु के खेत में परकुलेशन टैंक कर वहां पे जो जमीनी स्तर में जो पानी है उसको रिचार्ज करते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कहा जाता है। और ये 120 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा होता है, जो किसान अपने निजी जमीन पे बनवा सकते हैं और भी बहुत सारे फायदा इस योजना के तहत वो ले सकते हैं, जैसे बागवानी करना, मत्स्य पालन करना एवं बतख पालन करना। इसके अलावा किसान बंधु अपने जमीन पे डीप बोरिंग भी करवा सकते हैं, जिसने अगर वर्षा कम होती है तो पानी की उपलब्धता उनको मिल जाएगी। तो डीप बोरिंग से वो बहुत तरह का बागवानी कर सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं एवं बहुत तरह का खेती किसानी उससे वो कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि यांत्रिकीकरण के तहत हमारे कार्यालय द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए छोटे उपकरण की योजना है, जिसमें हम लोग किसानों को 90% सब्सिडी में पंप सेट, सोलर पंप सेट, पावर टीलर, पावर वीडर जैसी उपकरण उपलब्ध कराते हैं। पंप सेट की योजना के तहत किसान 1.5 से 5 HP तक का पंप सेट हमारे कार्यालय से 90% अनुदान पर ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कार्यालय में आवेदन समर्पित करना पड़ेगा। इससे उन्हें यह फायदा होगा कि अगर किसान का खेत दूर है, पानी का स्रोत दूर है, तो वो पंप सेट के माध्यम से अपना खेत में पानी इजिली ला सकते हैं। सोलर पंप सेट में 1 HP पंप के साथ उनको सोलर मिलेगा, जो मूवेबल होता है जिसमें चक्के लगे होते हैं। वो किसान इसका लाभ लेके

0: इस योजना के तहत किसान समूह या योजना का लाभ लेके कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो लेबर मिलना बहुत मुश्किल है खेती किसानी के लिए, और अगर कृषि यांत्रिकरण किसान उपयोग करते हैं तो उनको क्या होता है कि लेबर की कमी जो होती है वो पूरी होती है। तो किसान लेबर की कमी को पूरी करने के लिए यह योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना 50% सब्सिडी में, जैसा कि मैंने बताया, और 80% सब्सिडी में इजली वे में मिल सकता है। इस योजना के तहत फायदा ये है कि किसान अपने खेत को जोत कर सकते हैं अकेले, और कम से कम लेबर में, और कम से कम जो उपलब्ध है मैन पावर उनके पास, उससे वो लेबर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इससे अलावा वो खरपतवार को जल्दी से नष्ट कर सकते हैं। मिट्टी में जो नमी है, जो नीचे चली गई है नमी, उसको वो बढ़ा सकते हैं 20-25%। इससे मैकनाइजेशन इस्तेमाल करके, कृषि यांत्रिकरण इस्तेमाल करके 20-25% जो नमी होती है मिट्टी की वो बढ़ जाती है। तो अगर वर्षा नहीं भी होती है तो किसान को पानी की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी, पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होगी, और किसान का लेबर चार्ज भी कम हो जाएगा। तो यही सारी योजना हमारे कार्यालय द्वारा चलाई जा रही है, किसान इसका लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान जॉइंट एग्रीकल्चर बिल्डिंग जेवियर नगर के ग्राउंड फ्लोर पे आके भूमि संरक्षण कार्यालय आके आवेदन प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, अभी हम जानकारी ले रहे थे वार्ता के माध्यम से भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस विषय में जानकारी दे रहे थे हिमांशु राज, संकलनकर्ता सुनीता हांसदा। किसान भाई बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम सुनते हैं ये संदेश।

0: फसल बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक

एसआईआर अभियान शुरू होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे संताल क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। वहीं झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने देना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी आज से एसआईआर के तहत एन्यूमरेशन चरण की शुरुआत हो गई है। पहले दिन उपायुक्त मनीष कुमार ने चाईबासा के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ का सहयोग करें। लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आज भूमि बोध पर एक दिवसीय विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा ने कहा कि समाज में होने वाले 90% विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। गढ़वा जिला पुलिस ने शहर के रंका मोड़ के पास गुप्त सूचना पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,820 रुपए नगद, 5 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर आज चाईबासा में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा में आज हुल क्रांति दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उप विकास आयुक्त श्रीकांत विस्पोते और झामुमो जिला अध्यक्ष प्रेमानंदन मंडल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर गोड्डा कॉलेज के आदिवासी कल्याण छात्रावास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एक विशाल रैली निकाली और शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज का आंखों देखा हाल।
1: We may say, what may we say, should I say? The last 28 days have finally brought us to the first semi-final game that is all set to happen between West Indies and Australia of the ongoing ICC Women's T20 World Cup, all set to be held at the Oval today. In the next 1 minute, we shall be also witnessing the
2: किसान वाणी। हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से, आपको ले चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से आप आईसीसी महिला T20 क्रिकेट
3: इवनिंग और साथ ही BCCI कोच हमारे साथ हैं रविंदर सिंह जी। नमस्ते। आशा टॉस होने वाला है 30 सेकंड में, क्या लगता है हेली मैथ्यूज और सोफी मेलोनियो जब टॉस अगर कोई जीतता है तो क्या चॉइस करेंगी?
4: वो बैटिंग के लिए पहले जाएंगे क्योंकि ये जो पिच है ना, और एक जो प्रेशर होता है वो भी सेमीफाइनल का प्रेशर, तो कोई भी वो प्रेशर को वो नेचुरल होता ही है, सबको आता है, तो जो भी जाएगा पहले बैटिंग के लिए ही जाएगा।
3: राकेश?
5: कंप्लीटली सेम चीज़ है, क्योंकि थोड़ा बहुत हरा जरूर है लेकिन इट्स फुल ऑफ रन्स।
3: रविंदर जी?
6: आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं क्योंकि जो सेकंड बैटिंग में 10 बार जो लिया उन्होंने, मुझे भी लगता है शायद दूसरा चेज करेंगे।
3: चलिए सीधा केनिंगटन ओवल के मैदान पे चलते हैं लंदन, जहां पर टॉस हो रहा है और दोनों कप्तान ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू और वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज बिल्कुल तैयार हैं।
7: Finals here at the Oval, and we have two of the most skillful and entertaining teams in this ICC Women's T20 World Cup. It's the West Indies up against Australia. I've got the captains next to me. GS Lakshmi is match referee, overseeing the coin toss. Sophie Molyneux has the coin. Hayley Matthews will call.
8: Tails.
9: Tails is the call. It's
7: heads. Fall on the way of Australia. So, first of all, congratulations on your 50th T20 International. You've won the coin toss. What are you going to do and why?
8: We're going to have a bowl. Looks like a good pitch to come out here and hopefully put a bit of pressure on early.
7: Did you sort of toss and turn a little bit on the bowling? It's about 7 to 8 mils out there. Is that what sort of attracted you to it?
8: Yeah, I think so. It does look a little bit furrier than yesterday. It's just grown overnight. But I think so. And just be able to get out here and have a run around first.
7: Big win against India. Any changes to the team at all?
8: No, I've got the same team.
7: Same blueprint then? You come into a big game like that, last of the round games, do you sort of go right same approach, or do you say clean sheet up against the West Indies?
8: I feel like West Indies are, you know, an incredible team, and we have to bring our best, and a part of that is being able to play our style of play no matter who we are coming up against.
7: You know this one quite well, captains at and players at the Melbourne Renegades. Does that make it easier?
8: Probably not. We were actually just talking about the Renegades before, but, you know, she's always good to play against.
7: There we go. We'll find out in a second. Here we go. Thank you. All the best today.
8: Thanks, Shanti.
7: Hayley, come on in. Batting first. Happy with it?

0: think it's a pretty good wicket here at the Oval. Not going to change too much. We probably would have had a ball for us, but at the same time, we feel like we certainly got nothing to lose and can go out there and play a really fearless brand of cricket.
1: It's been a roller coaster ride for you guys. You had the first couple of wins and then a little bit shaky at the end. What do you bring to this team to say, OK, these are the things that we really need to, you know, knuckle down to, on, double down on today?
0: Yeah, I think we need to keep believing, one. But at the same time, we just need some of our big players to step up. Myself included, I feel like that's probably what we've missed this tournament, but it still brings out a lot of positives, the fact that we have gotten to this stage without a lot of our big players really making big performances.
1: Looks like a kind of ground, too, that you need a big total on.
0: Yeah, 100%. Definitely a higher par score here, and probably, if not the best, one of the best wickets in England, so we're definitely going to have to get the score up in this first innings.
1: Yeah. Big West Indian support here today as well, so you'll have them on your side. All the best today.
0: Thank you.
1: Australia have won the toss today and they'll be bowling first.
2: So the news from Oval coming right there. Sophie Molyneux, the captain of Australian team, winning the toss and choosing to bowl first, as predicted also by prediction king Ravinder Singh ji. Ravi, aapke paas aati hu. Aankde mein dikha rahe the ki chase friendly wicket hai aur aapko lagta hai high pressure game ke andar Australia ne ye sahi nirnay liya hai aaj bowling karne ke liye.
3: देखिए, मेरे हिसाब से तो फील्डिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिछला मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खेलते हुए, उन्होंने बहुत अच्छे बड़ा चेस किया उन्होंने, और अच्छा बहुत बढ़िया मैच, और वही मुझे लगता है मोमेंटम बना के चलना चाहते हैं. देखिए, ये 20 ओवर्स का जो मैच होता है ना, ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है. अब अगर इसमें वेस्ट इंडीज पर प्रेशर रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कितना टारगेट चाहिए, कितना टारगेट सेट करें, और ऑस्ट्रेलिया, उनको पता है ऑस्ट्रेलिया 6 बार का चैंपियन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको कम से कम 180-190 रन का टारगेट सेट करना पड़ेगा जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है. और यही प्रेशर उनको, यही प्रेशर में होता क्या है कि जब आप ज्यादा प्रेशर टेस्ट खेलने के चक्कर में आप विकेट गंवाते हैं, तो ये मेन गेम यही है. अगर वो वेस्ट इंडीज जीतते, मुझे लगता है शायद वो भी फील्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि पहले कितना टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए. तो यही मुझे लगता है प्रेशर गेम है, तो जो भी होगा पहले चेस करना चाहेगा, देखते हैं कि पहले उसमें वो कितना रन बना सकते हैं.
4: जी, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, और अगर अंतिम 11 की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं है. वही टीम है जो इंडिया के खिलाफ खेली थी. बेथ मूनी विकेटकीपर, जॉर्जिया वॉल, फीबी लिचफील्ड, एलिसी पेरी, जिन्होंने 5 मुकाबले में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक 183 रन बनाए हैं. एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेरहम, अनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यू कप्तान ने 5 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं. किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, आशा कैसे देखती हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को?
5: ऑस्ट्रेलियन साइड अगर हम देखें तो बहुत बैलेंस टीम है, चाहे उसमें बैटिंग की साइड देख लीजिए, चाहे आप बॉलिंग देख लीजिए, चाहे स्पिनर देख लीजिए, चाहे मीडियम पेसर देख लीजिए. पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बात करूं तो उसमें आप केवल एक दो प्लेयरों में ही टीम निर्भर करेगी. अगर जो कैप्टन है हैरी मैथ्यूज़, उसके ऊपर, डी डॉटिन के ऊपर, तो कुछ 2-3 प्लेयर हैं कि उनको आज करना ही पड़ेगा. और जो कैप्टन है उनको तो बहुत, मतलब पूरी आज उनमें ही पूरा दामोदार है. अगर वो कुछ टीम को अगर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचाना चाहती हैं तो.
2: Right, I'll come to you, Rakesh. Since Asha just now mentioned that West Indies is heavily dependent on 3 of their main players, one the captain, Hayley Matthews, second we have Deandra Doughton, and third of course we have Stephanie Taylor. Majority of them have not even been able to perform throughout the season pretty well, but they are still the big names. How much of the load will be resting on their shoulders today to shine and prove nine? Prove something for the team, definitely.
6: It becomes tough when you are out there for a knockout game and you don't have runs behind you, number one. So, and they have only 2 individuals who have crossed 100. So, they have only 2 guys who have scored over you know, like 100 runs. One of them happens to cross 150 as well. Now, when you go in for a knockout game and out there you have to go and put the runs on the board, and form is not in your favor. So, this is a worrying factor for the West Indians. They have a reasonably good attack, but that doesn't mean that they can take the Australians lightly, because Australians in an ICC event, they are ruthless. They come very hard at you. Very difficult to beat them here. The only time you can beat them is probably in a league game when they have an off day. And history has shown that Australians don't take an off day when it comes to knockout games. And that's why they have such a fantastic record. 6 times they have already had 2 hat-tricks of wins in the same tournament, I mean in the same event. So I still see that this is Australia's game all the way. And as it has already been said here, that one of the factors that probably influenced the Aussie skipper was the fact that the way they beat India, they chased down a pretty challenging score, and they did that. So it seems to be quite
7: they've been influenced by that decision.
4: जी बिल्कुल. और यदि आप ही फर्स्ट बॉल 20 इस कार्यक्रम में सवाल करना चाहते हैं विशेषज्ञों से तो आप हमें फोन कीजिए. 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है, नंबर है 2342-1085. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने पांचों मुकाबले जीते हैं, बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस. वहीं वेस्ट इंडीज ने आशा पहले तीन मुकाबले तो जीते थे न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन अंतिम दो मुकाबले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वो हारे हैं. तो दो लॉसेस के बाद यहाँ आ रहे हैं, कैसे हेली मैथ्यूज अपनी टीम को मोटिवेट करेंगी?
5: मुझे जहाँ तक लगता है उनको, अगर मैं वैसे बोलूँ तो अपनी, उनको खोने के लिए उनको कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो साइड जो ऑस्ट्रेलिया टीम है 6 बार की चैंपियन टीम है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने एक बार इसको ले रखा है चैंपियनशिप को. तो उनके लिए बस ये है कि ये अगर मैं वही मैंने जो पहले बोला है कि मैथ्यूज जो कैप्टन है उसके हाथ में बहुत कुछ है. अगर वो आज टीम को लेके चली गए, मतलब उन्होंने अच्छा खेला बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो थ्रू आउट वो आगे फाइनल में पहुंच जाएंगे.
2: ओके. Yes, Amit, I think we have a caller with us on the line. Namaskar, good evening. क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं.
3: नमस्कार.
7: नमस्कार जी.
2: हमारे सारे पैनलिस्ट आपको नमस्कार कर रहे हैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आज आप कॉल करने के लिए.
4: जी शुक्रिया. कितना स्कोर बन सकता है रविंदर जी यहाँ पर?
3: देखिए स्कोर की आजकल कोई लिमिट नहीं है, जिस हिसाब से क्रिकेट का जिस हिसाब से उसका नया फॉर्मेट बना है, 20 ओवर में आपको पता कुछ भी. लेकिन ये जो अब वेस्टइंडीज के लिए टारगेट है, वेस्टइंडीज को कम से कम नहीं तो 180 रन तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनको कुछ प्रेशर में डालना है. तो 150-170 रन पे आपने देख अभी इंडिया के अगेंस्ट देखा उन्होंने कैसे खेला, तो 180 रन का टारगेट होगा. लेकिन देखिए सेमीफाइनल ही होते हैं, आप पहले सारे मैच जीतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेशर गेम है. आपको पता एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर.
4: राकेश जी दोनों ही सेमीफाइनल केनिंगटन ओवल में होने हैं और फिर फाइनल जो है 5 तारीख को लॉर्ड्स लंदन में.
3: एक सेकंड में आप एक ऐड कर रहा था कि ये दो लास्ट के जो दोनों वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हैं वो दोनों ऑस्ट्रेलिया हारी है
4: जी,
3: और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक सिर्फ वेस्ट इंडीज ही है जिन्होंने फाइनल में हराया था, तो ये बात भी उनका कहीं ना कहीं माइंड में होगी दोनों सेमीफाइनल्स में हारे.
4: लेकिन आज जो आपको पिच दिख रही है यहाँ पर कितना एक स्कोर बन सकता है वेस्ट इंडीज का?
7: देखिए मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलियन अटैक है, मैं इसको वेस्ट इंडीज की जो क्षमता है वो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अटैक के अगेंस्ट क्या क्षमता है. ऑन पेपर आप देखेंगे तो वो टीम रन बना सकती है, लेकिन आज का दिन ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस का अटैक कितना, अगर वो लोग निशाने पर हैं तो मैं ये 150-160 के ऊपर नहीं देखता हूँ. स्कोर होना चाहिए 180, अगर आप एक वेस्ट इंडियन फैन हैं तो आप 180 मिनिमम चाहेंगे. लेकिन विमेंस क्रिकेट इज़ अनप्रडिक्टेबल, इसलिए मैं IPL के यार्ड स्टिक से या मेंस क्रिकेट के यार्ड स्टिक से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ. विमेंस क्रिकेट आई हैव सीन लॉन्ग इनफ, इसमें कुछ भी हो सकता है, 100 के अंदर टीम ऑल आउट हो जाती है.
4: okay.
7: तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं प्रिडिक्शन नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ लेट्स बी फेयर प्रैग्मैटिक होके अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 150-160.
2: राइट. और एक श्रोता हमारे साथ अमित थे.
4: हेलो नमस्कार जी, अपना नाम बताइए जी, क्या पूछना चाहेंगे आज ऑस्ट्रेलिया कप्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही हैं? फिर जीतेगा कौन? आपको वेस्ट इंडीज टीम अच्छी नहीं लगती? जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए.
2: जी काफी अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई, और देखने में ये भी सुनने में अच्छा लगा कि हमारे श्रोता को भी इतनी जानकारी थी आज की मैच और टूर्नामेंट के बारे में.
4: तो आशा आपको लगता है वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है अब?
5: हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम खेलते थे तो कुछ किसी को पता भी नहीं था कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है या एशिया कप हो रहा है, कुछ भी वर्ल्ड कप हो रहा है. बट अब जो भी कोई भी सीरीज हो रही है वो भी सब देख रहे हैं, इवन सबको नाम सबका पता है, वो बहुत अच्छा लगता है.
4: मैं बता दूं 2008 में एशिया कप भारत जीते थे और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच 97 रन.
5: हाँ जी,
4: आशा रावत.
5: थैंक यू.
2: वाओ नॉट बैड. आपके पास आती हूँ रवि क्विकली. हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग साइड है, लेकिन वेस्ट इंडीज की अगर बात करें और सीजन बैडमिंटन में देखें टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स को काफी मदद मिली है इन सारे विकेट्स के ऊपर। और खासतौर से अगर आज बात करें तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की बोलिंग की स्ट्रेंथ रही वो उनकी स्पिन है। 71.4 ओवर्स उन्होंने सिर्फ स्पिन के पड़वाए हैं, इकलौती ऐसी टीम, और सबसे ज्यादा विकेट्स भी

0: जो वेस्ट इंडीज ने ली है सीजन के अंदर, वो स्पिनर्स की उन्होंने लिए 22 विकेट्स. क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ कमाल कर पाएंगे?
1: देखिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और खासकर 20 ओवर्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है. आपने अभी देखा आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा रहा है. 20 ओवर्स में दो प्लेयर सही होते हैं, दो प्लेयर अगर 50-60 रन बना देते हैं तो मैच वो 150 रन तक टारगेट अपने आप पहुंच जाता है. तो यहाँ पे एक डे की बात होती है. देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, फौची फॉर्म में चल रही है, नो डाउट फेवरेट्स हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मिराकल्स होते भी आए.
2: जी, थोड़ा बॉलिंग बताइए ऑस्ट्रेलिया की. हमें सोफी मोलिनी तो पता है, उन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं, पर जैसे किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, किस तरह की वैरायटी है इनके पास?
3: बहुत वैरायटी है. देखिए, अगर आपको पेस चाहिए, स्विंग बॉलिंग है आपके पास, स्पिन ऑप्शन है आपके पास. देखिए, विमेंस क्रिकेट में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए. अगर जिस दिन एक बॉलर चल गया, बैटिंग में हम कहते हैं दो बॉलर, आपको एक एक बहुत है.
2: पर अलाना किंग को अंतिम 11 में ना रखना, टाइलर मैग्रा,
3: दैट इज बिकॉज आपके पास एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आप उसको छेड़ेंगे नहीं. जिस टीम ने इंडिया को हराया और आप सडनली आप किसी को विदाउट रीजन अगर आप किसी को ड्रॉप करते तो सोचिए, मैं यहीं पे हम दोनों अभी कुछ और बात कर रहे होते कि क्या जरूरत थी. देखिए, आप रिपेयर तब करते हैं जब डैमेज हुआ हो. जब डैमेज नहीं हुआ हो तो आप अपने घर को रिपेयर करने नहीं जाते. तो ये उनका घर अच्छा है, सेट है सब कुछ, तो आप उसमें क्यों चेंजेस लाएंगे? पॉपुलर डिमांड पे तो आप यू नो चेंजेस नहीं करते.
0: पॉइंट वेल मेड. आशा, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया आज ऑलरेडी हैवी फेवरेट्स के तौर पर उतर रही है फर्स्ट सेमीफाइनल के अंदर. अगर वेस्ट इंडीज उनको हराना चाहता है आज, तो किस तरह की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी आज वेस्ट इंडीज को अपनानी चाहिए, ना सिर्फ अपनी बैटिंग में बल्कि बाद में जब वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे भी?
4: सबसे पहले तो उनको मतलब ऑब्वियसली उनको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए. मतलब अगर सेमीफाइनल का प्रेशर लेंगे तो मे बी नहीं होगा, बट वो जैसे मैच खेलते आ रहे हैं. और मैं एक बात बता दूं, वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है जो जादू कर सकती है. वो जैसे अगर सब कह रहे हैं कि स्टैट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जा रहा है पल्ला, उनकी तरफ भारी है, बट अगर उन्होंने कुछ वो कर भी सकती है. वो अभी सब ऑस्ट्रेलिया कर रही है, मैच ऐसे पड़ाव में आ जाएगा कि लगेगा ये वेस्ट इंडीज की तरफ
0: हैवी हिटिंग की ओर हिंट कर रही है.
4: वही कहना चाह रही हूँ कि वो मैं वही कह रही हूँ, मेन जो दो तीन प्लेयर हैं उनकी टीम में जो शेमन कैपेबल हैं, डी डॉटिन हैं और मेन जो कैप्टन हैं, तो इनमें बहुत दामोदार आज मतलब इनको करना पड़ेगा. अगर ये करेंगी तो आप देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है.
2: तो अगर राकेश हम इस वेन्यू की बात करें, थोड़ा आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए कैनिंगटन ओवल के बारे में, और यहाँ जो दर्शक आ जाएंगे वहां पर मैच देखने, वो इंग्लैंड तो सेकंड सेमीफाइनल में है, आज किसको सपोर्ट कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं करेंगे?
5: ऑस्ट्रेलिया सीधी सी बात है. देखिए, आप अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी होम टीम खेल रही है, होम टीम का फाइनल मुकाबला स्ट्रॉन्गर टीम से क्यों? Weaker of the two teams,
2: so they would support West Indies. So advantage है फिर ये West Indies के पास.
5: West Indies के पास crowd support चाहे जो भी हो, उनको एक चीज करनी है. अगर आज वो really जीतना है तो मेरे ख्याल से उनका जो mindset होगा, उनका mindset ये हो सकता है कि आपको Australia के against बहुत attackingly खेलना पड़ेगा. आप defensive mode पे नहीं जा सकते हैं. उन्होंने इंडिया का मैच देखा है.
2: ओके,
5: इंडिया का डिफेंसिव माइंड सेट ने उस दिन इंडिया को मैच हरवा दिया.
2: आपको लगता है ऋचा घोष को पहले खेलने के लिए चाहिए था इंडिया मैच?
5: अब वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है. ऋचा घोष ने जब वो ऊपर आके खेली है पहले दूसरे मैच में, अगर आपको याद है, शी चेंज द थिंग, आई मीन पाकिस्तान के
0: पाकिस्तान
5: जो वो खेली है, कमाल खेली है, लेकिन उसके बाद हमने वो रूप उनका देखा नहीं. तो वो तो एक दिन की बात है कि वो होता है कि नहीं. लेकिन यहाँ अगर हम वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, उनको पहली बॉल से एक तो अटैक करना है, कैचेस पकड़ने. विमेंस क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो जो प्रैक्टिस में जितना पकड़ते हैं उतना वो फील्ड में नहीं पकड़ता.
2: ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया में खिलाफ कैचेस बहुत छोड़े हैं.
5: वही मैं कह रहा हूँ, मैं विमेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम की बात नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जो पकड़ लिया, जैसे उस दिन पाकिस्तान की अगर आप फील्डिंग देखते हैं, कैचिंग सुपर्ब थी उनकी, कुछ नहीं छोड़ा उस दिन उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया. सो विमेंस क्रिकेट इज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट. तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया करेगी, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी हिस्ट्री से हम अभी भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो प्रेजेंट 11 लोग जो खेल रहे हैं वो एक उस मेंटल स्पेस में हैं कि वो तैयार हैं, इंडिया को हरा के आ रहे हैं और एक उस टीम से खेल रहे हैं जो अपने पिछले दो मैच हारी हुई है।
0: राइट, एंड उस इंडिया को जहां पर हम बता दें अपने श्रोताओं को भी कि उस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन बोलर्स आउट देयर वर एबल टू एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट द ऑस्ट्रेलियंस टू नॉट वेरी फेमिलियर स्पेस ऑफ गोइंग ऑल आउट इन द पावर प्ले। इस हेड स्पेस की जब हम बात करते हैं, हमें बताया जाना, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं, मैं सवाल को भी आगे ले जाऊंगी, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते। नमस्कार, गुड इवनिंग। हरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हमारी पूरी आकाशवाणी की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हमारे इतने लॉयल श्रोता हैं और आप हमारी उस बात के लिए सराहना कर रहे हैं, शुक्रिया। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। Well, the West Indian team needs to be mindful and careful of the Australian team. Ravi, आपके पास आती हूँ। राकेश उस समय एक पॉइंट रख रहे थे, which was a good point, कि West Indies को अगर आज जीतना है तो अटैक मोड पे खेलना पड़ेगा। जब हम अटैक मोड की यहाँ पर बात करते हैं, well, 20 ओवर गेम है, मैं आपका नजरिया या पर्सपेक्टिव चाहूंगी, क्योंकि अटैक मोड पे खेलने में कई बार होता है कि विकेट्स गिरते जा रहे हैं लेकिन फिर भी आप पार्टनरशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो ऑल आउट, मारते रहना है, मारते मारते भलाई आपके विकेट गिर जाए। कौन सी रणनीति को आप सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं अटैकिंग क्रिकेट के एंगल से?
1: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते जाए, 20 ओवर तक मारते चले जाएं, ये क्रिकेट कभी नहीं होती। बट पावर प्ले इंडिया का अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए, जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे आपको, लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए हम दोनों, जो ऑस्ट्रेलियंस ने जो मैच जितवाया है, 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते। 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग, 10 रन की एवरेज तो कहीं भी चेस करना मुश्किल होता है, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में। डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग कैसी है, आप में उस जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपके बॉलर सेट नहीं थे। अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे तो 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए। पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इस वजह से मैच जीत गए। बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट्स लूज नहीं करिए, उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60-70 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप पहली बॉल 2-3 विकेट निकल गई तो आपको जो 180 रन का टारगेट वो 100-150 रन का टारगेट।
2: राकेश, जैसे हमने देखा इंडिया मैच में जिमीमा खेल रही थी लेकिन वो रिटायर्ड आउट हुई ताकि रिचा आए, क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज, जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
5: देखिए, वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है। ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूँ अटैकिंग दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बल्ला घुमाना है।
2: ओके,
5: मेरा मतलब ये है कि आपको डॉट बॉल्स नहीं छोड़नी है। डॉट बॉल तो क्राइम है। आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को अटैक करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप चेंज करते रहिए। वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे। ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से, यू हैव टू कीप देम यू नो इन अ सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है।
2: आशा, कैसे क्रिकेट बदला है? अब राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं।
5: एक नहीं, मैंने कहा डॉट बॉल्स कम से कम।
4: ये T20 आ गया ना, तब से तो डॉट बॉल मतलब जिसने डॉट बॉल खेली क्राइम है।
2: नहीं, पर कसम पेड़ तो
0: डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी खासतौर से। ट्रू, इट कम्स इनटू प्ले,
2: बट सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे पेड़ लगता है।
0: गुड पॉइंट, अमित, वेल मेड। वेल, ओके, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है। डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल से हिट करते हैं। वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट बॉल से हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं। मैं मेल क्रिकेट की बात कर रही हूं, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें?
4: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो सिचुएशन में करता है सबसे पहले। फिर ऑब्वियसली T20 खेल रहे हैं तो आपको लॉफ्ट ये सब कुछ चीज़ करनी ही पड़ती है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है आपका गेम। कब आपको, अगर आपको लग रहा है कि सिंगल से बन रहे हैं रन तो आप सिंगल करेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं है
2: जी। और आशा, आज ऐसा नहीं है कि इंडियन एंगल नहीं है, अभी जब दोनों टीमें बाहर आ रही हैं, एम्पायर्स आ रहे हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी है वहां पर, हमारे जो अंपायर हैं मैच रेफरी
4: अच्छा वो
0: इंडियन रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं
4: राइट राइट राइट और ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही हैं रेलवे से खेली जब मैं तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर हैं
2: थोड़ा उनके बारे में बताइए
4: ये लक्ष्मी ये बहुत अच्छी स्विंगर बॉल थी बहुत अच्छा बॉल करते थे मतलब इनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने नॉर्दर्न से और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से
2: और राकेश पूरा एक इकोसिस्टम

0: पहचान रहे हैं, यू नो। और ये जो चेंजेस मैंने देखे हैं, मैंने एक जमाने से मैंने देखा है, यू नो, शांतरंग स्वामी के टाइम।
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। उससे पहले सुनते हैं कुछ विज्ञापन संदेश।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: श्रोता मित्रों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
1: आकाशवाणी रांची से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान, 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अद्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक हुल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल, झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पिंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का आज से आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी खुद मैदान में उतरकर इसकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: झारखंड निर्वाचन आयोग इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड में है। राज्य भर में SIR अभियान का शंखनाद हो चुका है। पहले ही दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने खूंटी के तोरपा का दौरा कर BLO के साथ समीक्षा बैठक की। प्रशासनिक मुस्तैदी का ये दौर कई जिलों में दिखा। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमिरेशन फॉर्म वितरण की शुरुआत की। सरायकेला खरसावा में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार और SP सादिक अनवर ने बूथों का औचक निरीक्षण किया। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अभियान को गति देने के लिए रामगढ़ जिले में #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बार BLO ऐप के माध्यम से डिजिटल एंट्री पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में प्रेस वार्ता में बताया कि वर्तमान में राज्य में 2,64,63,236 पंजीकृत मतदाता हैं। इस अभियान के लिए कुल 31,892 BLO को लगाया गया है, जो घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया में एक भी पात्र वोटर नहीं छूटेगा।
2: 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ जहाँ पर मैं भी फील्ड में जाके देखा था, उसमें कुछ जहाँ पर बाकी है, कुछ जहाँ पर गलत, इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा। वो प्रक्रिया शुरू हो गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुल दिवस के अवसर पर विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष करने वाले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू सहित सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि हुल दिवस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी समुदायों के असाधारण साहस और अटूट भावना का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आदिवासी गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा देशवासियों को नई ऊर्जा प्रदान करती रहेगी और प्रेरित करती रहेगी। झारखंड में आज ऐतिहासिक हुल दिवस के मौके पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू को पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष हमेशा समाज को प्रेरणा देता रहेगा।
3: जब देश में आदिवासी समुदाय के लोग शोषण का शिकार हो रहे थे, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले इसकी रणनीति बना रहे थे। अंतोगत्वा उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूका। और आज हमें गर्व है कि आज इन वीर सपूतों के बदौलत झारखंड को एक वीर भूमि भी हम कहते हैं और उनके सम्मान में उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं।
0: इधर हुल की ऐतिहासिक धरती भोगनाडीह को लेकर सियासत भी गरमाई रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भोगनाडीह में सुरक्षा प्रतिबंधों और ग्रामीणों से बॉन्ड भरवाए जाने को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।
4: ये सरकार इस लड़ाई का इतिहास को मिटाना चाहती है। ये गठबंधन सरकार आए जेएमएम कांग्रेस आदि की, अरे जिस मट्टी से जिस गांव से स्वतंत्र का बिगुल बजा, क्रांति का बिगुल बजा, आज उस गांव को स्वतंत्र नहीं है।
0: इधर भारतीय जनता पार्टी ने आज हुल दिवस के मौके पर रांची सहित राज्य के सभी मंडलों में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रांची के सिद्धू कानू पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने वीरों को नमन किया। हजारीबाग में आज हुल दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा और राज्यसभा सांसद पी संतोष ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए रणनीति साझा करते हुए राज्य की 7 लोकसभा और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमशेदपुर में विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ हैं और शासन पूरी तरह विफल है।
5: मानसु का हत्या जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। झारखंड के पुलिस के वैन से निकाल करके अपराधियों के द्वारा बीच सड़क पर चाकू से गोद गोद करके मार, आप समझ सकते हैं जमशेदपुर जो शांति प्रिय जिला के रूप में जाना जाता था, आज जमशेदपुर का ये हालत है, तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या हाल है।
0: इधर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए झामुमो नेत्री और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि विपक्ष आगामी चुनावों को देखते हुए बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है।
6: भाजपा के यहाँ ये स्वभाव है आरोप लगाना। अभी हाल के दिनों की बात करती हूँ, रांची में जब आरएसएस कार्यालय में हमला हुआ तो कितनी जल्दी पुलिस ने हमलावर को पकड़ा, जो कि शायद भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कभी इतनी जल्दी इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उसी तरह से हर मामले में यहाँ की पुलिस लगातार सक्रिय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि ऐसे मामलों में बिल्कुल कोताही न बरती जाए।
0: राज्य को कल 4 नए सूचना आयुक्त मिलने जा रहे हैं। लोक भवन के दरबार हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सभी नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाएंगे। कार्मिक विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 16 नेक नागरिकों को सम्मानित किया गया। चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इन गुड समैरिटन्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन नागरिकों ने सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को गोल्डन आवर के दौरान अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। समिति ने अब हर महीने ऐसे 5 नेक नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, लातेहार, लोहरदगा और खूंटी सहित कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 1 और 2 जुलाई को राज्य भर में भारी बारिश का दायरा और बढ़ेगा। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया। स्वर्ण पदक विजेताओं में इटाशा कपूर, अनाया खलखो, विशाखा थापा और पलक साहू शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में शुरू हुआ SIR अभियान, 2,64,00,000 से अधिक वोटरों को अध्यतन करने के लिए घर घर जाएंगे 31,000 से ज्यादा BLO। ऐतिहासिक होल दिवस पर पूरे राज्य में अमर शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीरों के त्याग को किया नमन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा ने सरकार को बताया विफल, झामुमो ने भाजपा के आरोपों पर किया पलटवार। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। और नासिक राष्ट्रीय पिंचक सिलाट प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 4 स्वर्ण समेत जीते कुल 9 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों को भी अब रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इस क्रम में मरकच्चो प्रखंड के नावाडी स्टेशन पर गोड्डा से नई दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। 17 जून को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नावाडी स्टेशन पर रुकने के बाद गोड्डा एक्सप्रेस को नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नावाडी स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित होने से डोमचांच और मरकच्चो प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के लोगों का अब सीधे दिल्ली से संपर्क हो गया है। यहाँ से दिल्ली आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि
2: कोडरमा लोकसभा की बात करें तो चारों ओर से रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत है। यह वाराणसी से लेके सीधा रामपुर हाट तक, यानी कि एक बहुत एक ये धार्मिक एक ये सर्किट के रूप में कि बाबा धाम को भी जोड़ते हुए इसी रूट से और उसमें बासुकीनाथ तारापीठ होते हुए रामपुर हाट तक ये ट्रेन जाए, एक नई ट्रेन, तो उसको लेकर भी माननीय रेल मंत्री जी को हम लिखे हैं।
1: रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर को केसरिया कलाकंद के जरिए एक नई पहचान मिली है। राज्य के 11 विशिष्ट उत्पादों में एक कोडरमा के केसरिया कलाकंद को भी GI टैग मिला है, जिससे कोडरमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कोडरमा का केसरिया कलाकंद राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ है जिसे GI टैग मिला है। केसरिया कलाकंद को GI टैग मिलने से न सिर्फ कलाकंद से जुड़े व्यवसायी उत्साहित हैं, बल्कि आम लोगों में भी इस बात की खुशी देखी जा रही है।
3: बहुत ही खुशी की बात है कि कोडरमा जिला का कलाकंद, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, उसे एक GI टैग मिल गया है। और मैं बता दूं कि झुमरी तिलैया कोडरमा को इस मिठाई के वजह से जाना जाता, काफी अच्छा टेस्ट है। मेरे भाई जो अमेरिका में रहते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार जो दुबई में रहते हैं, वो भी जब फोन पे चर्चा करते हैं तो कलाकंद की चर्चा करते हैं, कोडरमा आते हैं तो कलाकंद खाते हैं, तो इसका जो टेस्ट है मैं बता दूं कि और कहीं नहीं मिलता है।
1: महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए कोडरमा पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एक ही दिन में दो महिलाओं के साथ चैन छिनतई की घटना को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए कोडरमा पुलिस ने दो आरोपियों को धर दबोचा है। SP कुमार शिवाशीष ने मंचलों और महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए CC एक्ट भी लगाया जा सकता है।
4: आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार महिला सुरक्षा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि किसी भी मंचले को ऐसा लगता है कि चेन स्नैचिंग, छेड़खानी या महिला के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार वो करेगा और जब बच जाएगा तो इसमें कोई स्कोप नहीं रहने वाला है। हम लोग इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो भी लीगल मीन्स होंगे सारे परस्यू किए जाएंगे, जितना दिन होगा जेल में रखेंगे, जरूरत पड़ेगा CCA करेंगे, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जेल से निकलने के बाद भी पुलिस रेगुलर सत्यापन करेगी, ऐसा कर देंगे कोडरमा में रहना उनका दूभर हो जाएगा। तो हमारा आपके थ्रू यही मैसेज रहेगा कि यदि कोई मंचला ऐसा सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, और जिस हद तक रह सके महिलाओं के हम लोग को सम्मान करना है, और महिला के विरुद्ध अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्राइम किया जाएगा तो उसको बिल्कुल बताएं।
1: पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने छीनी गई सोने की चैन और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।
5: विकेट गवाया नहीं, एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसके पास बल्लेबाजों की एक सॉलिड फहरिस्त है, इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन, 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने। अब वेस्ट इंडीज का वही मिला जुला प्रदर्शन, 2 मैचेस हार गए, इंग्लैंड से हारे चलिए अलग बात थी, यहां अच्छी शुरुआत की कोशिश, गार्थ का दूसरा ओवर और ये एकदम सेट पैटर्न है ऑस्ट्रेलिया का। शुरुआत में वो अपने दोनों ओवर से, दोनों गेंदबाजों से दो दो ओवर्स करवाते हैं, फिर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, हल्का सा केवल गेंद को प्लेस किया था, कोई रन नहीं। चौथा ओवर शुरू, मैथ्यूज आपको याद होगा 2023 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन किया था, एनेबल सदरलैंड को दो विकेट चाहिए 50 विकेट्स पूरे करने में टी20 इंटरनेशनल में, और इसी तरह से कैंबल को 13 रन चाहिए 500 रन बनाने में टी20 वर्ल्ड कप के बीच। सॉलिड शुरुआत वेस्ट इंडीज की, पहला सेमीफाइनल विश्व कप का गार्थ, और इस बार अपने स्ट्रोक को चेक किया, काफी धीमी गेम अपेक्षाकृत, और पहले ऐसा लगा कि जैसे वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया। डॉटिन को किसी तरह की चोट दिखाई दे रही है प्रेम, ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं पैर मांसपेशियों में खिंचाव है।
6: But doesn't look to be very serious because we probably haven't got any update on has that been any serious, because had it been serious I think there should have been a clear update, Sanjay.
5: बिल्कुल इंतजार है उसका, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाज है टीम की, और इस बार शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ा सा लेट आई स्ट्रोक के ऊपर, और इसीलिए कनेक्शन सही मिला नहीं, गेम को बल्ले के बीचों बीच मेडल किया नहीं, सिर्फ एक लौता रन। मैथ्यूज अब स्ट्राइक लेंगी 20 की व्यक्तिगत रन संख्या के साथ 12 गेंदों के बाद। गार्थ की गेंद सीम के सहारे आमतौर पर टप्पा डालती है, और लगातार एक हल्का सा मूवमेंट, पिछला ओवर भी हमने देखा था उनकी गेंदों पर हरकत है, और उसका वो पूरा फायदा लेना चाहती हैं। रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी 7.5 के आसपास का औसत है, एक बेहतर स्थिति कही जा सकती है बशर्ते कि आपने कोई विकेट ना गवाया हो। ये गेम मिडिल स्टंप पर, एकदम स्टंप टू स्टंप अटैक, बिल्कुल आजादी नहीं दे रही है दोनों बैटर्स को, और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज का स्कोर थोड़ा सा रुक रुक कर बढ़ रहा है। जिस तेजी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेजी फिलहाल नदारद है, हालांकि पावर प्ले चल रहा है, पहले 6 ओवर्स में आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, उठा करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार स्टंप्स पे अटैक करेंगे तो फिर मुश्किल होता है। और वैसे भी हेली मैथ्यूज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, खासतौर पर गेंदों को उठा करके खेलने के लिए जानी जाती हैं, आज थोड़ा संभल कर खेलती हुई। कप्तानी की पारी 2023 का मैं जिक्र कर रहा था, 64 गेंदों में 132 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे, सिर्फ 2 मैचेस वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, एक तो विश्व कप का फाइनल। ओहो, इस बार फिर गेंद को थोड़ा सा उन्होंने रोक करके डिलीवर किया गार्थ ने, काफी इंटेलिजेंट बोलिंग आप कह सकते हैं, और तमाम खिलाड़ियों ने उसकी ताद दी। बढ़िया गेंदबाजी, अब तक सिर्फ 1 रन इस ओवर में, और जब आपके रन नहीं बनते हैं तो बैटर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, समझ नहीं सकी थी गेम को क्या करना चाहती हैं। एन वक्त पर किसी तरह से रोकने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी, हवा में थी, लेकिन किस्मत साथ थी कि कोई भी नजदीकी खिलाड़ी वहां पर नहीं था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, मैथ्यूज 20 पर और जोसेफ खेल रही है 5 पर, वेस्ट इंडीज ने अपना कोई विकेट अब तक गवाया नहीं, 6ठी बार सेमीफाइनल खेल रही है वेस्ट इंडीज की टीम। गार्थ इस ओवर में आखिरी बार, उनकी ये गेंद और इस बार थोड़ी सी शॉट, और गेंद को हल्के से केवल खेला स्क्वायर लेग की दिशा में एक लौते रन के लिए, 4 ओवर के बाद 27 बिना नुकसान।
6: So well, we've seen 4 overs, 27 without loss, and I've seen that last over from Garth, she was able to at least take the pace of the ball and confuse their batter, and the captain of the West Indies side, she was a bit surprised in their very fifth delivery where there was a bit of a variable bounce. Lucky she is still on the

0: crease. Just to tell you something interesting, as far as West Indies and Australia are concerned, they have clashed against each other 19 occasions in T20s, whereas 17 occasions Australia has won, and just two occasions where West Indies have won against them, including the famous 2016 World Cup, where West Indies were the champions. So they will have to recreate the scenario. I mean, there is no good or a bad team on a day. It's how you take the opportunity. Here's the first delivery from Hamilton from over the wicket. Bowls in to Matthews. Matthews a little surprised at the way the ball just rushed into her. It was a low bounce, and she just plays it down into the bowler, who collects it from slightly wide off the pitch there, and no runs taken. Wild, fine, wonderful weather at the Oval. England experiencing almost 23, 24 degrees with a good amount of breeze, cross breeze, which the bowlers are likely to take advantage of, because as I said, good breeze can really accentuate swing bowling. Here's Hamilton over the wicket, left arm, from close to the umpire, bowls, and this time a very high looking shot there, a rash stroke, but lucky the ball fell between three fielders almost converging onto the ball. She probably never knew where the ball went. She was trying to play the ball in front of the square on the offside, where the ball gets the toe into the bat and goes up in the air. Very lucky to survive. There were three fielders. If that had come in the palms of any one of them, it would have been curtains for Matthews. She had a rush of blood, adrenaline rise there, and that made her play. So we had Ash Gardner, who picked up the ball at the fence area, but then that just fell about a couple of feet ahead of her. Here is Hamilton bowling over the wicket, and this time again a shot which was uncontrolled, trying to play slightly more straightish, but gets the inner edge of the bat and goes down into the square leg region, back of the square to be perfect, and no runs taken. Well, Hamilton may not look to be that threatening a bowler, but the left arm Hamilton really has the tricks up her sleeves, and I'm sure that they can trouble the batters. But what you've seen so far in the fifth over, which is ongoing, that West Indies batters have at times been bothered. But here's the next one to the left-handed Joseph. The ball goes very close to the bat, almost over her right shoulder after pitching on the short of a length spot, and no runs taken. There was a mild appeal, a faint appeal by the keeper, but the captain has decided now there's probably no edge from the bat there. And just to be very careful, because they got two reviews each in this match here, both the sides, and they have to very cautiously use that. Hamilton, who's a left-armer, did pitch that ball, the last one on the seam, and that went over the shoulder of Taylor, and rather Joseph, and it wasn't far away from the edge of the bat, and that really had called for a good appeal, but no, that hadn't contacted the bat. It just went slightly over. Here's Hamilton for the fifth time in this over into Joseph, and Joseph plays that one almost dragging the ball from outside the off stump to a short pitch delivery, but just couldn't put sufficient energy behind that, and the ball goes into the mid-on region, and no runs taken. So, well, West Indies, who had lost two matches earlier in the league stage, who would have really known that they would reach the semi-finals? It was a clash between India and South Africa on that final match, but then Australia won comfortably against India. Here's the next delivery, which is again going across, but then misses, and the fifth over completes, and Joseph on 5, Matthews on 22, West Indies 28 for the loss of no wicket.
1: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: चलिए ओवर की शुरुआत हो रही, जहां तक स्ट्रगल कर रही हैं रनों के मामले में, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। 13 गेंदों में सिर्फ 5 रन बना सकी हैं जोसेफ, 28 है वेस्ट इंडीज का स्कोर। ऐसा लगता है कि पिछले दो ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 रन बने हैं। हमारी स्कोरर शमा सानी की यह जानकारी, और जाहिर है कि प्रेशर बिल्कुल साफ दिख रहा है जोसेफ के ऊपर, खुल करके खेलना होगा। ये पावर प्ले है, अगर आपने इसका एडवांटेज नहीं लिया तो फिर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, इस बात का ख्याल रखना होगा। रनों की जो रफ्तार एक समय 7.5 के ऊपर थी, अभी 5.6। चलिए बढ़िया प्लेस, हालांकि डाइव किया था गेंद के लिए, उनकी पहुंच से बाहर चौका।
4: ये लगा आभा का चौका।
0: Well, that was the fourth boundary and escaping the outstretched hands of Georgia Wall. Well, a far distance away from her, there was nowhere close to that. But good thoughts, Sanjay. She just played it very late.
5: चौका मिला गार्थ की गेंद पर। गार्थ का पिछला ओवर याद होगा प्रेम, सिर्फ इकलौता रन बना था उनके पिछले ओवर में, तो बहुत ही किफायती और अच्छी गेंदबाजी कर रही है। इंटेलिजेंट बोलिंग लगातार वेरिएशन के साथ, विविधता है उनकी गेंदों में। और इस बार पैट्स पर गेंद देने की कोशिश, लेकिन हल्की पैट लिफ्ट के साथ सिर्फ अपने से दूर था खेला इकलौते रन के लिए। हैली मैथ्यूज, अगर आप इनकी मजबूती का जिक्र करें तो उठा करके स्ट्रोक खेलती हैं, लेकिन अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही। 2016 वर्ल्ड कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप इनका औसत देखें तो वो 100 के आसपास है, कुल मिलाकर 400 से ज्यादा रन 6 मैचेस में। तो हेली मैथ्यूज बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं ऑस्ट्रेलियन बोलर्स पर, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भले ही विकेट नहीं निकाला हो लेकिन रनों की रफ्तार पर अंकुश किया। इस बार लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और इसे हल्के से केवल खेलना चाहती थी। जाहिर है अगर लेग स्टंप से बाहर जरा भी गेंद आएगी तो वाइड का इशारा आएगा, एक अतिरिक्त रन अतिरिक्त बढ़ते हुए पहुंच गए हैं 2 पर 19 गेंदों पर 27 मैथ्यूज के, और 14 गेंदों पर सिर्फ 5 रन हैं जोसेफ के। तो ये स्थिति कतई अच्छी नहीं है जोसेफ के लिए। एक अच्छी ऑलराउंडर के तौर पर उनका शुमार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज शायद डॉटिन का एक बेहतर विकल्प यहां पर हो सकता था अगर आप उनसे पारी की शुरुआत करवाते, क्योंकि डॉटिन भी अपनी ये पारी की शुरुआत करती। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी लेकिन कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जगह पर खड़े होकर के गेंद तक जाने की कोशिश की। उतने रिफ्लेक्सेस बढ़िया नहीं दिखाई दे रहे हैं आज कम से कम कियाना जोसेफ के। अच्छी क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया विकेट्स की तलाश, वेस्ट इंडीज को रनों की जरूरत। 6 ओवर चलता हुआ, पावर प्ले अब खत्म होने को है और सिर्फ 33 रन बोर्ड पे लगे हैं। जोसेफ तैयार, गार्थ का ये इस ओवर की 5वीं गेंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और लगातार उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर रखी है गेंद। काफी ज्यादा विड्थ दी थी, स्ट्रोक खेला और उस विड्थ का पूरा लाभ लेने की कोशिश की। गेंद हवा में थी, कोई खिलाड़ी वहां था नहीं और गेंद जब तक फील करती मोलिन्यू, रन वहां पर पूरी तरह से दौड़ करके हासिल किया। पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं, लेकिन एक गेंद के बाद जब फील्ड थोड़ी सी फैल जाएगी तो फिर आपके लिए गैप्स होंगे रन लेने के लिए। आप एक एक सिंगल करके या 2 रन की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उछाल करके स्ट्रोक खेलना आपके लिए जोखिम से भरा हो सकता है। 34 बिना नुकसान वेस्ट इंडीज। आखिरी गेंद गार्थ के इस ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी और लगातार गेंदबाजी कर रही गार्थ, और इस बार फिर पटका है, गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। डाइव किया था गेंद के ऊपर, उसकी गति को कम जरूर करने में कोशिश की हैमिल्टन ने। 6 ओवर के बाद 35 बिना नुकसान वेस्ट इंडीज।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: The power play completed and it's not been a good performance by the West Indies batters. 17 deliveries for Joseph to get those 6 runs. That will tell you the state of affairs, that she's been rather struggling to play the seamers and the spinners. So the power play sees 35 for no loss, just 4 boundaries in that, which means the Australian fielding had also been very apt for the bowling. There were obviously some of the deliveries which were considered to be not so appropriate, but the fielders have overcompensated for any of those deliveries which the batters were trying to play on, and now the fielders will go out of the circle two more to make it four. And now, as Sanjay said earlier also, that you can really now pick up the gaps, because now the power-packed offside field will get slowly, you know, spreading off, fielders getting to the fence. And now let's see what kind of field setting is she going to have, because

0: सेहत के सफर में आपका हम सफर, आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तो निश्चित तौर पर अब तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों का पलड़ा आप कह सकते हैं भारी है इस मुकाबले में। पिछले चार ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 12 रन बने हैं, कोई सिक्सर कोई छक्का देखने को मिला नहीं अब तक इस मुकाबले में। और जैसा कि हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रदीप कुमार तुमड़े ने बताया कि कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 103 छक्के लग चुके हैं, लेकिन आज एक भी छक्का नहीं लगा है। और 37 रन बिना किसी नुकसान के 7 ओवर के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप पर सदरलैंड की और उसे हल्के से केवल प्लेस किया इकलौते रन के लिए मूनी के दस्ताने में। अब रनों की रफ्तार बढ़े कैसे, लगातार प्रयास कर रही हैं जोसेफ, और ये जो कैच छूटा था एकदम ऐसा लगा कि जैसे शायद वो निश्चित तौर पर हाथ पर आना चाहिए था, एक आसान सा कैच। और इस तरह के जीवन दान देना आपको कई बार परेशान कर सकता है, तो बड़ा जीवन दान वहां पर जॉर्जिया बॉल ने दिया। 8वां ओवर पारी का सदरलैंड का, इस ओवर की अगली गेंद और इस बार रक्षात्मक तरीके से केवल खेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवल का जहां तक सवाल, इससे पहले एक मुकाबला यहां पर खेला गया जो कि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को चेस करते हुए पराजित किया, 164 रन बनाए थे इंग्लैंड ने उस मुकाबले को जीतने के लिए। 5.18 का औसत, यह औसत कतई ऐसा नहीं है जो वेस्ट इंडीज को इस मुकाबले में फ्रंट सीट पर खड़ा कर सके। बड़ा स्ट्रोक लेकिन टप्पा खाते हुए गेंद सीधे गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की दहलीज पर, वहां जाकर के फील्ड हुई और इकलौता रन वहां पर। तो अब बढ़कर के 39 रन हुए हैं, स्ट्रगल कर रहा है वेस्ट इंडीज लगातार रन्स के लिए, और ये दृश्य कतई वेस्ट इंडीज के इन दोनों बैटर्स के लिए अच्छा नहीं है। मैथ्यूज ने जमकर के शुरुआत की थी, धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा जैसे अपने साथी का प्रेशर उन पर भी आता जा रहा है। अगर कैच की एफिशिएंसी देखें ऑस्ट्रेलिया की तो कुल मिलाकर 58% के आसपास है। एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए अगर आप ये रेशो देखें, ये औसत देखें, तो शायद बहुत अच्छा नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, और इस बार भी बल्ला भर चला और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब ऐसे में जब जोसेफ का बल्ला चल नहीं रहा है, जोसेफ चल नहीं पा रही हैं, खेल नहीं पा रही हैं, कप्तान के पास क्या विकल्प है? क्या जोसेफ को अपनी पारी में आक्रामकता और लानी चाहिए? अगर विकेट गिर भी जाए तो इस समय कोई नुकसान नहीं। और ये बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा स्ट्रोक, पहला छक्का जोसेफ के बल्ले से। संभवतः इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत थी। गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के ऊपर से, कोई मौका नहीं।
2: ये लगा आभा का छक्का।
3: A very first confident stroke over the long on region because she found that it was in the slot and no great effort, very little effort, most best productivity achieved. Sanjay, very good confidence.
1: बढ़िया स्ट्रोक, क्या ये बड़ा स्ट्रोक आपको और एक और बार, ये गेंद टप्पा खाकर के ऊपर जरूर गई थी, दूरी तय नहीं कर पाई, लेकिन दो रन लेने के लिए पर्याप्त मौका। सदरलैंड का ओवर इसके साथ ही समाप्त हुआ, 8 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 47 पर नुकसान।
3: सो वेल वेस्ट इंडीज दिस ओवर हैड बीन रादर अ बिट ऑन द aggression mode from Joseph, who went for a big six on the own side to the long on region, and she made sure that she connected the ball well. But what I've seen so far is that this pitch, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on to the bat, because sometimes the ball just holds up, and this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization, and that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere, and the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds, and Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but

0: all depends on the last delivery bowl. It is Wareham being brought into bowling attack. 6 matches, 5 wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one she's trying to play, that scoop! And the wicket falls, and one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
1: Matthews ka wicket chala gaya. Ab ye pareshani ka sabab hai West Indies ke liye. Matthews behtar khel rahi thi. Joseph nahi chal pa rahi thi. इस बार इस गेम को आगे बढ़कर के हल्के से केवल प्लेस करना चाहती थी, लेकिन गेंद टप्पा खा करके अंदर की ओर आई और पूरी तरह से लाइन को मिस किया मैथ्यूज ने. पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिरा 47 के स्कोर पर. 90 ओवर में हेले मैथ्यूज 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर वारहम का शिकार बनी. गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, वारहम लाई गई और आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली.
0: Sanjay, if you remember when the Indian top order was batting, Smriti Mandana, she tried to similarly play a stroke like this when she was very well entrenched. And sometimes when the ball is right on the stump line, if you take a risky shot like this, want to scoop the ball or paddle sweep the ball, if you miss it, certainly it will knock your stumps.
1: बिल्कुल, इस तरह के स्ट्रोक खासतौर पर जब गेंदबाज अपनी शुरुआत कर रहा हो, पहली एक दो गेंदे हो, आपने अगर उनका तीन चार गेंदे या एक ओवर नहीं खेला हो तब रिस्क नहीं लेना चाहिए. कम से कम इस तरह के स्ट्रोक जब आप विकेट खुला छोड़ देते हैं, बल्ला चलता है आपका और अगर टप्पा खा करके वो गेंद आपने मिस की तो फिर विकेट गिरता, और वही हुआ मैथ्यूज के साथ.
0: सो कैम्पबेल कम्स इन, फेसेस द फर्स्ट डिलीवरी, अ लिटिल ऑकवर्ड, बट देन स्लाइटली प्लेस ऑन द ऑन साइड. But then I must say that the way Matthews played that last one, she went outside the off-stump line. As here's the next delivery from Wareham, and that's been played onto the onside to the backward square, and that hits the fence for sure, 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बेहतर रणनीति, आपको स्ट्रोक्स की जरूरत है अन्यथा फील्डर्स आप पर हावी होंगे. थोड़ी सी फ्लाइट कराने की कोशिश थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई 4 के लिए.
0: Another delivery now outside the off stump, and Campbell, who is a daring batter, she doesn't mind playing those strokes initially. She doesn't take time to settle down, and the way she played that sweep stroke, almost like a slog sweep on the own side, and got a boundary. The next one is defensive. The ninth over underway. Wareham comes and bowls. She's a leg spinner. Bowls wide outside the off stump. That goes further away. And off the back foot, just about plays the ball into the extra cover region. No fielder there. And that's another boundary. 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: चलिए, विकेट कीपर कैम्बल ने आने के बाद दो स्ट्रोक्स लगाए हैं, दो चौके लगाए हैं. और वेरहम को जो सफलता मिली थी शुरुआत में, उस सफलता पर थोड़ा सा पानी फेरने में सफलता हासिल की है. लेग ब्रेक गेंदे आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि कैम्बल को कोई परेशानी है.
0: Yes, the next delivery, that's on the middle and leg stump, and the batter plays it offering the full face of the bat and plays it down back into the hands of the bowler. No runs taken, 9 overs gone, a 6 is full over, 55 for 1 West Indies.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: मेरी मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: नए ओवर की शुरुआत. एक विकेट गंवा चुका है वेस्ट इंडीज. हेले मैथ्यूज के तौर पर काफी अनुभवी टीम की कप्तान, 9 ओवर के बाद 55 एक विकेट पर, रनों का औसत थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.11. सदरलैंड की जगह पर गेंदबाजी के लिए अब मॉलिन्यू आई हैं. बढ़िया स्ट्रोक गेंद का, ओहो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे हाथों में गया और ये दूसरा विकेट गवा दिया, यानी कि सलामी जोड़ी बाहर हुई वेस्ट इंडीज की. जोसेफ का विकेट भी गिर चुका है.
0: Well, this is once again taking a chance and trying to play across the line. A premeditated stroke went up in the air to the mid-wicket region, straight into the hands of the waiting fielder. Didn't have to do much about it. And a wicket comes in the very next over. So two consecutive overs and two consecutive wickets. Quite a juice of Scott Gardner. bowled Molyneux. So Molyneux gets another wicket, and this probably may just set a different run rate once a new batter comes in. Both openers going back to the pavilion.
1: बिल्कुल प्रेशर अब जबरदस्त होगा क्योंकि आपने दो विकेट भी गवा दिए, रन्स भी नहीं बने, स्ट्रोक पड़ा था लेकिन शायद फील्ड का तरीके से मुआयना नहीं किया, जहां पर गेंद गई वहां पर बहुत इत्मीनान के साथ वो कैच पकड़ दिया गया। तो दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गवा दिया है। सलामी जोड़ी जा चुकी है, कियाना जोसेफ और हाइली मैथ्यूज दोनों इस समय वापस पवेलियन में लौट गई हैं। कैंपबेल आई हैं, अब कैंपबेल के बाद कौन आता है खेलने के लिए? डॉटन आज पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रही, स्टेफानी टेलर।
0: बट संजय, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ अ बैटर इज स्ट्रगलिंग एंड गेट्स आउट, अ न्यू बैटर कम्स इन, देयर कुड प्रोबब्ली बी एन इंप्रूवमेंट इन द रन रेट्स।
1: ऐसा लगा था खासतौर पर जब कैंपबेल खेलने के लिए आई, दो बड़े स्ट्रोक लगाए उन्होंने, एक के बाद एक दो विकेट गिरने के बाद एक प्रेशर तो अनावश्यक तौर पर उन्होंने ओढ़ ही लिया है क्योंकि रन्स भी नहीं बन रहे और दो विकेट भी चले गए। अगर रन्स बनते तो शायद बेहतर स्थिति होती। मॉलिन्यू को यहां पर सफलता मिली और एक अच्छी सफलता। स्टेफनी टेलर आई हैं, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 3,666 रन हैं इनके कुल मिलाकर, 90 की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस बार। हल्के से ऑफ स्टंप पर मॉलिन्यू का जहां तक सवाल, काफी कसी हुई और अच्छी लेंथ पर गेंदें डालती हैं लगातार, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदें उनकी, और उसको समझना कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, क्या टप्पा लेग स्टंप के बाहर था या टप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था और इसीलिए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 3 हुई है और वेस्ट इंडीज अब तक स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए, आधा सफर बीत जाने के बाद अगर आपके स्कोर बोर्ड पर 57 रन है और दो विकेट आपने गवा दिए हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मोड़ना चाहती थी बल्ले के मुंह को, उन्होंने मोड़ा जरूर था ऑन साइड पर लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा टर्न ली, उछाल था, टप्पा लगा और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर थोड़ी देर हवा में थी, अपनी जगह पर सुरक्षित। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एन वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया। मॉलिन्यू बहुत ही बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी डाल रही है, खासतौर पर उनकी लेंथ लगातार परेशान कर रही है कैंपबेल को। पिछले ओवर में जब लेग ब्रेक के खिलाफ उन्होंने दो चौके एक के बाद एक लगाए, वही ऑफ ब्रेक के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार स्वीप शॉट खेला था लेकिन गेंद सीधे गई चौचिया बॉल के पास, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा। भारत अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार कर एक कड़े मुकाबले में बाहर हुए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके और इस बार बैकफुट पर गई, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया, 10 के बाद 58 पर 2 वेस्ट इंडीज।
0: सो 10 ओवर्स एंड द रन रेट 5.8 विच इज सर्टनली नॉट अ पार स्कोर फॉर द मोमेंट, बिकॉज इफ यू हैव टू लिटरली मेक श्योर दैट यू गेट अ विन हियर, द पार स्कोर देयर शुड बी अबाउट 165 प्लस टू से द लीस्ट, because Australia is in tremendous form. And Sanjay, if you look at the Australia side, there are 7 all-rounders. You see, that is one of the strengths.
1: Prem, agar aap all-rounders ka zikr karein, to Australia ke paas to 7 all-rounder hain, lekin West Indies ki puri team all-rounders ki agar aap us lihaz se dekhein, wo kitne gendbazon ka istemal karenge, ye aap dekhiyega.
0: Well, I understand that, but the big question here is how effective are they, because somebody is a batting all-rounder, somebody is a bowling all-rounder. But if you look at the captain herself, she is a wonderful all-rounder. She is a bowling all-rounder. She bats well, bowls well. And Campbell on 9, Taylor on no score. Campbell faces the next delivery, which is Gardner's first one. Plays it down onto the onside. The ball picked up there at the deep mid-wicket. Annabel Sutherland, the fielder. And one more run on the scoreboard. It's going at snail's pace. If you are 59 for 2 at 10.1 overs, well, I think even God can't save you if you score about 120, 130, because you have to be there with about 165, 170, which now looks like an Herculean task, a precipice to climb. Gardner just one delivery. Here she bowling the second one, which is wrapping on the pad, suddenly kept low. And has it got the bat? We'll have to wait and watch because the player...

0: for celebrating. And Taylor walking back. Yes, that's a wicket for sure. Tried to play the ball edge from the bat, leading edge, straight into the hands of the fielder.
1: जब आप दुविधा के शिकार होते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं. स्ट्रोक खेलें ना खेलें, बैकफुट पर गई, हल्के से मोड़ना चाहती थी, लेकिन एक आसान सा कैच हवा में ना तो अपने आप को पोजीशन कर पाई और बल्ले को भी तरीके से गेंद के पीछे नहीं ला पाई. बल्ले का जो सिरा था उससे जाकर के गेंद टकराई और इसीलिए वो जो उसे मोड़ना चाहती थी हाथ से वो मोड़ नहीं पाई. तीसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिया. स्टेफानी टेलर, एक अनुभवी बैटर, वो भी बाहर जाते हुए वेस्ट इंडीज के लिए अब मुश्किलों का पहाड़.
0: वेल दैट्स रियली मिजरीज कंपाउंडिंग फॉर द वेस्ट इंडीज साइड. स्टेफानी टेलर गोइंग बैक इनटू द पवेलियन, गेटिंग द लीडिंग एज, जस्ट क्लोजिंग द फेस ऑफ द बैट व्हेन द बॉल वाज स्लाइटली ऑन द मिडल स्टंप. एंड आई वाज स्केयर्ड दैट इफ द बॉल हैडन गॉट द बैट इट वुड हैव सर्टेनली गॉट हर लेग बिफोर, बट देन ट्राइंग टू just about turned the ball on the onside across the line, got a leading edge and the ball went an easy catch into the mid-wicket region and another wicket falls. So now the Australian side must be really gung-ho about it and their confidence level must have really gone skywards because they now look to be a very confident side, the Australian team. And we have seen, whether it be the men's side or the women's side, the Australians are always capable of a comeback. However you score against them. Here is Gardner bowling to Claxton, who's a new batter. The first delivery around the wicket, right on the middle and leg, keeping low, and she can't take a chance against her, and the ball played forward in defense and no run results. But Taylor's, I think, exit would have certainly put enough pressures on the West Indies side. Gardner comes in for the fourth time, this time on the middle and leg. The batter unable to play the ball. It's a productive stroke, plays it down into the hands of the fielder in the mid-wicket region, and no runs taken. So all the bowlers look to be wicket-taking bowlers as far as Australia is concerned. The last two deliveries of the 11th over bowls from the corner of the crease. This time the batter steps up. Goodness me. Another wicket goes. Trying to play the ball into the cover region. Keeps it up in the sky. And the fielder once again getting a regulation catch right in front of the chest. And wicket number four goes. Claxton also going without scoring.
1: गार्डनर ने दूसरा विकेट निकाल लिया इस ओवर के अंदर और उसी जगह पर पकड़ी गई क्लैक्सटन. आगे बढ़कर के स्ट्रोक खेलना चाहती थी, हवा में स्ट्रोक था और उसे कोई गलती नहीं की पकड़ने में. तो अब वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किलों का समय. 59 रन पर चार विकेट गंवा दिए. गार्डनर को दो विकेट मिले. शानदार सफलता.
0: Well, West Indies going from misery to misery and these two wickets are both batters going at no score. Certainly would put a compounding pressure on the West Indies side, whereas the Australians are now looking pretty happy and they're celebrating. And as I was telling you, Sanjay, a little while ago, that all the bowlers look to be wicket-taking because one of the strengths I find by the bowlers is that they're bowling stump to stump. They're not varying their line or length so much. They're just bowling the right delivery, right on the stump line. If the batter makes a mistake, there you are. So now, a big question, how many more runs before the 20 overs get completed, because we haven't seen the kind of boundaries except for 1-6 earlier from Joseph. There's not been a great batting potential from West Indies.
1: बहुत हैरत में डाला है West Indian ने. अब तक ये आखिरी गेंद है Gardner की.
0: Next one, which is outside the off stump, and a bit of bounce collected over the stumps there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
4: जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो अगले ओवर की शुरुआत हो रही है. वेस्ट इंडीज ने अपने चार बैटर्स गंवा दिए हैं और शुरुआती अगर बैटर्स इस तरह से चले जाएं कोई बड़ा स्कोर किए बिना तो प्रेशर नीचे के लिए आता है. चिनेल हेनरी आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि डॉटन आज मैदान के ऊपर अब तक दिखाई नहीं दी हैं. एक दृश्य में हमने देखा था कि वो थोड़ी सी इंजर्ड दिखाई दे रही थी. अब उनकी वापसी होगी या नहीं. पिछली 18 गेंदों में चार विकेट गिर चुके हैं और रन्स तो नाम मात्र के ही बने हैं. वेरहम 12वें ओवर की

0: Hitesh has got one more review. That was close, Sanjay, but except for the edge, she was absolutely beaten.
1: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था.
0: Next delivery outside the off stump. A bit of width offered and the batter moves away, plays it down into backward point. No runs taken. Very good over from Gardner. Just three singles given away. 66 for 4 after 13 overs, West Indies.
2: रिपोर्ट लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: गरीब, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए. ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर. यहां 66 पर 4 और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है. ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4.
5: ये लगा आभा का चौका.
0: And this one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
1: Sutherland ke is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे. स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125. और अगर आप वेस्टइंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं. 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड मैन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर. डॉट बॉल, डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है. 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. 71 पर 4, रन रेट 5.26. ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है. कैम्बल, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं. और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया. तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के. उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं. सदरलैंड का जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला. लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित. और ये 72 पर 4, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है सदरलैंड. बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, एक रन दौड़ करके पूरा किया. 14 के बाद 73 पर 4.
0: So well, now what we've seen is 14 overs, 73 for 4, time for drinks in the center, and I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd, but now in the next 7 to 14 overs just 38 runs scored. And Shamas Sani says that last 5 overs, 18 for 3, 18 runs and 3 wickets. What kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
1: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं भले ही विकेट ना गिरे तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है वो जो दबाव है वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
0: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely, on a tension mode. And once those first two wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
1: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज्यादा खेला जाता है। जब आपके दो विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाएं।
0: बट लुक एट द अदर थिंग, लुक एट द बॉलर्स, दे ऑल्सो बोल्ड वेल। यू सॉ एशली गार्डनर कमिंग विद सम वेरी गुड बॉलिंग। ऑफकोर्स गार्थ एंड हैमिल्टन स्टार्टेड ऑफ सीमर्स, बट द स्पिनर्स वर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे बॉलिंग स्टंप टू स्टंप, बॉलिंग द रॉन्ग वंस एंड लेटिंग द बॉल कम ऑन टू द स्टंप लाइन, एंड द बैटर्स दे मेक अ मिस्टेक, एंड मोर ऑफन द नॉट यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द विकेट्स फॉल व्हेन दे ट्राइंग टू प्ले द बॉल अक्रॉस द लाइन।
1: बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खासतौर पर शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और जरा सी गेम को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा। और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है दो मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
0: एशली गार्डनर रियली बोल्ड वेल, आउट ऑफ द थ्री ओवर्स शी इज गॉट 12 डॉट्स इन दैट, टेकन टू विकेट्स ऑफ 6 रन्स। शी इज द वन हु लिटरली मेड दैट यू नो मूव टू पुट देम अंडर ट्रबल। हियर इज द फर्स्ट ओवर आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड दिस इज अप इन द एयर, goes high in the air, the fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland, and another wicket falls, just the first delivery after the drink strike, and the fifth wicket goes.
1: आसान मौका, गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील्ड किया। बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं, और वेस्ट इंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई। हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही हैं। मुश्किल का समय है, क्या वेस्ट इंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, ये रन्स मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई चुनौती देने वाले हैं।
0: That's right, and I think they've just invited pressure on their shoulders to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking their wickets.
1: के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ, तो अब करें तो करें क्या? अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
0: Been played by Campbell because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74, and West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery and the batter has literally smashed this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single. And now boundaries have become a kind of a precious item, and I'm sure Shama will just now tell me as to how many deliveries

0: distance, we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our scorer is going to work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there, and the batter off the back foot just punches down to the wide-ish mid-off region, picks up a single, easy-looking single, and that takes the score snailing up to at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets. 15th over, just 2 deliveries more, as here's the next one. That slightly short, plays it across the line, a sweep shot, but there is a superb piece of fielding there at backward square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs, and that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
1: Western teams bhi shayad uska rumaan nahi laga pa rahe honge. और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे एकदम सीधे, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई थोड़ा सा ऑन साइड में गई, डीप में ट्रेड पर गेंद फील्ड हुई सदरलैंड के हाथों, लेकिन रन वहां पर मिल गया.
0: Alright, so well, Sanjay, if you look at the last three or four overs, the batters are literally struggling to get even singles and twos. Wherever they're playing the ball, they get the ball fielded.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
4: लिए जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: So we start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for 4 runs at the whitish long off region. So this boundary, Sanjay, coming after 2 overs.
1: T20 international semi-final mukabla aur 2 over ke baad ek boundary West Indies ke batter se.
0: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls, and in the slot played onto the wide-ish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell, of course, playing on 22 of 24. But it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one. She daringly steps up and oh, that ball. Is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there. And that ball went as a very low catch, trying to step out and play. Just couldn't get in the middle of the bat, low toe end of the bat, and the catch coming into the whitish mid-off region.
1: Ellis Perry ne bada badhiya catch pakda niche jhukte hue. Tareef karni hogi unki, koi gunjaish nahi chhodi unhone. और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी, लेकिन कैच छोड़ा नहीं. छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का, और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा. कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया. और अब डॉटेन आ रही है. डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती है, एक अच्छी बैटर है टीम की. डियंड्रा टॉटन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन हैं उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटन का कद क्या है. लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई हैं.
0: संजय, अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत.
1: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है, लेकिन यह निश्चितताओं का खेल क्रिकेट है.
0: एब्सोल्युटली.
1: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते.
0: वेल, डॉट इन कम्स, इज इन अ बिट ऑफ अ बॉदर एज वैरम्स फर्स्ट डिलीवरी प्लेज ऑन द ऑफ साइड एंड नो रन्स टेकन. वी अर्लियर सॉ हाउ डॉट इन वाज कैरीड फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड वेयर शी वाज प्रैक्टिसिंग. दिस वाज नॉट इन द गेम. So this is the next delivery, which is outside the off stump, and once again just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stroke on the offside, moving away from the line of the ball, and no runs taken. We have 6 fielders on the offside, 3 on the on, 4 on the fence, 2 in the one on the mid-wicket region, 1 on the back of the square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside, and that ball goes straight into the hands of Molyneux, and a very good chance of a run out goes out of hand for Australia, but I don't think they will mind ever. 16 overs gone, West Indies now 84 for 6.
5: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: तो डॉटन अब क्रीज पर आ चुकी है, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी, क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, चार ओवर्स यानी कि 24 गेंदे बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन बना पाएंगे, क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। ग्लासगो हैं, फ्लेचर मुनीसर, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे। गार्ड कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने आज ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए। डॉटिंग ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया इकलौते रन के लिए। गेंद बल्ले से लगी और डॉटिंग ने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए। 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की 5 लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं। जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं। इस गेम को हल्के से केवल प्लेस किया, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया। तो गार्डनर की 2 गेंदों पर 2 रन, वेस्ट इंडीज 86 पर 6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है। और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में 1 रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है। थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, लेकिन आपको बिना आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा। गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का। अगर आप देखें कुल मिलाकर 4th ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86, T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट लिए हैं गार्डनर ने। तुरुप करता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 17वां ओवर चलता हुआ, ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के 3 ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा, क्या डॉटन का बल्ला चलेगा। और इस बार गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, इकलौता रन। और इसे 1 रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ। डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से, ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से। और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोक रन दौड़ करके पूरा किया, 17 के बाद 91 पर 6।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: West Indies in dire straits, and Thomas Sanjay says proudly that, you know, 50 dots have been bowled. So Sanjay, imagine 8.2 overs of dot deliveries, 9 boundaries and a 6. That says the story.
1: बिल्कुल, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स डालते हैं, गार्डनर ने देखिए 24 में से 12 डॉट बॉल्स डाली, गार्थ ने 18 में से 9 डॉट बॉल डाली, तो हर बॉलर ने यहां पर अपना काम किया। हैमिल्टन ने 12 में से 7 डॉट बॉल डाली। और क्षमा के साथ साथ हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है प्रदीप कुमार तुम्बड़े, उनकी कलम भी बहुत तेज से चल रही है ये बताने के लिए कि डॉट बॉल्स का हिसाब क्या है।
0: व्हाट कैन प्रदीप तुम्बड़े डू इफ यू डोंट रियली गेट द रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। हियर इज द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ फ्रेश ओवर ऑफ द बैक फुट, जस्ट टियर्स इट डाउन इनटू द बैक कट पॉइंट, द बॉल रनिंग टू द फेंस, दैट्स 4 रन्स।
6: ये लगा आभा का चौका।
0: 10th बाउंड्री संजय,
1: अच्छा चौका, थोड़ी सी राहत और उछाल लेती हुई गेंद थी, और उस उछाल लेती हुई गेंद का पूरा फायदा लिया चुके, ऑफ स्टंप से बाहर थी, मौका मिला उसके ठीक पीछे जाते हुए गेंद को केवल खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बहुत खूबसूरत स्ट्रोक टॉटन का.
0: Almost reminds you of Chris Gayle playing the uppercut as he has the next delivery that's played awkwardly on the on side. Didn't get the proper center of the bat there. The ball goes into Sutherland and one more run on the cards. The West Indies team has to literally play out of the skins, and I think if they get about 110 odd runs, 120 maximum, and just about daydreaming on that, I think that would be certainly a score that still not suffice. But the bowlers, as we said, bowling dots. So T20, you don't have to sometimes get wickets. Just keep bowling those dots and the batters are going to come under pressure. Garth runs away. Bowls around the wicket to the left-hander. The ball is up in the air. Would that be danger? Yes. Oh, just kept dropping between two fielders. I almost started thinking it landed into the hands of the fielder. But then two of them almost converging. But the ball drops exactly in center of them at the long off region. It was in the air, hung in the air for a very, very long time.
1: बिल्कुल हवा में काफी ऊपर थी और फील्डर्स के पास मौका था बॉल के ठीक नीचे जाने का, लेकिन शायद जिस जगह पर वो मौजूद थी वहां पर उनकी पहुंच से बाहर, और इसीलिए वो कैच तब्दील नहीं हो पाया. एलिस पेरी थी.
0: पेरी वाज देयर द एक्सपीरियंस फील्डर, बट नेवर माइंड. एज हियर इज गार्थ कमिंग इनटू बॉल. ऑलरेडी 7 रन्स इट्स ओवर. वाइड आउटसाइड द लेग स्टंप. दैट्स एन एक्स्ट्रा रन. शुड बी अ वाइड. सो well, I don't think they will now really bother about it because they already got the inroads quite well. They have dismissed the top six batters. Dotin, whatever she tries, you know, she can't do something magical to get the score. I don't think more than 120. If I just being very, very optimistic on that, there is no slip there. There is a gully slightly more deeper on the offside, and the batter this time plays the ball into that region of. The point dot in, moving away from the line of the ball, slow delivery from Garth and just misses the line, and no runs taken. Now it's going to be a good contest between the bat and ball, and even there is a things shown on the big screen, the score predictor of 121, which is of course by looking at the standards of a T20 today, I think that's below par total we are looking at. Well, 17.4 overs gone, 99 for 6. The run rate hovering around 5.6 for a very long time. There are 6 fielders on the off, 4 on the on. The V protected long on, long off, mid wicket, and fielder at the point region. As here's the next delivery outside the off stump, thrashed! And the ball goes into the widest long off region like a bullet for 4 runs.
6: Ye laga, abha ka choka.
0: Very good shot there, moving away from the line of the ball, and a crushing blow to the ball, and the ball just goes super fast, beating the fielder there, and rushes to the widest long offense for 4 runs. Must say, Dotin has really come in and added some kind of a life into the shots there. That is Glasgow, the left-hander, and we see that the number of left-handers in the West Indies side is about 4 of them, as here is Garth coming into bowl. The last delivery of the over, 103 for 6. You got 2 more overs after this. Maybe 120, 125 could be quite optimistic. Now 5 fielders on the off, 4 on the on. Here she bowling in, right outside the leg stump, wrapped on the pads. No question about leg before. The ball goes into the point region, picked up there. A single taken in the process. And that ends the 18th over. West Indies, 104 for 6. Dotin 11, Glasgow 10.
1: मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खर्चीला ओवर कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आए हैं गार्थ के. और ऐसा होता है जब आप रन्स बनने लगते हैं तो आमतौर पर जो लंबाई है गेम की दिशा उससे भी भटकाव आता है. 13 रन इससे पहले बने हैं, माफ कीजिएगा, 13 रन इस ओवर में बने हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं. मोलिन्यू और सदरलैंड ने इससे पहले तीसरे और आठवें ओवर में 10-10 रन खर्च किए थे. तो ये 3 ओवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए लाभप्रद रहे हैं. लेकिन कहानी ये है कि वेस्ट इंडीज क्या अपने इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगा. सामने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उनके जो बैटर्स हैं वो जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो सचमुच परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है. भारत की मजबूत टीम को जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी, और जितने संतुलित तरीके से खेलते हैं, जिस रणनीति के साथ खेलते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे. विकेट पर केन थी, इस बार केन को अपने से दूर धकेला 1 रन के लिए. इसे एक रन के साथ

0: बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर दिया तेजी के साथ दौड़ते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करने की जरूरत है इस समय। ये आखिर के एक दो ओवर्स ऐसे होते हैं जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जो दबाव बनाया है वो डॉट बॉल्स के जरिए बनाया है। पहले से कमिट हो गई थी स्ट्रोक के लिए, और ये देखते हुए मॉलिन्यू ने जहां पर खड़ी थी लेग स्टंप के बाहर तकरीबन उस गेंद को रखने की कोशिश की थी, एक रन दौड़ करके पूरा किया। स्कोर प्रेडिक्टर 120 से 25 की कहानी बता रहा है, और रनों का जो औसत है वो अभी 5.84 है। मॉलिन्यू का ये आखिरी ओवर है, चार गेंदें बाकी हैं उनके, इस कोटे की दो विकेट उन्हें भी मिले हैं और इकोनॉमी 6.6 के आसपास। ओ, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और उठा दिया है गेंद को टप्पे के साथ, चार के लिए भी नहीं जा पाई, ऊंची गई लेकिन टप्पा खाने के बाद ठहर सी गई, और इसीलिए जो शायद उम्मीद की एक बड़ा सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा था वो नहीं बन पाया। दो रन दौड़ करके पूरे किए। डॉटन का बाद में आना क्या ये परेशानी का सबब था वेस्ट इंडीज के लिए? मॉलिन्यू की ये गेंद और इस बार करारा स्ट्रोक,
1: एंड दिस वन द बॉल गोज इनटू द ऑफसाइड टू द वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन एंड वन मोर रन टेकन and the score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dottin not in control of the shot, the ball just rolls over on the bat and the pace of the ball was taken away because the ball rolling over the bat. Lucky there was not a catch in there. Here's Molyneux for the fifth time it is over, and Glasgow steps out in confidence, didn't once again get hold of the ball. The ball goes into the wide-ish long off region. Sutherland picks up, disallowing the second run. The score now moves up to 111 for the loss of 6. And West Indies in real trouble there. Now, how much can you score in the last? I mean, you just left with 7 more deliveries to go.
0: Aakhri gin ka samna karengi Dottin. Aur is baar Dottin ne nikal diya on side par. Aur 4.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Once again, confidence oozing out of Dottin, and who steps out daringly and plays the ball to the offside, to the wide-ish, almost an extra cover region, let's put it that way, and a good boundary to end up that over. So it looks as if the West Indies team now looks better confident compared to what it was earlier, and the Australian bowlers have really bowled wonderful. They've kept the ball on the stump line. Of course, occasional boundaries are bowled, but rather scored. But then the bowlers have done well. The highest score that the West Indies team in this World Cup, it was 163 for 3 versus New Zealand. Then was 153 for 6 versus Scotland. The lowest score was 99 for 5. That was against Sri Lanka. As Sutherland bowls the first delivery, and that ball once again played nicely onto the backward square on the inside. A bit of a risk involved, and the ball rushing to the fence for 4 runs on that occasion. Here comes Sutherland bowling outside the off stump, and that ball has been once again a crushing blow onto that one, to the extra cover fence for more runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: गुड गोइंग बाय दीज टू, गुड रिकवरी एक्शन, एंड द बॉल वॉज ऑलमोस्ट होल्डिंग ऑन टू द पिच वेयर द राइट हैंडेड डॉटन प्लेड इट अक्रॉस टू द वाइडिश मिड ऑफ रीजन। नो फील्डर देयर फॉर 4 रन्स, एटलीस्ट सम रिस्पेक्टेबिलिटी टू द स्कोर फॉर द मोमेंट। The loss of 6 wickets. Here's the next one. That's an uppercut. This will definitely be productive. The ball goes to the third man region. 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Wonderful shot and wonderful thinking, because the ball was there to be played, and this is the innovative technique for the batters who are in control of the shot to just play that one uppercut over the fielder there at short third and going to the fence for 4 runs. Sutherland must be rather unhappy. So West Indies now at least looks a bit more brighter compared to the situation they were in earlier situations. So 5 fielders on the off, 4 on the on,

0: and a very warm welcome to Free Hit 20 as we have just witnessed the first innings of the first semi-final between Australia and West Indies in the ongoing women's ICC Women's T20 World Cup, where Australia, after having won the toss today, decided to bowl first and they were able to contain the West Indian team for a mere 125 runs on board within 20 overs. Now, will Australia be able to chase this target is what we have to speak and is what we have to now witness also. But for the moment, I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. And yahan par charcha karne ke liye hamare saath hain Ravinder Singh ji, BCCI coach, Rakesh Rao, sports journalist, aur Asha Rawat, former India batter. Aap teenon ka swagat hai. आशा जी, 125 रन सात विकेट खोकर बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने, कम है या काफी है?
2: नहीं, वैसे कम है 125. जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बैलेंस टीम है तो उनके लिए ये जो टारगेट है मुश्किल नहीं होगा, उनके लिए बहुत इजी होगा. अगर मैं वेस्ट इंडीज बैटिंग की बात करूं तो अगर देखें तो सारे जो बैटर थे ना वो केवल क्रॉस बैट चला रहे थे, मतलब बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे थे. अगर वो उस बॉल की लाइन में खेलते तो मुझे लगता बेटर स्कोर होता.
0: राइट, राकेश, आई विल कम टू यू. समवेयर डू यू फील दैट द वेस्ट इंडियन बैटिंग जस्ट कुडंट पिक अप देमसेल्व्स टुडे, दे वर एवरीवेयर व्हाइल पुटिंग ऑन अ स्कोर टुडे?
3: या, यू आर राइट, बिकॉज़ व्हाट आई थॉट वाज दैट यू नो इवन आफ्टर दैट 47 रन स्टार्ट समहाउ दे कुडंट गेट गोइंग. It was, you know, that they could never accelerate. They were just about, you know, that run rate of between 5 and 6. They stayed there and they ended up with just over 6 and over. And that is thanks to that 42-run stand for the, you know, that last wicket, which we saw, the 7th wicket. Otherwise, I think between that 47-run stand at the top and 42-run stand in the middle, in between, they had very little to show. And thanks to that, you know, that late kind of a charge which we saw, desperate charge, and that too, and it came from the bat of like that in which we all thought that she was not able, she, you know, like there was this thing whether she'll be able to come and bat or not. She gave that impetus. I don't think it's enough, but then women's cricket, as I said, 120 125, at the face of it, yes, Australia should just, for them it looks like just like a walk in a park. But let's see. I mean, because I'm also getting the impression that ball is probably stopping at times. But then, you know, when these guys, I mean, you know, when, I mean, when Australian girls come and bat, their skill sets are very different than what we have seen from the West Indian batters. So the timing and all, we are likely to see a very different approach.
1: Right. लेकिन अगर हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सोफी मोलिनी ने 6 गेंदबाजों को लगाया. कप्तान ने खुद 2 विकेट लिए. एशले गार्डन की तारीफ करनी होगी रविंदर जी, 4 ओवर में मात्र 13 रन और 2 विकेट.
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग का प्रदर्शन किया सबने लोगों ने. और मुझे ये लगा है कि इतना एक्सपोजर शायद अब वेस्ट इंडीज में इतना लोकल वुमेन्स में शायद नहीं मिलता होगा, जितने मैचेस नहीं खेल पाते होंगे जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमें खेल पाती हैं. ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा, सिर्फ मैथ्यूज ने शुरू में अच्छी बैटिंग करके दिखाया, बाद में डॉटिन ने थोड़े से अपने हाथ चलाए तो वो बड़े, और बाकी जो लग रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई फॉर्म में है. और पूरा टूर्नामेंट में जैसे पता चले 2 मैच हारने के बाद भी ये लोग पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है केक वॉक ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया.
1: लेकिन आशा जी, अगर हम गेंदबाजी में देखें, 6 एक्स्ट्रा थे, 2 लेग बाय, 4 वाइड, नो बॉल तो हुई नहीं. प्रोग्राम फ्री है 20 है.
2: वो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है सुन लिया, इसलिए उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी.
0: लेकिन अगर आज हम आशा यहाँ पर बात करें, जिस तरह की आज गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की, 47 में पहला विकेट गया, लेकिन असली कमर जो कहते हैं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज की, तब टूटी जब अगली 4 गेंदों में उन्होंने 3 और विकेट्स अपने गवा दिए. एंड टू टॉप इट ऑल, उसके साथ अगर देखें तो आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हम राउंड अप देखते हैं उसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने आज 54 डॉट बॉले डाली है. T20 के मुकाबले में जहां 120 गेंदे होती है उसमें 54 डॉट्स.
1: राकेश कह रहे हैं
0: मतलब कमेंडेबल थिंग कर दिया आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ओवरऑल अगर देखे आज तो.
2: हाँ, वही ना, पहले सबसे पहले आप T20, मैं वही बोल रही हूँ, सारे क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे. अगर वो बॉल की लाइन में आके खेलते तो जो रन 125 बने हैं मे बी वो 140-150 के करीब चले जाते, पर आपने स्टार्टिंग में जब हमारे ओपनर आए तो वो ओपनर भी जो थे क्रॉस, सब क्रॉस खेल रहे थे कि या जो सर्व, ये सब इन्होंने क्रॉस खेला, जबकि मैथ्यू बहुत अच्छा खेल रही थी, बट वो उसने जो बॉल चूज करी वो बहुत ही गलत, मतलब वो वही मैं कह रही हूँ ना, सबने क्रॉस खेला, उसको स्ट्रेट खेलती तो मे बी वो बाउंड्री हो जाती।
1: राकेश, टू मेनी डॉट बॉल्स फॉर कम्फर्ट।
3: या बिकॉज यू नो इफ यू कांट प्ले स्पिन यू हैव लॉस्ट 6 out of 7 विकेट्स टू स्पिन, and overall when you look at it you always struggle, you're not able to read the length, you're not able to gauge the turn, and it wasn't turning viciously, I mean it was just another typical England wicket where it doesn't spin so much, there's an extra bit of bounce I thought sometimes every time the ball hit the seam, and the batter struggled, any delivery which had a bit of bounce and that too just a bit short of the length, you know, back of the proper in-length length, they struggled.
0: Right, the
3: timing wasn't right, and as Asha very rightly said, cross batted shots you see so many times and you are not able to clear the infield 30 yard circle, you are not even getting a single there, so unless you pierce the, you know, the field, go for the gaps, and the whole idea was to hit over the top.
0: Right.
3: And they struggled.
0: I think some of the irony is that when we're talking of that the West Indies couldn't play spin very well, they are the team that actually also bowl spin very well. And Ravi, aapke paas aaunge is baat pe ki ab West Indies ko 125 run ka target defend bhi karna hai, to kya unke spinners is match mein kuch bhi kamal kar payenge aapko lagta hai ab?
4: देखिए मुश्किल है मैच इस समय, क्योंकि रन उनके पास इतने हैं नहीं सेव उसमें, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही 6 ओवर के अंदर ही काफी 50-60 रन बना के मैच को एक वन साइड ले जाएगा, क्योंकि ये विकेट जो है इतना जिस हिसाब से बॉल किया है उस स्पिनर्स ने, उससे बहुत ही स्लो बॉल किया है, और वेस्ट इंडीज को भी अब लेकिन बॉल तो स्पिन कर सकते हैं लेकिन उनके पास वो डिफेंड करने के लिए उतना रन नहीं है, 160-170 रन बनते तो फिर शायद थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि मैच
1: आशा डिएंड्रा डॉटिन जो है वो पहले लग रहा था थोड़ा इंजरी स्केयर हो गया मैच से पहले और वो खेलने भी बहुत नीचे आई, लेकिन फिर जब आपने उनको देखा खेलते हुए 26 रन नाबाद 16 गेंदों में 4 चौके, तो फिटी लगी या फिर कुछ अभी कैरी कर रही है इंजरी?
2: नहीं फिटी लग रहे थे जिस हिसाब से, बल्कि मुझे लगता है जो ओपनर ने नहीं करा सिंगल वो लास्ट के बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, तो वैसा गेम अगर वो पहले खेलते अगर ओपनर तो मे बी स्कोर और अच्छा होता।
1: ऊपर खेलने क्यों नहीं आई राकेश?
3: टाइम चाहिए था उनको रिकवर होने के लिए, इसलिए बिल्कुल नीचे आए हैं।
0: सो समवेयर डू यू थिंक इट प्लेड अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज बिकॉज डिएंड्रा डॉटन वाजंट अवेलेबल एंड कम टू थिंक ऑफ इट शी मेड 26 अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन।
3: यस आई मीन शी डिडंट हैव द टाइम आल्सो टू सेटल इन, शी जस्ट केम एंड जस्ट यूज द लॉन्ग हैंडल एंड शी डिड इट वेरी इफेक्टिवली, सो यू हैव टू गिव इट टू हर, ब्रेव एफर्ट, बट आई थिंक बिफोर हर हूसोएवर केम दे डिडंट डू एनफ बिकॉज यू डिडंट रोटेट द स्ट्राइक, दैट बीट्स मी कंप्लीटली।
1: लेकिन अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो जो विकेट कीपर है उनकी लेफ्ट हैंडेड बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल, कैसे देखते हैं आप सलामी जोड़ी को आशा?
2: जिस हिसाब से वो पहले भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, 5 मैचों में अभी तो कोई उनकी मतलब हारे नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पार्टनरशिप उनकी अच्छी, और उनमें सबसे पहली बात है कि कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई इतना रन नहीं है, 120 बॉलों में 126 रन बनाने हैं तो कोई टारगेट भी इतना नहीं है, तो उस हिसाब से, और बाकी उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। तो
0: रवि आपके पास आऊंगी, 125 रन का मतलब स्कोर बना, 126 चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अप टू द मार्क उतनी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बॉलिंग उनके बॉलर्स ने आज करी है वेस्ट इंडीज को 125 में उन्होंने कंटेन कर दिया, क्या यहां से कोई भी ऐसा पैतरा हो सकता है जो आपको लगता है वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी अपने इस गेम अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है या अपना सकती है?
4: बिल्कुल, इसमें देखो वैसे तो क्रिकेट बने अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यही है कि आप स्पिनर से शुरुआत की जाए दुरंत से, और उसमें अगर कुछ एक आध कोई गलती वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बैटर कुछ कर सके तो कर सके, क्योंकि इस विकेट पे जो मुझे कोई ज्यादा दम लग नहीं रहा कि बॉलर्स के लिए कोई ज्यादा दम है, अगर वो अगर ये चाहते तो थोड़े से मतलब सिंगल सिंगल निकाल के 160 तक पहुंचाते तो मैच में फाइट बनता, लेकिन अब तो मिराकल सी हो सकता है अगर कोई 2-3 गलतियां करें और 2-3 विकेट निकाल जाए तो शायद प्रेशर बन जाए।
1: जी राकेश, ये जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज के पास, अश्विनी मुनीसर, एफी फेचर, आलिया एलेन, जेनिलिया ग्लास्को, तो इनके पास भी है विविधता?
3: बहुत शार्प नहीं है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट फिर भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगर वो इंडियन स्पिनर्स को देखने के बाद तब भी मैच निकाल सकते हैं, जितना भी इंडिया वाला मैच अगर आप याद करें तो उसमें स्पिनर्स ने जितना इफेक्टिव हो सकते थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि इंडिया के पास पेस अटैक उतना इफेक्टिव नहीं है। कहने को तो बॉलर्स हैं लेकिन वो जान नहीं है, तो यहाँ पे भी उनके पास वो वेराइटी क्लास नहीं है। स्पिनर हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिन इफेक्टिव स्पिनर्स होंगे, वो क्लास है नहीं उनके पास।
0: राइट, एंड आई थिंक समवेयर टुडे इफ यू वर टू टॉक अबाउट दिस हाउ द गेम प्रोग्रेस्ड आल्सो, Australians were just way too good for the day for West Indies today, Rakesh. Matlab, they did not err much from their strategy apart from the fact that, yes, in fieldings we could pick out nitpick that there were dropped catches, dropped missed opportunities, but still the fact that they were able to hold their nerves together under extreme pressure in a match like a semi-final, much appreciation and kudos and a round of laurels should go for Australia today, do you think? So
3: Sakshi, what happened was that, you know, barring that one dropped catch in the outfield, Australians held everything, you know. When the ball fell in no man's land, then it was, of course, it was beyond them. But overall, I would say that West Indies did nothing to put pressure on the Australians. That 47-run start was too sedate, you know. It should have been a little more, you know, in the face, which it wasn't.
1: Gee.
3: So when you are maintaining a run rate of around 6-7 initially, not good enough, because if you want to put pressure you have to be off to a flyer, and that we didn't see.
1: Gee.
3: And that is where I hold Campbell responsible to a large extent. She stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain 100% strike rate.
1: जी.
3: So that is disappointing.
1: जी, हेली मैथ्यूज जो कि कप्तान है वेस्ट इंडीज की, उन्होंने सर्वाधिक 28 बॉलें खेली, हालांकि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर भी बनाया 30, लेकिन जब वो जम गई थी तो बहुत जरूरी था, अच्छा खेलती। लेकिन वुमेन क्रिकेट को स्टार एम्बेसडर्स चाहिए, स्टार प्लेयर्स, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की बात करें, एलिस पेरी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है. सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है. इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है. यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है.
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है. वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे. रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है, और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है.
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है. ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं. जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है. उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है. जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं. उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था. इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है.
5: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती. सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ.
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
6: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए. वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया. दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है.
7: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी. बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है. आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो. देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई.
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा. नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा. अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे. नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर

0: ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में ताउन करें। रेलवेज मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मनसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदायशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। दो अहम मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमू हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जामे मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए पीएम गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन दो अहम मौजूआत से मुताबकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदाम को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के मुल्कीर सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मुआशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाएं। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी ताउन करना चाहिए। आज विशाखापटनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसा तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने यह बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए ताउन करना चाहिए।
1: वर्ष 2047 तो विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्ति करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवेज ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج ودودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے، اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نرواہ کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13

0: ہزار سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ختمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن ووٹروں کو 1,68,200 سے زیادہ فارمز تقسیم کیے گئے۔ 7,600 سے زیادہ اندراج کے فارم ڈیجیٹائز کیے گئے۔ دلی میں 13,033 پولنگ بوتھس ہیں جو 1,45,10,298 ووٹروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج اندراج کا اپنا فارم داخل کیا اور قومی راجدھانی کے سبھی اہل ووٹروں سے نظر ثانی کے جاری عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے سبھی پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنے فارم درست طریقے سے بھریں اور انہیں اپنے متعلقہ بی ایل اوز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ صحیح اور درست ووٹر فہرست ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
2: ایچ رن سکورڈ ایز ہیئر از ایلینی کمنگ ان ٹو بال اوور دی وکٹ ٹو پیری آف دی بیک فٹ سٹرائکس دی بال گوز ان ٹو دی ایکسٹرا کور ریجن دیئر از اے فیلڈر ہو پکس اٹ اپ جوزف اینڈ نو رنز ٹیکن دی ویسٹ انڈیز ہیو اے ریزن ٹو وری آبویسلی اف یو جسٹ پٹ اباؤٹ 125 آن دی اسکور بورڈ اینڈ سی دی ڈفرنس ان بیٹنگ سٹائلز they were struggling with their strokes trying to play more often than not across the line whereas australians are very disciplined in the stroke play as well shot selection is very good as here is Alinea bowling another back of the length and the batter goes on the back foot and thumps the ball into the mid wicket region once again the captain comes Matthews picks it up and allows not even the thought of a single on that occasion and the score still remains so well Australia looking confident they have maintained their momentum they're making sure that they move in a very structured way they don't have to commit harakiri they don't have to manufacture a stroke or play indiscreet cricket they just have to pace their innings properly and they will cross over that 125 here is Alinea bowling in the next one and this time she once again bowls a slow delivery and the batter very unable to strike and what a wonderful over so far The best of the overs from West Indies, Alinea. 5 dot deliveries. And if this is a dot, I think this should be the first maiden over of the match. We haven't seen a maiden over. And a T20 to have a maiden over, obviously not at this time because the option is not to bowl a maiden over. You have to get a wicket. That's more important. Alinea comes into ball. Over the wicket to the right-handed Perry, who's on 1 of 6 balls of next the last delivery. And this time she drives and gets a single. So the last delivery gets a single. Obviously not a maiden over. And that takes the score up to 64 for 2 after 7 overs. Australia.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: मेरी माँ, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहाँ आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहाँ चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64 पर 2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः पेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही, सिर्फ इकलौता रन बना था वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए 66/2। फ्लेचर को लगाया गया है, फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली, कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67/2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेम को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेम को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
2: 71/2 एंड 7.4 ओवर्स। Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches, but for the moment the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6, so another batter with a very very devastating kind of a strike rate.
6: To Fletcher ab tak kul milakar 7 run de chuki, unki ye gain is baar fir flight karane ki koshish, halka sa shuffle kiya, मिड विकेट की दिशा में गेम को खेला इकलौता रन, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। बैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए, 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73/2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
7: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी, और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेम को लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
2: 73 for 2 and they're cruising except for that one over which almost went as a maiden. Perry was playing those five deliveries as dot ball and thereafter immediately after that over she went back, she was uncomfortable. Some minor niggle around as here is Ellen coming into bowl over the wicket, straight run up and balls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get four more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians, who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket, and that's width offered, and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region. The ball rushing to the fence, cruising past the field of four runs.
8: ये लगा आभा का चौका,
6: बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेम के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे चार रनों के लिए।
2: What a well placed shot that was, almost perpendicular to the pitch, and Ellen couldn't believe it. Obviously, if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery. As here is she running in away from us over the wicket, almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at wide-ish long off region, picked up there, but in the process they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end, so the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46 and those four runs will take her to the score of a half century. A higher score this season had been 74, not out. As here is the next delivery, which is right out outside the off stump, plays it down into backward of point, the ball picked up there and no runs taken. The fielder there was Karishma Ramharak, who has been brought in this match in place of Ashwini Munisar. Of course, she couldn't do much with the ball. As here is the last delivery of the over, 79 for 2. Australia need 47 more runs of 67 deliveries. As Ellen comes in and bowls the last delivery, wide outside the leg stump, the wicketkeeper misses. That's wide and that's going to be 5 runs unless it's picked up. Yes, it's picked up. So that's 2 runs, but then a wide. That was a completely offline, rank bad delivery. The keeper misses, and lucky that the fielder was out there, and no boundary was scored. But it doesn't matter for Australia because they are not in a great hurry. Of course, they want to complete the process as soon as possible, not linger on, and take it on to the 20th over. 81 for 2 after 8.5 overs. Need 45 runs from 67 deliveries. Last delivery, slowed one, slower delivery, strikes into the wide-ish mid-off, and Gardner couldn't cross the fielder, so dot delivery, 7 runs of the over, 81 for 2 after 9 overs Australia.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
9: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
10: 10वें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर। फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया। जहां तक मूनी का सवाल है, मूनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई। गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लगने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं। टी20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए।
8: ये लगा आभा का छक्का।
2: A great shot and great confidence oozing, and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
10: To badhiya stroke aur ek bada sixer. Aaj match mein bahut zyada sixer dekhne ko nahi mile. Mujhe lagta hai ki Australia ka dusra ya zyada se zyada teesra chakka hoga. Kshama इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से। एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था, तो कुल मिलाकर 3 सिक्सेस। 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइट गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
8: ये लगा आभा का चौका।
2: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
10: Off-stump ke bahar lagatar hit di hai Fletcher ne aur uska bharpoor istemal kiya hai. Gardner ab 9 gendon par 19 run bana chuki hai. Ek baar phir flight. Lagatar flight kara rahi, lekin agar aap stump par flight karayein to chaliye usko rokne mein आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए। हर गेंद पर रन देने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर की, तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर। 46 रन बना चुकी है मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया। 1 रन लेना चाहती थी, लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन दोनों के बीच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को। इकलौता रन और ये आखिरी गेंद थी। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: ड्राइव किया था, हाफ वॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदे बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहां पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद रखती है क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे तो उसका असर यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
1: सर्टनली यूरोप गोइंग थ्रू अ टफ समर दिस सीजन, 41.5 डिग्रीज एल्सवेयर एंड द स्कोर नाउ रीचेस नेल्सन एट 111 विद दैट सिंगल जस्ट टक्ड अवे ऑन साइड एंड ग्लासगो द फील्डर एंड राम हैरक गिविंग अवे 6 रन्स ऑफ 5 डिलीवरीज, अ बेटर ओवर फ्रॉम हर कंपैरेटिवली, बट नाउ ऑस्ट्रेलिया जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम winning this match. Here's the next delivery from Ramparak, plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लिए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here's the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra cover region, picked up, and the batters... Mooney has crossed over for a couple of runs, taking the score of hers to 59 and the score to 113 for the loss of 2 wickets. Slowly but steadily, Gardner and Mooney taking Australia to the step closer to another finals. They won 6 of them in the T20 format and entering the finals once again and to face the winners between the England-South Africa match in the second semi-finals. 13 runs of 47 deliveries. Now you can see the equation reverse. How easy that's going to be because they got wickets in hand. Second delivery of the fresh over and that's been played onto the onside to the backward square. Before the ball's picked up, the batters have comfortably crossed over for a single there. So runs are coming in at ease. They're picking up the gaps well. They're playing some daring looking shots and I've seen most of the shots are in the right place and not to the fielder. The batters are executing the strokes to perfection. Shot selection seem to be pretty good. Okay, they're playing in front of the square of the wicket using footwork, playing late or pulling or cutting the balls with so much of perfection. We'll still A few more runs before Australia gets to win. Henry, the bowler. The partnership in the meantime of 35 deliveries, 50 on the scoreboard. The partnership between Ash Gardner and Beth Mooley, and both of them making sure that they torment the bowlers and kept on denying any wickets. As here is Henry over the wicket bowling in, and that's a full toss outside the leg stump. Rank bat delivery played onto the own side to the back of the square, and before the fielder could come and pick it up, the batters have easily scrambled for the second run as well, and that takes the score up two more and reaches up to 116 for the loss of two wickets in 12.3 overs. And at this rate, I think talking about 20 overs is a far-fetched dream for the West Indies. Maybe another 2 to 3 overs. That's what they required to get the winning runs on the scoreboard. Target 126, the 116, 10 more runs to go. 60 to Mooney, 26 to Gardner, 10 runs of 45 deliveries. And that's because of these two batsmen who have really done well. As this is the next delivery, scooped it high over the long off region. Gardner and gets a spectacular boundary. Nice looking shot there, almost like an extended defensive stroke there. No great effect, just about the path of the bat, the swing of the bat that comes down, meets in the center of the blade, and the ball goes over the long off region, over the fielder at the 30-yard circle, and all that fielder did was just gaze at that one and let the ball cross over for a boundary. So that takes the score to 120. Six more runs to get 126. Here's the next one. That's played straight but rolling in to Glasgow standing there. And one more run taken to take the score up to 121. And lo and behold, that's a no ball as well. So 122. Two more deliveries to go before this match gets into the finals. And Australia walks over into the final with a spectacular win with just about four more runs. And which is as easy as that. That last delivery, not just a no ball, but also a run coming onto that one. So, well, the writing on the wall is very, very clear now. West Indies will have to take a flight back home tomorrow, and Australia will get comfortably into the finals. As here is Henry bowling the fifth delivery, and this is outside the leg stump, played it onto the onside. The fielder will come and pack up that one, pick it up nicely, and one more run of the scorecard. So the score reads 123 for the loss of two wickets. One more delivery to complete over number 13, and this over has seen two leg byes, one no ball, and one more delivery to complete the 13th over. We still waiting for the last delivery to be bowled. If that's a boundary, then this should be curtains for West Indies. They brought all the fielders close as possible, almost all in the 30-yard circle, because there is no use now defending the fence as Henry comes and bowls this one. And that ball has been played onto the onside to the square leg region across the fence. And that's 127. That's a target of 126 overall by one extra run there. So Australia wins this match by 8 wickets and
6: ये लगा आभा का चौका.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
6: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: So what a great victory for the Australian side. 127 for 2. And Sanjay, if you look at the main reasons why the West Indies, the short selection, playing too far across the line, giving those dot deliveries, that prompted the Australian side to do well as far as bowling and fielding is concerned, and look at the result now.
0: बिल्कुल, लेक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर में ये था कि उन्होंने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उन्होंने जिस तरह से डॉट बॉल्स डाली और लगातार किफायत बरती, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस था. वो प्रेशर जब वेस्ट इंडियन बैटर्स के ऊपर आया तो उसके बाद वो चरमरा गई पूरी की पूरी टीम, और जाहिर है कि उसके बाद वो एक बड़ा लक्ष्य नहीं दे सके जो हमने देखा. और आखिर तक ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार जीत दर्ज करके सीधे

0: Target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, ऑस्ट्रेलिया. आज बहुत ही डोमिनेंट जीत, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई है ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्ट इंडीज को जीतना है, तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यूज, डॉटिन, इनको, स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखिए, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: राइट. एंड बेथ मूनी, सिंस यू जस्ट स्पोक अबाउट हर, पुट अप एन एक्सेप्शनल नॉक टुडे. 36 बॉल, 61 रन्स, व्हिच इंक्लूडेड 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125 we all knew were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favor.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like, 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you are up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team, there's a difference between us. Gee, and the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: Aap teenon se hi ek sawal, Ravinder ji, aaj player of the match kaun banega?
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है, बॉलिंग में तो ज्यादा दो उसमें 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में, मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, विच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूँ एश गार्डनर हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही है, और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
2: मुझे संकट में डालती है.
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
2: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50, बेथ मॉनी ने 50 करा है, तो
1: और विकेट कीपिंग भी तो की है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
2: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मॉनी को बोलती हूँ.
0: राइट, ओके. क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट आप ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है, क्या आपको ऐसा लग रहा है आशा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है, जिसको शायद कोई भी ना हरा पाए अब?
2: नहीं, मैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम,
0: या फिर साउथ अफ्रीका.
2: हाँ, अभी तो चलिए, हाँ वो तो गेम अभी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा 2 तारीख को ही करेगा. पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज का भी मैच उन्होंने जो खेला है, तो उनकी जो सारे, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैटिंग है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन करा है, सबने दिया है. बॉलिंग में भी देखिए आप या फील्डिंग में भी देखिए, हाँ एक दो कैचेस उनसे भी छूटी हैं, बट ये है कि उनकी जो साइड है वो एक, अगर आप वेल, मैं एक बिल्कुल, मतलब पैक्ड है कि बैटिंग भी है उनके पास, ऑलराउंडर भी है उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं. तो जैसे बेथ मॉनी, और इवन सब फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे अगर आप बेथ मॉनी की बात करें या एश गार्डनर की बात करें या पैरी की बात करें, तो सारे अच्छा कर रहे हैं. किम ग्राथ है जो बॉलर हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है.
0: राकेश, योर टेक ऑन इट दैट, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलियंस लुक इनविंसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम?

0: वो डाउन कर देती है, तो उसका फर्क तो बहुत पड़ेगा। तो अब बाकी तो देखते
1: जी,
0: हैं।
1: लेकिन अच्छे दिन हैं क्रिकेट के लिए कि आज आपने महिला क्रिकेट का आनंद लिया और आप कल इंग्लैंड के साथ हमारा जो मेंस में, तो लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ एज फार एज क्रिकेट लवर्स आर कंसर्न्ड।
2: या श्योर, बिकॉज एंड इट हैज अ लॉट टू डू विद द ग्रोथ ऑफ यू नो लाइक लेडीज क्रिकेट, स्पेशली विद इंडिया डूइंग वेल एंड ऑल दैट हैज कम पोस्ट WPL, यू नो दैट हैज आई थिंक रियली हेल्प्ड एंड इंडियन प्लेयर्स हैव गेन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। बट people tend to forget one thing, that Indians are still not very consistent against teams like England and Australia. There are only 3 to 4 good teams up there. New Zealand, defending champions, they haven't been able to make it to the top four. Indians, who just won the 50 over World Cup, they couldn't make it to the top four. But overall, when you look at things, I think Indians, the day they become more consistent, I think the men's cricket, which is already doing well, and women's cricket, so cricket in India, we'll see a more 360 degree growth, be it men or women.
3: Right, and we also have a listener joining us right now. Namaskar, good evening. Hello. Namaskar, good evening. Kya naam hai aapka? I think उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, बहरहाल हमें दोबारा वो ट्राई कर लेंगे। बट
1: मुझे, मुझे पता है वो सवाल क्या पूछने वाले थे,
3: क्या?
1: कि एलिसी पेरी रिटायर्ड हट क्यों हो गई।
3: मे बी पॉसिबली, बट वेल आई जस्ट टेक द पॉइंट दैट राकेश वॉज टॉकिंग अबाउट एट दैट पॉइंट व्हेन वी हैड अ कॉलर ज्वाइनिंग इन, दैट ग्रेजुअली वी विल सी क्रिकेट इवॉल्विंग एंड रीचिंग अ प्लेस वेयर मेन एंड वुमेन्स क्रिकेट विल रीच अ सर्टन स्टेचर ऑफ the kind of fitness that we see in the men's game also, we'll see that happening in the women's game also. And I think aapke paas aati ho Ravi, over the years agar hum baat kare to women's cricket ke andar wo change hame already ab dikhne laga hai, jis tarah se crowds ka turnover aata hai, jis tarah ki funding ab ho rahi hai women's cricket ke andar, jis tarah ka khel dekhne ko mil raha hai, aapka nazariya ya take us pe kya hai? Lekin ek shrota hamare sath abhi jude, unse pehle baat kar lete fir aapke paas usi baat pe aa rahi hu main. Namaskar, good evening. Right.
1: जी, जी आपके पास आते हैं वापस, लेकिन फिलहाल हेली मैथ्यूज को सुनते हैं।
4: हैव आवर बेस्ट गेम और प्लेड टू आवर फुल पोटेंशियल फॉर द एंटायर टूर्नामेंट। वी फेल्ट लाइक आवर ग्रेट गेम कुड अ लॉट बेटर देन दैट, बट वी वरंट एबल टू एक्सक्यूट आई थिंक इन एनी ऑफ द मैचेस। अ फुल टीम परफॉर्मेंस टू पुट टुगेदर, रियली रियली गुड या परफॉर्मेंस बाय एवरीवन आई गेस।
5: How much does it throw you as well when you've had the national anthems, you've got everyone on board ready to go out there and put a big total on the board, and then all of a sudden you hear that DeAndre Dalton has gone off and is being assessed?
4: Yeah, I think it was probably a bit scary for some of us. She's obviously a massive fighter and someone you never see go down. So to see her pretty much almost passing out like that after the anthem was a bit scary, but yeah, just a bit of a medical emergency, but at the same time it shows how much of a fighter she is, the way that she was able to come back out, and not only come back out but try to throw a few punches at the Aussies as well, is speaks a lot to her character.
5: Yeah. Does it also mean that you were a little bit conservative at the top of the order because you weren't too sure if she was going to come back into to bat at any stage?
4: Somewhat, I feel like we wanted to get off to a good start and probably put myself under a bit of pressure based on how things were going in the first 6 overs. Probably could have gone to my strengths a bit more, but certainly wasn't sure if she was coming out and did want to take it a bit deep. But I think it was a quite difficult one for me to assess, knowing that we needed to get the run rate up. However, I probably needed to stay at the crease, and yeah, I think the shot that I played probably showed a bit of it.
5: Yeah. When you think about the entire tournament in its entirety, and you look back on this group, a couple of wins at the start and then tailed, what are the things that you'd be saying to this team post this interview just to get them, I guess, their mindset and ready? It's only a 2-year turnaround for the next one.
4: Yeah, I think as a group we could still hold our heads high in regards to a lot of people playing roles. We had some bright sparks this tournament. Aaliyah Aline, Stephanie Taylor looking back really, really good. Even Chanel Henry getting a 50, even though she's been in and out of injury. And I think when you look at West Indies team, sometimes you call a few names, and we didn't really have any super standout performances by any one individual player. So to get to the semifinals, I think with probably 250s as a team, shows that everyone had to chip in, and we probably missed that aspect of having someone have a really big or a really good tournament. But at the same time, for us to get to this stage with that happening, it definitely shows that we have a lot more people playing roles now, and we can only get better with it.
5: Yep, and we're expecting that as well from you guys as well, particularly because of your leadership. Thanks for your time, and we'll see you in the next
4: Thank
5: one.
4: Thank you.
5: Cheers, Hayley. I'll get Sophie Molyneux to come on in. First time captaining in the T20 World Cup through undefeated. It's pretty easy, this captaincy stuff, is it?
6: No, it's not.
5: Not so much. No. What have you learned over the last couple of weeks?
6: Heaps. I think the T20 World Cup, you just have to ride it. It's full of momentum, swings, I've really enjoyed it. I think the group's really enjoyed it, and that's probably the biggest thing for us. And yeah, we've helped ourselves, well, we've stopped ourselves from thinking too far ahead, but now we can think about the final, which is pretty cool.
5: You come out to the middle, you've got your team plans, and all of a sudden you would have known as well that Deandra Dotton probably might not have been coming out. So in your back of your mind, how much does that change your plans?
6: I actually had no idea.
5: There you go.
6: yeah, I didn't know until maybe five or six overs in that she wasn't, and then she did, and she made an impact. So, yeah.
5: But you might have had to change your plans from the approach that Joseph and Hayley Matthews had at the start. They certainly didn't come out with that firepower. Is that why you kept the seamers on for a little bit longer?
6: I think with the new ball there, like Kimmy always shapes the ball and bowls beautifully in the power play, and Luce did a really good job as well. So I just thought that was probably the best matchup to those two. And I thought we bowled really well. Like Hayley and Joseph actually, tried to go, but I thought we held our nerve, which was really cool.
5: Any changes to approach when you're chasing 125 on a good wicket?
6: No. I think we all wanted to sort of get it done as quick as possible, and you know, Moons and Ash were clinical and volley to get us away, just to calm the nerves in the change room. It was really good to see.
5: I can remember down in Southampton, Beth Mooney took herself off and retired herself hurt with the stiff back as a precaution. We saw Elise Perry leave today as well. Is it the same kind of scenario?
6: Yeah, a bit of that again. I think some quad awareness, but it sounds like she'll be more than okay to go on Sunday.
5: Well, three play of the matches and 35. She's allowed a little bit of time off, isn't she? You've got 5 days now until the final. What are the plans?
6: Sleep. I'm looking forward to a good night's sleep tonight. But, we'll make sure that we celebrate what's been a pretty cool 2 weeks for the group. We'll make sure we do that. Rest and recover over the next little bit, and then build up without thinking too much and playing the game over and over in our heads. I think we're just going to make the most of the week and make sure we enjoy every part of it.
5: Yep. We've deserved the rest and the sleep. Enjoy the sleep in. Switch the alarm off, and we'll see you on Sunday.
6: Thanks, James.
5: Well done.
3: Well, there you had it, a very happy and a very smiling Australian captain out there, Sophie Molyneux, who was all about just complimenting and applauding the team's efforts. And also for all our listeners, I would like to quickly tell you that this is indeed the 8th T20 World Cup final for the Australian women's team. That in itself is a very big achievement. And I'm also told that we have a caller with us joining us right now. Namaskar, good evening. जी स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो पर बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप आज ओके हाँ जी आपको बता देंगे चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं रवि आप ही के पास आते हैं कि भारत क्यों हर बार ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है कहां पर हमारी कमियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा उठा लेता है
7: देखिए ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रॉकेट साइंस नहीं है आपको सामने सबसे बड़ी फिटनेस देखिए इनकी आप ऑस्ट्रेलियन टीम की फिटनेस और इंडियन टीम की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा उनकी फील्डिंग देखिए अपनी फील्डिंग देखिए बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का चार प्लेयर भारतीय और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी थी चोट लगी हुई थी उनको तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये इतनी समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है तो ये देखिए आप बॉटिंग बॉलिंग सब करते हैं फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं और जिस दिन इंडियन टीम चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पे ध्यान देगी उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब टीम
1: इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं फिटनेस पे कितना ध्यान देते थे आप
0: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता सर ने सही बोला कि T20 की वजह बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो पर ध्यान नहीं दिया जाता और फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को तो
1: नहीं भले ODI टेस्ट हो फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब
0: नहीं थी
1: आज है
0: आज T20 है तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है जो फिट है सर ने बिल्कुल सही बोला अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे अब आप देखिए कैच बनानी पड़ती है कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी आपको कैच बनाना पड़ेगा विकेट लेना पड़ेगा तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा तो एफर्ट तभी मानेंगे ना जब आप फिट है और T20 इतना फास्ट गेम होता है ना उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है कहाँ पे बॉल आ रही है तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है
1: तो कोच साहब से पूछते हैं सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से
7: देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है तो अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स भी कैच छूट सकती है ऐसी बात नहीं है लेकिन आप ये देखिए आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं मैं देख सुना मैंने पढ़ा भी देखा भी है वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में उनके साथ ही चिपक जाती है तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है
1: कि हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे थहथेली खोल कर सूरज की तरफ तो फर्क क्या है दोनों में
2: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं उनकी आदत है उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है ऐसा नहीं है बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है फिंगर्स बाद में आती हैं आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले जो थंब हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है और अगर आप वही चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको जैसे ट्रेन किया जाता है वो उसी हिसाब से चलता है दूसरी चीज ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक जमाने में हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे मदन लाल मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ आबिद अली का कुसोलकर इन लोगों के हम नाम ले सकते थे बाकियों के नाम नहीं ले रहे हम लोग स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर्स और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था इन्होंने अभी कहा कि 400-400, 500-500 कैचेस लेते हैं अजहरुद्दीन का जमाना ले लेते हैं 90s का जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था एंड ही वांटेड ऑल दोस कैचेस और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा मतलब ऐसे थे इनकी ट्रेनिंग मेथड अलग होते थे लेकिन हाँ आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है आपका ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है अभी बहुत वक्त लगेगा
3: ओके राकेश आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स एक ही जीते थे 2016 का एडिशन What does it speak of the West Indies cricket now?
2: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They are only playing T20 cricket at best. That's where their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be. Because they're not winning those big ones. So their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash-strapped, association. Doesn't have that kind of money. Their sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them. They don't come here with a sponsor. They come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
1: Ji, is samay ek aur caller hai phone line par. Hello. Namaskar, ji. Ji, bilkul khairiyat hai. Aap apna naam bataiye. क्या सवाल है आपका?

0: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
1: इंडियन टीम जैसे
2: आई टेक द क्वेश्चन, मैं रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम, जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
3: देखिए, अफ्रीका का इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे तीन कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग में आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं।
0: पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली, जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं, इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने?
1: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कहते हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया, बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों का हमसे और अच्छा हो गया है। तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी, कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इंप्रूव होता है, तो वैसे ही फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज़ कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
0: जी बिल्कुल। और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक, ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड। आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
4: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रनअवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहाँ कंडीशंस में ज़्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है, इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंग्लैंड के चांसेस काफ़ी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते हैं। न्यूजीलैंड और यू नो साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है, तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
2: ओके, रवि आपके पास आती हूँ। चलिए, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आमतौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगी?
3: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही। अगर वो लॉरा उस समय, अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छे तरह, लॉरा जब बैटिंग करती हैं तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती हैं, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला, एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं।
0: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवर तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
1: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में, एक मेंटल जो अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज क्या, मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे, सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ, किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई, तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस उनको लगा, T20 है बस, तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा।
2: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट,

0: इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू,
1: एडवांटेज इंग्लैंड का, नो डाउट
2: राकेश, एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी टीम मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ विमेन टीम की जब बात करते हैं, बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफ़ी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पर पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जरूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है
0: जी। और आशा,
3: मैंने बोला ना, जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन, वो जीतेगा, क्योंकि टीम दोनों में
0: नहीं दे रहे हो,
3: नहीं दूंगी
4: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो, चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
2: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परमेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफ कोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
4: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
2: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win.
4: Especially after defeat with Ireland.
2: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
4: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
2: बहुत शुक्रिया।
0: And on that note, thank you to all our listeners for joining in. This is me, Sakshi Mandwal, and Amit Arora saying goodbye, but also giving a heartfelt thank you to our technical team, Jayaram, Aniruddha Gupta, Nagendra Kumar Patil, Prasoon Kumar, our production team, Swati Kapoor, Tanmay Bhatt, Vidwan Vas, and our producer, Shahnawaz Khan, the team, the people, the men, and of course, all of us who bring you the shows back to back and also the commentary. Thank you so much to all our listeners for tuning in. This is Amit Arora and Sakshi Mandwal saying good night, goodbye.
5: Player of the match. अभी आप आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज़ का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुनवाते हैं ये पहला गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म प्यार का सागर से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में फिल्म रजनीगंधा का ये गीत, बोल योगेश का और संगीत सलील चौधरी का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म रात अकेली है मैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म राजा और रंक का ये गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में फिल्म राजकुमार का ये गाना।

श्रोताओं, फिल्म राजकुमार के इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेशकियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।